0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी, हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है,

बस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लालो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधा दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे और दूसरा जो अटूट विश्व

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर ट्यून करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

जिनके परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है तो उन्हें बहुत सा बधाई। जो अपने घर से सत्संग आदि का कार्यक्रम आज रखने वाले हैं तो बहुत सा बधाई भी। और बहुत से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। फाहुन रेडियो के पूरी टीम की ओर से जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं तो बहुत सा स्वागत।

कहते हैं कि जहां हवा है और पानी है वहां हिंदुस्तानी भी है। और यहां से भी फाहुन हिंदुस्तानी द्वारा रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है। जो दुनिया पे 195 देशों तक जहां जहां इंटरनेट है वहां वहां सुना जा सकता है।

कहते हैं कि इंसान उस कल की चिंता में डूबे रहते हैं जिस कल का कोई भरोसा नहीं। आज में जियो, खुश रहो।

क्या हमें इस पे चिंतन करना चाहिए या नहीं? इंसान उस कल की चिंता में डूबे रहते हैं जिस कल का कोई भरोसा भी नहीं है। आज में जियो, खुश रहो। हम एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे जो जुबिन नौटियाल के आवाज में हम सुनेंगे।

पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। कहते हैं कि सबसे पवित्र वस्तु मोबाइल है दोस्तों, और ऐसा क्यों कहा गया है?

सबसे पवित्र वस्तु मोबाइल है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्या हम उनके बिना जी नहीं सकते हैं? क्या उसे हमें हर एक समय रखना चाहिए? आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए थोड़ा से इसके बारे में चर्चा जरूर करना चाहूंगा। कहते हैं कि सबसे पवित्र वस्तु मोबाइल है।

और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोबाइल जो बाथरूम में, अस्पताल में, शमशान में से होकर के आने पर

कि हम अस्पताल शमशान आदि से आते हैं तो सीधे बाथरूम की ओर जाते हैं और स्नान को करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोबाइल में वो खूबियां है जो

यहाँ तक कि जो बाथरूम अस्पताल शमशान से होकर आने के बाद भी बिना धोए हुए घर में, मंदिर में, रसोई में, सब जगह जा सकता है।

केवल जीत की एक गांठ खुल जाए। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए, तो उलझे हुए सब रिश्ते जाए।

तो दोस्तों, हम जो जिद पे हो जाते हैं, जिद कर बैठते हैं, जिसे हम जिद्दी कहते हैं, और अपने जिद में रहना, क्या ये ठीक है या नहीं? हम रेडियो बनाते हैं और आप तक संदेश को कोशिश करते हैं पहुंचाने को, और आज का दिवस में इस पे जरूर ध्यान देना कि हम कितना जिद्दी है। क्या हमें जिद करना ठीक लगता है? क्योंकि कहते हैं कि केवल जिद की एक गांठ जो बन जाता है, खुल जाए तो उलझे हुए सब रिश्ते सुलझ जाते हैं।

खूब सुनाए हैं हंसराज रघुवंशी जी कि अगले साल फिर आना गणपति बप्पा मोरिया। क्या हम ये जानते हैं कि हम अगले साल रहे या नहीं, फिर ये आशा जरूर रखते हैं। कहते हैं कि सत्य मौन इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों को जवाब

और ये समय भी क्या चीज है। कभी हम उसे वक्त भी कहते हैं,

कहते हैं वो आगे निकलते जा रहे उसमें रिवर्स भी नहीं है, वो आगे बढ़ रहे हैं। सत्य मौन इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय ही देता है।

विमला जी जो ये गीत का मांग किए तनहाक शहर से, उनके ओर से ये सुंदर सा संदेश आए हैं कि सुख और उम्र की आपस में कहाँ बनती है।

संदेश रखे हुए है श्रीमती विमला जी। सुख और उम्र की आपस में कहां बनती है, सुख और उम्र की आपस में कहां बनती है, कड़ी मेहनत के बाद सुख घर में लाओ तो उम्र नाराज होकर चली जाती है। क्या संदेश रखे विमला जी ने? समझने वाले बात हो जाता है। और कैसे समझेंगे? कहते हैं कि समझ समझ के समझो। सुख और उम्र की आपस में कहां बनती है? दूसरा लाइन कहते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद सुख घर में लाओ तो उम्र नाराज होकर चली जाती है। बिल्कुल सच कहे हैं। हमारे रेडियो का डायरेक्टर श्रीमान कुमार घिराव जी की ओर से ये सुंदर सा भजन

डमरू वाले तू ना संभाले तो हमें कौन संभालेगा। दोस्तों ये सुंदर सा और भजन हम सब सुने,

कहते हैं कि स्वाभिमान हमेशा पगड़ी की तरह ऊंचा होना चाहिए। स्वाभिमान हमेशा पगड़ी की तरह ऊंचा होना चाहिए कि बाकी जूते चाहे जितने कीमती हो जगह जगह पर उतारने ही पड़ती है।

इस बात पे जरूर ध्यान देना। आपने ठीक सुना कि स्वाभिमान हमेशा पगड़ी की तरह ऊंचे होना चाहिए, बाकी जूते चाहे जितने कीमती हो जगह जगह उतारने ही पड़ते हैं।

खाटू वाला शाम सुनने वालों, ये सुंदर सा भजन सुनने को हमें प्राप्त हुआ और ये कहना चाहूंगा कुछ ख्याल भी आ गया कि अगर आप खाटू श्याम दर्शन करने को जा रहे हैं भारत में, तो दिल्ली से कुछ घंटे के रास्ते हैं। पर आप वहां दर्शन के बाद लौटेंगे तो रास्ते में आपको एक स्थान प्राप्त होगा जहां पर आप जाटा, जिसे आप कहते हैं कि चक्की, सील लोढ़ा, जिसे हम अपने शादी में और सील लोढ़ा का प्रयोग किया जाता है, तो इन चीजों को आपको मिलेगा रास्ते में। वहां से आप निकलेंगे दिल्ली के ओर। और ऐसा मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि चलो हम बाद में ऐसा चीजों खरीद पाएंगे, पर भारत उतना बड़ा है, पर कुछ चीजों जो कोई कोई शहरों में आपको खरीदने को मौका मिलेगा।

और कहते हैं कि रिश्ता वही श्रेष्ठ है। रिश्ता वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो। शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो, अहंकार कम और प्रेम ज्यादा हो। शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो, अहंकार कम और प्रेम ज्यादा हो। तो आपने ठीक सुना है कि रिश्ता वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो, अहंकार कम और प्रेम ज्यादा हो। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

की अच्छी भूमिका, अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार वाले लोगों को हमेशा ही याद किया जाता है। अच्छी भूमिका, अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार वाले लोगों को हमेशा ही याद किया जाता है। मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी।

कहते हैं कि इंसान के शब्दों पर नहीं उसके इरादों पर गौर कीजिए। कोई डांट कर आपकी भला चाहता है तो कोई मुस्कुराकर आपकी जड़ काटता है।

इंसान उस कल की चिंता में डूबा रहता है जिस कल का कोई भरोसा ही नहीं है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आप सबकी सेविका बबली आसरा। आज फिर मैं एक नया प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है बॉलीवुड। हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी बॉलीवुड इतनी बड़ी है कि इसमें इतने महान कलाकार हुए हैं हमारे फिल्मी सितारे। और आज मैं जिस फिल्मी सितारे के बारे में बताऊंगी, उसने तो बहुत ऊंचाइयों को छुआ, और वो है हमारे सबके प्रिय मनोज कुमार जी।

सुनने वालों, आज मैं आपको मनोज कुमार जी की फिल्मों के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके निर्देशक के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगी।

मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के एक महान अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे, जिन्होंने उनकी देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए भरत कुमार के नाम से जाना जाता है। मनोज कुमार जी का जीवन। उनका पूरा नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 इब्टाबाद, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ। विभाजन और स्थापन। भारत के विभाजन के समय उनका पूरा परिवार शरणार्थी के रूप में दिल्ली आ गया था। उनकी शिक्षा दिल्ली के हिंदू कॉलेज से बीए की डिग्री करके प्राप्त की।

सुनने वालों, अब हम मनोज कुमार जी की मशहूर फिल्म क्रांति का एक गीत सुनने जा रहे हैं, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।

सुनने वालों, ये जो आपने गीत सुना ये फिल्म क्रांति का था और ये मनोज कुमार जी की बहुत सफल फिल्म रही और इसमें दिग्गज अभिनेताओं ने काम किया जैसे दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, निरूपा राय, परवीन बॉबी और हेमा मालिनी और स्वयं मनोज कुमार जी ने भी इसमें अभिनय किया था।

सुनने वालों, मैं आप सबको मनोज कुमार जी के जीवन के बारे में बता रही थी। अब उनके परिवार के बारे में सुनिए। उनके परिवार में उनकी पत्नी जिनका नाम शशि गोस्वामी है और उनके दो बेटे हैं कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। कुणाल गोस्वामी ने फिल्मों में अभिनय किया है और विशाल गोस्वामी ने निर्माण तथा संगीत विभाग में काम किया है। सुनने वालों,

और मनोज कुमार जी के एक भाई राजीव गोस्वामी थे। इसके अलावा भारत पाकिस्तान विभाजन के समय उनके एक छोटे भाई कुकू का दंगे और बीमारी के दौरान बचपन में ही निधन हो गया था। सुनने वालों,

मनोज कुमार जी ने निर्देशक भी किया, निर्माता निर्देशक भी रहे। उनकी फिल्मों में उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, पूर्व और पश्चिम थे। उपकार 1967 यह एक ब्लॉकबस्टर और देशभक्ति से भरपूर फिल्म थी जिसका निर्देशन खुद मनोज कुमार जी ने किया था। इसमें उन्होंने भारत नाम के किसान और सैनिक की भूमिका निभाई थी। क्रांति 1981 यह एक ऐतिहासिक और ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिखाया गया था, जिसमें उनके साथ दिलीप कुमार समेत कई बड़े कलाकारों ने काम किया था। रोटी कपड़ा और मकान 1974 यह फिल्म समाज की आर्थिक समस्याओं और बेरोजगारी पर आधारित थी। यह एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। पूरब और पश्चिम यह 1970 में आई। इस फिल्म में भारतीय संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता के फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। सुनने वालों, अब हम गाने की ओर बढ़ते हैं। अब गाना फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से लिया गया है।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से था, ये भी मनोज कुमार जी की एक बहुत अच्छी फिल्म थी। और इस फिल्म में अभिनय किया था शशि कपूर, जीनत अमान, खुद मनोज कुमार जी ने।

सुनने वालों, मनोज कुमार जी ने कुल 55 फिल्मों में काम किया और मनोज कुमार जी की पहली फिल्म 1967 में आई जिसका नाम था फैशन। इस फिल्म में उन्होंने महज 19 वर्ष की उम्र में एक बुजुर्ग भिखारी का छोटा सा किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता कई फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा में एक महान पहचान बनाई।

सुनने वालों, मनोज कुमार की बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म मैदानी जंग 1985 में आई थी, जबकि बतौर निर्देशक उनकी आखिरी फिल्म जय हिंद 1999 में आई थी। सुनने वालों।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना ये फिल्म पूर्व और पश्चिम से था। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी सुनने वालों। इसमें भारतीय सांस्कृतिक और पश्चिम सांस्कृतिक का मेल जोल था कि इसमें मनोज कुमार जी ने दिखाया कि भारतीय सभ्यता कैसी होती है और पश्चिम की सभ्यता कैसी होती है, पूर्व और पश्चिम। तो इसमें अभिनय किया था स्वयं मनोज कुमार जी ने, सायरा बानो जी ने और कामिनी कौशल जी ने। हर फिल्म में उनकी प्रिय माँ होती थी कामिनी कौशल जी, वो उनको इतना पसंद करते थे कि हर फिल्म में उन्होंने कामिनी कौशल जी को अपनी माँ बनाया।

सुनने वालों, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना। ऐसे मनोज कुमार जी को भी बहुत चीज़ें पसंद थी, जैसे वो अपनी फिल्मों में आईने का इस्तेमाल करते थे, उनकी फिल्मों में शीशे बहुत रहते थे, शीशे रहते थे और वो अपने मुंह के ऊपर हाथ जरूर रखते थे, वो भी उनका एक स्टाइल था, एक उनकी हर फिल्म में मुंह के ऊपर हाथ रहता था।

और उन्होंने अपनी फिल्म में भारतीय सभ्यता को बहुत उजागर किया, दुनिया को दिखाया कि भारतीय कैसा देश है, उसकी सभ्यता कैसी है, उसके रहने वाले कैसे हैं। वहाँ पर जहाँ तक किसानों का देश है भारत, वहाँ पर किसान कैसे काम करते हैं, और ये चीज़ें उन्होंने अपनी फिल्मों में बहुत दिखाई और देशभक्ति का बहुत उपयोग किया, क्योंकि वो देश से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी देशभक्ति को बहुत दिखाया फिल्मों में सुनने वालों।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। मैं आप सबको बता रही थी मनोज कुमार की जीवनी के बारे में। मनोज कुमार जी के पास कुल कितनी संपत्ति थी? विकिपीडिया के अनुसार उनके पास करीब कुल संपत्ति 20 मिलियन डॉलर, करीब 100

70 करोड़ रुपए नापी जाती है। सुनने वालों, संपत्ति से जुड़ी मुख्य बातें, कुल नेटवर्क उनकी संपत्ति 170 करोड़ है। कमाई का स्रोत, फिल्मों में 50 साल का लंबा और सफल कैरियर बतौर अभिनेता, निर्देशक और लेखक है। प्रमुख संपत्ति रिपोर्ट के अनुसार उनके नाम पर गोस्वामी टावर नामक एक बड़ी इमारत भी है। आधिकारिक डेटा, हालांकि उनकी संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक और पक्का सार्वजनिक डेटा मौजूद नहीं है और यह आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स व सेलिब्रिटी नेटवर्क वेबसाइट पर आधारित हैं। सुनने वालों,

सुनने वालों, ये भी मनोज कुमार जी की एक बेहतरीन फिल्म थी। उनकी हर फिल्म में देशभक्ति का गीत जरूर होता था और जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो टीवी पर उनकी फिल्में जरूर दिखाई जाती हैं सुनने वालों। और जब तक उनकी फिल्म ना दिखाई जाए तब तक समझो कि टीवी वालों का दिन अधूरा है सुनने वालों।

सुनने वालों, मनोज कुमार जी ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें प्रमुख हैं घर बसा के देखो, गृहस्थी, हरियाली और रास्ता, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, शहीद, पूर्व और पश्चिम, वो कौन थी, शोर, गुमनाम, हिमालय की गोद में, शहीद, उनकी प्रमुख फिल्में थी सुनने वालों।

पत्थर के सनम, पूर्व और पश्चिम दो बदन, क्रांति, सन्यासी, ये भी उनकी प्रमुख फिल्में थी सुनने वालों।

0: सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: हेलो एचआर, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग,
1: मीट मिस्टर भारत।
2: हेलो,
1: इलाहाबाद से आए।
2: इलाहाबाद?
3: आप कहां के रहने वाले?
2: लंदन का। मैं इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता।
4: भारत, मैं तो भूल ही गया था, ऑफिस में तुम्हारे नाम का खत आया था।
1: गंगा भाभी का
3: गुरु जी का
1: क्या लिखा?
3: आप सबके लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।
1: ओम जब मिस्टर बनारस से पढ़ता था, उसे भी इलाहाबाद से गुरुजी के खत आया करते।
3: आप गुरुजी से कभी नहीं मिले?
1: नहीं, जिंदगी में कभी इलाहाबाद जाने का मौका ही नहीं। तुम्हारे पिता ओम से संबंध था। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गोली का निशाना बना दिया। मेरे घर वाले लाहौर में थे, मुल्क के बंटवारे में सब के सब कत्ल कर दिया गया। उसके बाद कभी इंडिया जाने का ख्याल ही पैदा नहीं। खैर, ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा?
3: अच्छा है, मगर चाचा जी, आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है, अपनापन तो यहाँ दिखाई नहीं दिया।
2: My foot, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहाँ मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हो।
3: जी,
2: और नहीं तो क्या। यहाँ देखो, हर आदमी खुशहाल नजर आता है, न रोटी की फिक्र, न कपड़े का गम और न घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, चार रोटी में से एक रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश।
3: वो देश आपका भी तो है।
2: काली मत दो।
3: जी,
2: जो देश दूसरों के रहम और कर्म पर पल रहा हो वो देश मेरा नहीं।
3: मेरा तो है।
2: होगा, तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, मैं उसे अपना कहता हूं जो मदद देता है। तुम लोग जमीन से पेट भर अनाज नहीं निकाल सके और लोग चांद तक पहुंच गए, है कोई मुकाबला?
3: जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है।
2: सर झुकाने पर फक्र करते हो, है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज जीरो, जीरो एंड जीरो।

जीरो दिया मेरे भारत ने, मैं भारत की बात सुनाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ। सुनने वालों, मैं भी भारत की रहने वाली हूँ, इसलिए भारत की बात सुनाती हूँ। पहले लोग सोचते थे कि भारत में कुछ नहीं है, भारत एक गरीब देश है, लेकिन अब वही भारत ने कितनी उन्नति की है। सुनने वालों, भारत अपने मेडिकल क्षेत्र में तो चांद पे भी पहुंच गया। भारत उनके डॉक्टर्स इतने बढ़िया हैं, दवाइयाँ इतनी बढ़िया हैं। अब भारत में अपने मोबाइल बनते हैं, उन्होंने चाइना से लेने छोड़ दिए मोबाइल। सुनने वालों, और मनोज कुमार की फिल्मों के गाने इतने अच्छे, इतने मधुर संगीत के होते थे सुनने वालों, कि उनको जितनी बार सुने मन करता है सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। और ना सिर्फ गाने, और जो गाने वाले भी थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सुनने वालों, इस गाने को गाया महेंद्र कपूर जी ने, और ये फिल्म थी पूरब और पश्चिम।

सुनने वालों, मैं आप सबको मनोज कुमार जी के बारे में बता रही थी। मनोज कुमार जी को भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म श्री, जो 1992 में उनको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया और राजकीय सम्मान दिया गया, सुनने वालों,

मनोज कुमार जी को भारत सरकार ने 1992 में पद्मश्री और 2016 में श्री दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सुनने वालों,

सुनने वालों, मनोज कुमार जी की मृत्यु 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल मुंबई में हुई। तब वह 87 साल के थे। सुनने वालों, अभिनेता मनोज कुमार जी ने अंतिम सांस उसी हॉस्पिटल में ली। सुनने वालों,

सुनने वालों, अब मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ और अगली बार फिर किसी दूसरे फिल्म स्टार, एक्टर, हीरो या हीरोइन के बारे में आपको उनके जीवन के बारे में जरूर बताने की कोशिश करूँगी। सुनने वालों,

शब्दों को संभाल कर बोली, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। कड़वे वचन तीर के समान घायल करते हैं, इसलिए हमारी वाणी में हमेशा प्रेम और मिठास होनी चाहिए। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: ಕುಟುಂಬ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಂಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಧಿನಂ ಕುರುಮದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಶು ಸರ್ವದಾ ರುಬ್ರರು ಮಿಲ್ನೆ ಕಾ ಮೌಕಾ ನಹಿ ಮಿಲ್ ಪಾ ರಹಾ ಅಥ ಶಬ್ದೋ ಸೇ ಅಪ್ನೋ ಕೋ ನಮನ್ ಕರ್ ಲೇತಾ ಹೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಸಿ ನ ಕಿಸಿ ರೂಪ ಮೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋತಾ ಹೈ ಇಸಿಲಿಯೇ ಆಪ್ಕಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಕೋ ಹೃದಯ ಸೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಫಾವನ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೆ ಸಭಿ ಸುನ್ನೆ ವಾಲೋ ಕೋ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸೇ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಆಜ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಫಿರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೋ ಗಯೆ ಹೈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೇ ಔರ್ ಅಭಿ तो शांता जी और राजेंद्र जी जो अभी तो स्टूडियो में नहीं पहुंच पाए हैं, पर शांता जी अपना कुछ कहते हैं, फिर उसके बाद में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: हाँ सुनने वालों, संजय जी हमने तो अपनी हाजिरी दे चुकी हूँ और आप मेरी को सुन रहे हैं, तो यहाँ से मेरे भी शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम और सभी को सत श्री अकाल है इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
0: शांता जी ऐसा करते हैं कि पहले जो हमारे सुनने वालों जिस गीत का इंतज़ार करते हैं हर सप्ताह की तरह, जो अभी उदास बैठे हुए हैं, तो क्यों ना उस गीत को पहले चला देते हैं, फिर कार्यक्रम का और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम बड़े मज़ेदार कार्यक्रम है, तो क्यों ना पहले वो गीत चला दिया जाए।
1: हाँ ज़रूर से यहाँ से चला देंगे कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम जी तो सबका बेड़ा पार करते हैं। सुनने वालों, मेरा नमस्कार। फाउन हिंदुस्तान रेडियो के सभी श्रोताओं को यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार। आज हम अपना विषय लेके आए हैं एक बेटी का पिता, और इसके बाद कुछ और भी रहेगा कार्यक्रम, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए संजय जी चाहे कुछ अपना।
1: संजय कुछ अपना बोलना चाहते हैं। दोस्तों, आज का विषय जैसे कि अभी आपने सुन ही चुके हैं कि एक बेटी का पिता, पर अभी तो उसे और हम सब छलांग लगाने वाले हैं, पर आज का ऑफिशियल जो विषय रखा गया है, जो हमारे खोजी सेना द्वारा आज के लिए हम सब के पास रखा गया यहाँ है, तो वो है कि एक ब्राह्मण का महत्व, और उस ओर अभी हम सब काफ़ी जानकारी लेकर आए हैं कि ब्राह्मण का महत्व, उसके बारे में हम सब अभी आपको जरूर सुनाने वाले हैं। पर राजेंद्र जी, पहले तो ये गीत जो हम सब अभी सुने कि तेरा राम जी कड़े बेड़ा पार, तो ये गीत सुन के आपको कुछ होता है या नहीं? आपको ये नहीं लगता कि अब ज्योति का प्रकाश प्रारंभ हो गया?
0: हाँ, ज्योति का प्रकाश प्रारंभ हो गया। और जो बहुत ही सुंदर सा जो गाना है वो है कि बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं।
1: बेटियां तो बाबुल के रानियां हैं।
0: हाँ,
1: क्यों ना हम कुछ उसके बारे में सुनते हैं, तो फिर गीतों के और जो हमारे शांता जी अपने पिटारा से भर के लाए हैं उस ओर।
0: हाँ, क्यों ना गीत से पहले कुछ ना बेटी के बारे में सुना जाए, इसके बाद ही आगे कार्यक्रम रहेगा। एक बेटी ने अपनी बेटी की, एक पिता ने क्या किया कि अपनी बेटी की सगाई कराई, और लड़का बड़े अच्छे घर से था तो पिता बहुत खुश हुए। लड़के और लड़के के माता पिता का स्वभाव देख के बहुत अच्छा लगा, तो पिता के सिर से बड़ा बोझ उतर गया। एक दिन शादी से पहले लड़के वालों ने लड़की के पिता को खाने पे बुलाया। पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वह ना कह सके। लड़के वालों ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। फिर लड़की के पिता के लिए चाय आई। शुगर की वजह से लड़की के पिता को चीनी वाली चाय से दूर रहने को कहा गया था।
1: यानी कि चीनी वाले चाय से दूर?
0: हाँ, क्योंकि
1: ऐसा क्यों?
0: डायबिटीज था, शुगर।
1: डायबिटी किसको कहते हैं शांता जी?
2: साइकर सिक्त
1: को कहते हैं डायबिटीज। तो उसके यानी कि बेटी का पिता का वो मुसीबत था।
0: हाँ, लेकिन लड़की के होने वाले ससुराल में थे तो चुप रहकर चाय हाथ में ले ली। उन्होंने नहीं बोला कि मेरे को डायबिटीज है, क्योंकि बेटी के ससुराल में थे इसलिए चुपचाप चाय ले ली। चाय की पहली चुस्की लेते ही वो चौक से गए। चाय में चीनी बिल्कुल नहीं थी और इलायची भी डली हुई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि चाय में तो चीनी थी नहीं, तो उनके लिए तो अच्छा रहा।
1: हाँ, क्योंकि वो उसे डायबिटीज के मुसीबत था।
0: हाँ, और उनको इलायची भी चाय में थी तो स्वादिष्ट रहा
1: ऐसा। तो
0: हाँ, तो अब सोच में पड़ गए कि ये लोग हमारी जैसी चाय पीते हैं। उन्होंने सोचा कि ये लोग हमारी जैसी चाय पीते डायबिटीज वाली,
1: हाँ जी,
0: चल जाएगा। दोपहर में खाना खाया, वो भी बिल्कुल उनके घर जैसा। दोपहर में आराम करने के लिए दो तकिया पतली चादर उठा दे ही सोफे पर पानी पीने को दिया गया। फिर उनको क्या किया कि दोपहर में दो तकिया दी पतली वाली, और चादर उठते ही जैसे वो सौंफ का पानी रखा था वो दिया गया पीने के लिए। वहाँ से विदा लेते समय,
1: राजेंद्र जी, ये सौंफ का पानी क्या चीज है?
0: सौंफ का पानी होता है, एक सौंफ रहा उसका पानी पियो या सौंफ खाओ खाना खाने के बाद तो डाइजेस्ट हो जाए।
1: रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में सब जगह रहता है,
0: और चीनी थोड़ा रहा
1: ओ,
0: तो डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा रहा, तो चाहे पिए खाए।
1: ये एक चीज है वो मुफ्त में देता है कि उसमें
0: मुफ्त
1: में
0: वो बाहर रखा रहता है, वो जाते समय थोड़ा खा के।
1: पर शांता जी इसके बारे में कुछ और कहने वाला, क्योंकि इन्होंने चुप चुप करके और लिया था मेरे ख्याल से वहाँ होटल से। शांता जी, ऐसा हुआ कि नहीं?
2: और यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ हमने खरीद के भी रखी है
1: घर से।
2: हाँ, दुकान से खरीद कर घर पे रखी हूँ।
1: यहाँ पर
0: यहाँ मिलता है।
2: हाँ,
1: वही तो बात है राजेंद्र जी, यहाँ क्या नहीं मिलता है?
0: यहाँ सब कुछ मिलता है,
1: क्योंकि ये एक देश है जहाँ पर सब कुछ मिल सकता है। ये एक देश, हर बार हमें तो लोग कहते रहते कि ये एक स्वर्ग के समान है ना। यहाँ पर 12 मंजिल पे आप नल खोलो तो पानी गिरता है, कभी बिजली का कमता ही नहीं, और जब चाहे तब यहाँ तक कि सौफ भी, सौफ कहते हैं ना,
2: सौफ
1: तो जो हम छुप छुप करके वहाँ और होटल में लेते थे, यहाँ पर हमारे पास भी हो सकता था।
2: नहीं, वो छुप कर नहीं, वो ऐसा रखा है कि आप ले सकते हो। हाँ, पचौनी
1: उसे कहते हैं। तो
2: वो दिखते हैं जैसे कोमेन का दिखते हैं,
1: ऐसे कोमेन। हाँ,
2: कोमेन
1: जीरा को कहते हैं।
2: जीरा ब्राउन है और सौंफ हरा
1: होता है। तो ऐसा हुआ राजेंद्र जी, आगे का वृतांत बढ़ने से पहले क्यों ना हम सब शांता के पिटारा से
0: सुंदर से नगमत की ओर बढ़ा जाए।

0: क्या पीना है, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, ये परफेक्टली आपको कैसे पता चला? तो बेटी की सास ने धीरे से कहा कि कल रात को ही आपकी बेटी का फोन आया था।
1: किसका फोन आया राजेंद्र जी?
0: उनकी बेटी का फोन आया था कि मेरे
1: बेटी ने सास को लगा दिया था।
0: हाँ, पहले लगा दिया।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उनसे कहा कि मेरे पापा के स्वभाव से बड़े सरल हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, प्लीज अगर हो सके तो आप उनका ध्यान रखिएगा। पिता की आंखों में वही पानी आ गया। लड़की के पिता जब अपने घर पहुंचे तो घर के हाल में लगी अपनी स्वर्गवासी माँ की फोटो से हार निकाल दिया। जब पत्नी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो लड़की का पिता बोली, मेरा ध्यान रखने वाली मेरी माँ इस घर में कहीं नहीं गई, बल्कि वो तो मेरी बेटी के रूप में इस घर में रहती है। और फिर पिता की आंखों में आंसू झलक गई और वे फपक फपक के रोने लगी।
1: ऐसा फपक फपक के
0: रोने लगी।
1: शांता जी, आपको आता है ऐसा रोना?
2: खुशी से।
1: हम लोग कहते हैं सुसुक सुसुक के, पर सुसुक सुसुक के ये नहीं, फपक फपक के रोने लगे।
0: फपक फपक के रोने लगी।
3: खुशी से पापा ने मुझ पर अपनी ख्वाहिशें लुटा दी, ऐसा ना राजेंद्र जी? खुशी से पापा ने मुझ पर अपनी ख्वाहिशें लुटा दी, मैंने बस मुस्कुराया और पापा ने पूरी दुनिया दिला दी।
0: अरे वाह,
1: या क्या बात है शांता जी। राजेंद्र जी, इस पे तो मेरा दिल कहता कुछ कहने को।
0: हाँ, जरूर
1: ना, पर ये तो कोई कह नहीं कि संजय जी आप कह दो। तो दोस्तों जरूर इस पे मैं, जैसे शांता जी ने अपना संदेश सुना है, एक पिता अपने बेटी के जो संबंध होता है ना, जब एक कन्या के जन्म होता है तो पिता तभी से अपना बेटी को एक बस खैरमंद रूप से और उसे ध्यान देते रहते हैं ना,
3: फूल की तरह,
1: फूल की तरह। और ऐसा हुआ राजेंद्र जी,
0: जी
1: चलो एक वृतांत की ओर बढ़ जाते थोड़ा से, पर अभी तो आपको और सुनाना है।
0: हाँ, थोड़ा सा है, इसके बाद आप वृतांत में बढ़। और जब वो फपक फपक के रोने लग पड़े तो दुनिया में सब कहते हैं ना कि बेटी है इस दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी, मगर मैं दुनिया के सभी माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि बेटी कभी भी अपने माँ बाप के घर से नहीं जाती, बल्कि वो हमेशा उनके दिलों में रहती है।
1: ऐसा
0: ऐसा,
3: क्योंकि बेटी पहचान होती है माँ बाप की,
1: बाप की बेटी पहचान होती है। राजेंद्र जी, ऐसा हुआ कि मैंने देखो, ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं तो उसी कारण नाम नहीं लिया जाता है
0: जी।
1: पर ग्रंथों में लिखा गया है कि घर पे जब कन्या जन्म लेती है ना, कन्या जब जन्म लेती है तो जो पितरों होते हैं ना, पितरों कहते हैं जो अपना जीवित है
3: जी।
1: जिनका और काम क्रिया किया गया है तो वो पितर और योनि में चले जाते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं कि उसके परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया
3: जी।
1: ऐसा क्यों? क्योंकि वो इसलिए खुश होते हैं कि उसकी परिवार से और जा करके बाद में जब बेटी कन्या जो जा करके बेटी का रूप धारण करके और एक दिन उसका विवाह होगा, कन्या दान होगा, औरों का परिवार को बढ़ाएगा, ऐसा है ना,
3: वो मध्यम होता है,
1: तो वो है उसी कारण वो अति प्रसन्न होता है।
3: ये एक कुल ने दो कुल का नाम बढ़ाता
1: है। एक परिवार में जब 100 बेटा ने जन्म लिया
3: जी,
1: तो 100 बेटा होने पे परिवार आगे और आगे नहीं बढ़ सकता जब तक एक
3: बेटी ना हो।
1: हाँ राजेंद्र जी, हम सब एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे, तो फिर हम इसके बारे में भी कुछ और बातचीत होगा।
0: जरूर जरूर।

0: जी संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
1: नहीं, कहना यही रहा राजेंद्र जी कि ये सुंदर गीत जो बाबुल प्यारे और शांता जी इस पे तैयार हो गया है कुछ करने कहने के लिए, तो उसकी
2: फेडर ऑन कर दो।
1: तो शांता जी, आप इस पे क्या कहने वाले?
2: पहला तो मैं कहती हूँ कि गीत जो है, आवाज़ जो है, जो आप दुनिया में नहीं है और फिर भी अपना मीठी ये सुरीली आवाज़ अपना छोड़ गए है।
1: सही बात, ये सुरीली आवाज़ जो दुनिया की एक स्पेशल आवाज़ है, जो जिंदगी भर जब तक दुनिया रहेगा तब तक ये सुना जाएगा ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और ये गीत जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत से सारे ऐसे बातें याद आ जाती है।
1: बहुत से सारे
2: और इतने गाने हैं जी, जो एक्टिंग है ना हेमा मालिनी
1: जी,
2: वो कितनी खूबसूरत है। और फिर ये गीत जो पहले कोई विवाह करते थे सुरीनाम में ना,
1: तो रेडियो से चला,
2: रेडियो से बहुत चलता था ये गीत।
1: हाँ, क्योंकि ये गीत जो पहले एलपे ही होते थे ना, वैसे जैसे आजकल रेडियो चलता है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले और तरीका था। और मेरे ख्याल से कितने खींच गए होंगे
2: वो तो है
1: ये गीत सुनाते सुनाते।
2: ये फिल्म हमने देखी है मेरे अपने बाबू जी के साथ, परिवार के साथ। मेरे पापा जी हम सभी को गाड़ी में बैठा कर ले जाते थे फ्लैम्बोयंट फिल्मोथेक में,
1: ड्राइव इन सिनेमा में। वहां पर
2: हमने देखी ये पिक्चर
1: वहां पर जा करके देखे। राजेंद्र जी, इस पे मैं कुछ और कहना चाहूंगा
0: जरूर,
1: क्योंकि ये आज जैसे कि अभी आपने वृतांत बताए कि एक बेटी अपने पिता के लिए कितना और ध्यान देते हैं, कितना उसे और ख्याल करते हैं ना, ऐसा होता है अभी पिता भी अपने बेटी के भी और जब से जन्म से उनके ध्यान देते रहते हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का और एक लड़की से प्रेम हो गया।
2: अच्छा,
1: प्रेम हो गया और प्रेम के बाद में आ जाता है प्यार। तो लड़का लड़की में प्यार हो गया और एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो गया।
2: हमने दो शब्द सुने आपके मुखारबिन से, वो है प्रेम और प्यार, इसमें अंतर है?
1: अभी तो अंतर इसमें बहुत है, पर अंतर की ओर बढ़ेंगे तो आज हमारे कार्यक्रम नहीं है।
2: अच्छा,
1: पूरा होगा
2: तो इसमें हम इस बात पे हम गौर करेंगे अगले बार।
1: गौर जरूर हम लोग करेंगे, पर अभी देखेंगे, अभी प्रोग्राम बाकी है शांता जी। तो राजेंद्र जी, ऐसा हुआ लड़का लड़की से जब प्यार हो गया तो एक दूसरे बिना जीना भी मुश्किल हो जाता है। लड़का और जा करके लड़की के पिता से कहते कि मुझे शादी करना है।
2: अच्छा जी।
1: पर एक पिता हर बार देखते हैं कि किसे अपना बेटी का और हाथ दे
2: जी,
1: क्योंकि शादी करना तो शायद आसान होगा पर निभाना कोई भी नहीं चाहते है कि अपना बेटी के हाथ ऐसा व्यक्ति के पास दे जो थोड़ा से निभाने में शायद ना कर पाए। तो ऐसा हुआ, लड़का ने गया और पिता ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे तो मैं अपना बेटी का हाथ दूंगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि उसमें कुछ बात होगा। और लड़की प्रेम में पागल था, अपने पिता को फोर्स करते हैं, पिता को फोर्स करते हैं कि पापा मेरा शादी करा दो
2: जी।
1: पिताजी जो बेटी को ना भी नहीं कह पा रहा है
2: जी।
1: और लड़का जो आकर के कहते हैं कि हमारा शादी करा दो, तो दोनों से पिता ये कहते हैं कि शादी करा दूंगा पर एक शर्त पे। शर्त लगाया उन्होंने, कहा शादी कराना है एक शर्त पे, आप जाकर के बारात लेकर आओ, पर बारात लेकर आएंगे तो कोई बूढ़ा साथ में नहीं रहना चाहिए। बूढ़ा साथ में नहीं रहना चाहिए,
2: ये पापा का शर्त है।
1: पापा का शर्त
2: जी।
1: लड़का जाते हैं अपने घर से और कहते हैं कि मान गए और शादी के चलो सब तैयारियां करते हैं और अपने पूरा परिवार बैठा करके और वहां पर वृतांत को बताते हैं, पर करते हैं कि लड़की के पापा ने, लड़की के पिता ने एक ऐसा शर्त रखे है कि शादी करना है बारात लेकर आना पर कोई बूढ़ा साथ में नहीं रहेंगे। जब इस बात को लड़की के पिता कह रहे थे लड़का से, तो लड़का कह दिए कोई ना, सभी बूढ़ों को घर पे रहना है, मौसम ठंडी है, क्यों इधर उधर जाना। और जब यही बात वो जाकर के अपने घर से कहते हैं तो वहां पर पूरा परिवार और थे, और उसमें एक था नाना। नाना पता आपको कौन है?
0: हाँ।
1: मम्मी वाला पापा।
0: हाँ।
1: तो नाना कहते नाना चाहे जोन हो जाए पर हमें तो जाना है।
2: हाँ, ये नाना कहते हैं।
1: ये नाना जी। तो लड़का ने कहा नाना जी मान जाओ, अभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बड़ा मुश्किल से माने हैं, आप घरे रुक जाइए। नाना कहते चाहे मुझे बोरी में भर के ले जाओ पर मुझे तो जाना है। लड़का बहुत समझाए पर नाना माना ही नहीं,
2: बोरी
1: हर बार नाना
2: नाना
1: ना। तो उन्हें लड़का कहते भाई भरो इसे, बोरी में भरो और डिग्गी में डालो,
0: डिक्की में डालो गाड़ी की,
1: डिक्की में, और चले गए बारात लेकर खूब सा दज के जाकर वहां पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे बारात लेकर, अब वहां दुल्हिन के द्वार बिल्कुल पहुंच गए, तो दुल्हिन का पिता किसी को भेजते हैं, बोलते हैं एक शर्त और। वो कहते हैं कि जाकर बोलो ये गांव के पीछे में जो नदी बह रहा है वहां दूध बहेगा तभी ये शादी होगा।
2: ये बड़ा कठिन है,
1: जो गांव के पीछे नदी बह रहा है उसमें दूध बहेगा तभी ये शादी होगा। लड़का को इस बात को सुन के वो बिल्कुल बस स्थिर हो गया, क्योंकि ऐसा बात तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि नदी में जो बह रहा है और जो गांव के पीछे में है जल से, और उसमें दूध बहेगा तब शादी होगा। लड़का सोचते चलो खत्म, विवाह नहीं होगा, सभी तैयारियां कर चुके, अब बारात लौट रहा है। तभी किसी ने कहा कि अरे बारात तो लौट रहा है, क्यों नाना के मार रहे हो, नाना के तो गाड़ी के डिग्गी से निकालो। तो जा करके नाना को निकालते हैं, और नाना का निकालते हैं तो नाना पूछते हैं क्या हुआ भाई, तो लोग कहते हैं वहां पर कि बारात लौट रहे। नाना पूछे क्यों, उन्होंने कहा कि अब दुल्हिन का पिता ने दूसरा शर्त रख दिया है कि जो गांव के पीछे नदी बह रहा है उसमें दूध बहेगा तभी शादी होगा,
0: उसमें दूध बहना चाहिए।
1: हाँ जी, नाना ने कहा कि इतना छोटे छोटे चीजों पे और ये बारात लौट रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। नाना ने पूछा किसने ये संदेश लेकर आया, लोग दिखाए कि ये ही लेकर आए, तो नाना ने कहा कि इधर आओ, जा करके दुल्हन के पिता से कह दो कि दूध का व्यवस्था हो गया है, नदी खाली करा दो।
0: बस
1: यही चीज, दूध का व्यवस्था हो गया, नदी खाली करा दो। वो जा करके व्यक्ति जा करके दुल्हन के पिता को कहते हैं कि वहां किसी ने कहा कि दूध का व्यवस्था हो गया है, नदी खाली करा दो। लड़की का पिता ने कहा कि पक्का कोई बूढ़ा आया है बारात में। तो दोस्तों ये एक वृतांत हो जाता है कि हम सब सोचते हैं कि हम सब पढ़ लिख लिए हैं, हम सब अब जान गए, सब कुछ अब अपना पार हो जाएंगे, पर खास करके हम अपने पुरखों अपने बूढ़ों के साथ में जब नहीं लेकर जाते हैं ना। आजकल ऐसा होता है शांता जी कि हम लोग जैसे विवाह संस्कार कोई भी कार्य करे और जा कर के बातचीत करने को, तो हम सब सोचते हैं कि हाँ आजा, कौन जाएगा लेने के फॉर सॉर्किंग्स तो है इससे, और फिर पहुंचाने पड़ेगा, कौन जाएंगे विरधालय से लाने को और पहुंचाने के। तो हमें इन बातों पे ध्यान देना, क्योंकि अभी हम सब के कहावत है कि महिमा हमारे पुरखों के है, तो हम सब उससे बहुत से सीखना है। राजेंद्र जी क्यों ना हम सब एक गीत की ओर बढ़ते हैं, और दोस्तों इस वृतांत के माध्यम से हम जरूर अपने पुरखों के और ध्यान दे, और उन्हें हर कार्यक्रम जो कोई भी कार्यक्रम अपना करे तो उसे लेकर के और साथ में करे। राजेंद्र जी कौन सा गीत पिटारा से आप निकालने वाले हैं?
0: मेरा आसमान है पापा,
1: तो चला देते हैं।

0: मेरा आसमान है पापा।
1: दोस्तों जैसे कि अभी आप सुने, एक बेटी अपने पिता के लिए कैसे सोचते हैं और पिता जो अपने बेटी के लिए कैसे सोचते हैं। शांता जी, इस पे आपके क्या कहना है, कुछ और संदेश रखना है, या हम सब न्यूज की ओर बढ़ सकते हैं?
2: एक तो ये जरूर कहूंगी कि बेटी की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, फिर भी बेटियां कभी अधूरी नहीं होती, फिर भी बेटियां कभी अधूरी नहीं होती। हर बेटी की पहचान होती है पिता, हर बेटी की पहचान होती है पिता, हर बेटी का अरमान होता है पिता, हर बेटी का अरमान होता है पिता, बेटियों के लिए पूरा आसमान होता है पिता। तर वैसे ही गीत हमने यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से अभी आपके लिए पेश किया। तो बेटियों के लिए होता है आसमान पिता,
1: बेटियों के लिए होता है आसमान पिता। दोस्तों अभी जैसे कि आप सुन ही चुके हैं कि हम सब हमारे आज का विषय के ओर छलांग लगाना है, पर राजेंद्र जी जो इस समय कंप्यूटर पर लगा रहे हैं न्यूज़ कमर्शियल, और उसके बाद में हम सब जो आज का विषय है उस ओर बढ़ेंगे।

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
7: दोस्तों यहां तक था हमारे कमर्शियल्स और जो हमारे न्यूज़ और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो इस समय हम सब यहां स्टूडियो में उपस्थित हैं शांता जी राजेंद्र जी और मैं भी जो आपके साथ ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश इस समय जो रखा जा रहा है तो राजेंद्र जी जैसे कि पता है कि आज का विषय ब्राह्मण का महत्व उसके बारे में हम सब कुछ बातचीत करने वाले हैं तो क्यों ना हम उस पे उस ओर यानी कि तेईमा के ओर छलांग लगा लेते हैं फिर उसके बाद में कुछ गीतों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा
8: जरूर तो पहले छलांग लगाया जाए ब्राह्मण का महत्व एक बार की बात रहा अकबर ने एक ब्राह्मण को दयनीय हालत में जब भिक्षाटन करने के लिए देखा तो बीरबल की ओर व्यंग कसकर बोले बीरबल ये है तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता के रूप में जाना जाता है ये तो भिखारी है
7: भिखारी
8: हाँ
7: ऐसा
8: ऐसा अकबर बोला
7: अकबर ने बीरबल से कहा
8: ऐसा बीरबल ने कहा अकबर ने बीरबल से कहा
7: जी
8: तो बीरबल ने उस समय तो कुछ नहीं कहा लेकिन जब अकबर महान महल में चला गया तो बीरबल वापिस आया और ब्राह्मण से पूछा वह भिक्षाटन क्यों करता है।
7: तो राजेंद्र जी ये इस पे थोड़ा से हमारे सरनामी में कह दो कि भिक्षाटन मतलब क्या?
8: मतलब भीख मांगना।
7: ऐसा
8: तो बीरबल वो पूछ ही रहा ब्राह्मण से कि हाँ जी काहे का भीख मांगे,
7: एकदम
8: मंगा काहे रहे,
7: एकदम सरनामी,
8: एकदम सरनामी रहा। तो ब्राह्मण ने कहा मेरे पास धन पैसा आभूषण भूमि कुछ नहीं है और मैं ज़्यादा शिक्षित भी नहीं हूँ, यानी कि मैं ज़्यादा पढ़े लिखल न रहा, इसलिए परिवार के पोषण हेतु भिक्षाटन मेरी मजबूरी है। इसलिए कहला के परिवार का जो पोषण भरण करे उसके लिए मेरे लिए भिक्षा मांगना जरूरी है।
7: अच्छा।
8: तो बीरबल ने पूछा भिक्षाटन से दिन में कितना कमा लेते हो, प्राप्त हो जाता है? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया 6 से 8 असरफियाँ। उस समय असरफिया रहे रुपया जैसे रहा तो समय असरफी रहा,
7: असरफी रहा,
8: असरफी उसको असरफी बोले गिन्नी।
7: राजेंद्र जी इस पे मैं कुछ और कहना चाहूँगा क्योंकि असरफी जब ताजमहल बन रहा था ना तो उसे भी असरफियों से भरा यानी कि वर्कर्स के भरा जाता था,
8: उसी समय का बात है।
7: और एक होता कौड़ी,
8: कौड़ी तो नीचे रहा,
7: और नीचे रहा असरफी से नीचे,
8: असरफी तो उसके बाद कौड़ी रुपया चरन्ना दुवन्ना अटन्ना
7: ऐसे फिर आने लगा,
8: फिर 1 रुपया हुआ। अब 1 रुपया के नीचे कुछ ना चले, अब जमाना बहुत ऊपर हो गया,
7: अब तो जमाना बदल गया,
8: 1 रुपया में कुछ ना मिले
7: नहीं मिलता,
8: तो अब 10 रुपया 100 रुपया हो गया, तो धीरे धीरे 1 रुपया भी बंद हो जाएगा, लेकिन 1 रुपया अभी भी चले,
7: अभी भी चलता है वहाँ इंडिया,
8: हाँ अभी तो चले, खूब चले। तो बीरबल ने कहा आपको यदि कुछ काम मिले तो क्या भिक्षा मांगना छोड़ देंगे? ब्राह्मण ने पूछा मुझे क्या करना होगा? बीरबल ने कहा आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रतिदिन 101 गायत्री माला मंत्र का जाप करना होगा और इसके लिए अच्छी प्रतिदिन भेंट स्वरूप 10 असरफियाँ प्राप्त होंगी। कि आपको केवल माला जप करना है और अच्छे वस्त्र पहनना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जो 6-7 असर पे मिलती है हम 10 असर पे देंगे आपको, और आपको केवल ये काम करना।
7: तो राजेंद्र जी इस पे क्यों ना एक पिटारा से निकाला हुआ गीत सुना देते हैं।
8: जरूर।
9: हाँ, असरफी असरफी बोले है बताल में दल।
7: राजेंद्र जी शांता जी का माइक ऑन नहीं है।
8: हाँ,
10: हाँ असरफी आपने कह रहे थे ना, तो असरफी जैसे हम जानते हैं आज के दौर में बताल मेडल, तो उस जमाने में असरफी था पहला। हाँ हमने खोजबीन के लगाई, हम पकड़ अपन सुनने वालों को नहीं दिखा पाएंगे, पर हम यहाँ पे संजय जी को और राजेंद्र को तो मालूम है,
7: बस
10: ऐसे बताल मेडल।
7: ये गूगल बाबा भी कमाल करता है राजेंद्र जी, बस दबाओ बटन और गूगल से निकाल लो
8: बस।
7: दोस्तों जैसे कि अभी हम सब आज के कार्यक्रम में कुछ सुंदर सुंदर गीतों को लेकर आए, तो आशा यही रखते हैं हम सब कि वही गीतों को चलाया जाए।

0: बरदे वीणा वादिनी बरदी, जो सरस्वती का वीणा वादिनी बरदी जो भजन आपने सुना, बहुत ही अच्छा मनमोहक भजन रहा। तो क्यों ना हम ब्राह्मण की बात पे आगे बढ़ा दिया जाए।
1: अच्छा, ये ब्राह्मण किसको कहते हैं, क्यों?
0: हाँ, और ब्राह्मण किसको कहते हैं, जो जिसपे जिसके अंदर ज्ञान हो वही ब्राह्मण है।
1: उतना दूर नहीं पहुंचा ये, अभी धीरे धीरे चल
0: रहा, धीरे धीरे चल रहा है।
1: तो दोस्तों आप सुनते रहना, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी लोग और ऐसा ऐसा बात बोलते रहते हैं कि ब्राह्मण क्या है और उसके अंतर्गत में कभी ऊंचा नीचा हो जाता है, पर इसमें एक विशेषता है और जो हम सब लेकर आपके साथ और बांट रहे हैं। तो देखते हैं राजेंद्र जी, आगे का वृतांत में क्या कहा गया।
0: हाँ, तक आगे के वृतांत में कहा गया है कि अब तो गायत्री मंत्र की ये बात ब्राह्मण मान गए और उन्होंने स्वीकार कर ली। तो गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ये बात एकदम फिट बैठ गई। बीरबल का जो प्रस्ताव रहा, अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षाटन करना बंद कर दिया, भिक्षा मांगना बंद कर दिया और बड़ी श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दिया और शाम को 10 सर्पियां भेंट स्वरूप लेकर अपने घर लौट आता। सरनामी में चाहे हमें समझाए
1: नहीं, सरनामी में, क्योंकि आपके सरनामी जो, क्योंकि हम लोग तो कोशिश करते इंडिया में जा करके और हिंदी कोशिश किया जाता है बात करने को।
0: हाँ।
1: पर वहाँ ज्यादा नहीं बात कर पाते, पर आप जब सरनामी में समझाते हैं ना तो मजा कुछ और हो जाता है।
0: हाँ, तो अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षाटन जो भिक्षा लेते थे वो बंद कर दिए और फिर वो अपने पूजा जो गायत्री मंत्र है वो उसमें लग गया। और जब गायत्री मंत्र में लगे तो ब्राह्मण का ध्यान आकर्षित होने लगा, दर्शनाभिलाषी उसके दर्शन करके मिठाई दर्शन उसका जो

0: मन से गायत्री जाप में लीन रह गया और गायत्री मंत्र की जाप की संख्या असर्पियों की संख्या दोनों ही बढ़ा दी। जब बीरबल ने देखा कि इतना प्रभाव रहा तो उन्होंने बीरबल ने गायत्री मंत्र की संख्या भी बोली बढ़ा दो पर हम तुम्हारा 10 का 20 कर देते हैं।
1: अच्छा। और बढ़ा दिया,
0: डबल कर दिया। तो लोग सब कपड़ा पैसा चढ़ाए, असर्पी भी मिले। तो फिर ब्राह्मणों को धीरे धीरे ब्राह्मण ने वो 20 रुपये बोला कोई जरूरत नहीं 20 असर्पी की, ऐसा हो गया। तो ब्राह्मण की संत की नित्य गायत्री जप की खबर चारों ओर फैलने लगी
2: जी।
0: दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे
2: जी।
0: भक्तों ने ब्राह्मण की तपस्थली में मंदिर व आश्रम का निर्माण करा दिया।
1: तो राजेंद्र जी ऐसा होता है कि कहावत है जैसे कि तीरथ।
0: हाँ।
1: तो तीरथ जैसे हम सब जाते हैं तीरथ स्थानों पे ना, तो तीरथ सिर्फ वो नहीं होते, कहावत है कि जैसे कि जो चलते फिरते तीरथ हो जाता है। तो ये ऐसा वृतांत हो गया ये ब्राह्मण।
0: हाँ, ब्राह्मण क्योंकि ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जब सिद्ध हो गया तो ब्राह्मण सिद्ध हो गया और फिर लोगों का ब्राह्मण का प्रभाव इतना हुआ कि लोग आकर्षित होके वो खींच के आने लग गए।
2: अच्छा।
1: क्योंकि यह सभी को नहीं हो सकता, पर जो जिसके पास वो सिद्ध ना होता है सिद्धि हो जाए तभी हो पाएगा।
0: फिर ब्राह्मण के तप की प्रसिद्धि की खबर अखबार को भी मिली। बादशाह ने भी दर्शन हेतु जाने का फैसला किया।
1: आगे से तो बादशाह ने तो इसे कुछ गड़बड़ कहे थे।
0: हाँ, तो बादशाह को क्या पता था कि वो ये वही ब्राह्मण रहा
1: जो नहीं पता था।
0: आगे से साधारण रहा ब्राह्मण,
1: भिक्षुक।
0: हाँ, भिक्षुक रहा, ये अब सिद्ध हो गया ना।
1: अब सिद्ध हो गया।
0: तो अकबर को भी जब खबर लगी बादशाह को तो उसने सोचा कि मैं भी चले जाऊं, कैसा ब्राह्मण रहा
1: देखते हैं।
0: हाँ, जाने का फैसला लिया
2: जी।
0: तो वह शाही तोहफे लेकर राजसी थाट बाट में बीरबल के साथ संत से मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर शाही भेंटे अर्पण कर ब्राह्मण को प्रणाम किया। ऐसे तेजोमय संत के दर्शनों से हर्षित शाही हृदय सहित बादशाह बीरबल के साथ बाहर आ गए। फिर जब बीरबल ने अकबर ने दर्शन किए तो सोचा कि यार, उसको लगा कि हाँ कुछ है, कोई ताकत है, कोई शक्ति है। तो वह जब दर्शन करा ब्राह्मण का फिर बाहर आया। तब बीरबल ने पूछा, क्या आप इस संत को जानते हो? फिर बीरबल पूछिला,
1: बीरबल ने
0: संत को न जाने
1: तो क्यों ना एक गीत चला देते हैं राजेंद्र जी।
0: हाँ, इसी
1: क्योंकि शांता ने पिटारा भर करके लाए हैं और हम सब गीतों बस 3-4 ही चला पाते हैं 2 घंटा के अंदर अंदर।
0: हाँ,
1: में उसे असलियत में तो वो ब्राह्मण को पहचाना नहीं मेरे ख्याल से
0: ना।
1: क्योंकि अभी प्रश्न रखा उसके पास ना।
0: हाँ।
1: तो अभी दोस्तों हम सब एक शांता जी आप कुछ कहने वाले।
2: हाँ, तो देखो ना, अगर कोई के ऐसे ऐसे हमने कहा बीरबल बादशाह के ना, तो बादशाह ने उस भिक्षुक के ऐसे कह दिए कि भिक्षु वो बात से अपन सीढ़ी बनाकर और उतना ऊपर पहुंच गए कि जहाँ पर अब बादशाह गए हैं उनका दर्शन करने के लिए और उनको पता नहीं है कि वही है भिक्षुक है। हाँ, अच्छा, पर इतना तो यहाँ तक हमको पता है। अभी एक गीत के बाद में हम उकर और आगे में सुनेंगे कि व्यर्थ्या कैसे हो और आगे में कैसे इसका बढ़े।

0: जय भोले है तो गजबी कहानी, बहुत ही सुंदर सुप्रसिद्ध साईं भजन जो सुना है, बड़ा ही मनमोहक रहा। बढ़ते हैं आगे की ओर, अकबर और बीरबल की कहानी की तरफ बढ़ते हैं और ब्राह्मण देवता की तरफ बढ़ते हैं। तो अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तो इससे आज पहली बार मिला हूँ। फिर बीरबल ने कहा, महाराज आप इसे अच्छी तरह से जानते हो, यह वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने व्यंग कसकर कहा था कि ये है तुम्हारी ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता कहा जाता है। आज आप स्वयं उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवा कर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा न रही, बीरबल से पूछा, लेकिन यह इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? तो जब अकबर में देखा कि उस दिन तो भिखारी ब्राह्मण रहा और आज इतना बड़ा कि मुझे भी दर्शन करने का जाना पड़ा और वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ा, तो ये सब कैसन रहेला? तो अकबर बीरबल से पूछे आगे। तो बीरबल कहेला कि महाराज, वह मूल रूप से मैं ब्राह्मण ही है, परिस्थिति बस वह अपने धर्म की सच्चाई व शक्तियों से दूर था। वो कहा कि उधर रहा तो ब्राह्मण, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी हो गई कि वो उसका जो धर्म है उस पर ना उतर पाए पूरा, इसलिए वो थोड़ा दूर हो गए। पर धर्म के एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और कैसे बादशाह को चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया, यही ब्राह्मण अधीन मंत्रों का प्रभाव है। वो बोले कि देख लो, एक मंत्र ने ही इतना उसको महान बना दिया कि अकबर भी उसके चरणों में जाके गिर गया। तो यह नियम सभी ब्राह्मणों के समान रूप से लागू होता है, सभी ब्राह्मणों के लिए यही नियम लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मण आसान और तप से दूर रहकर जी रहे हैं। ब्राह्मण के जो दशा है इस समय, वो अगर किसी की खराब है तो वो अपने तप से दूर रह रहे हैं, नहीं तो सब ब्राह्मण अच्छे से मोई से रह ला इधर, इसलिए पीड़ित हैं। वर्तमान में आवश्यकता है कि सभी ब्राह्मण पुनः अपने कर्म में जुड़े, अपने संस्कारों को जाने और माने। मूल ब्रह्म रूप में जो विलीन होने की क्षमता रखता है वही ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से चले तो देव शक्तियाँ उसका साथ चल पड़ती है। तो ब्राह्मण की ऐसी शक्ति है कि अगर वो अपने कर्म में चले तो देव शक्ति भी उसके साथ साथ चलती है। और इस प्रकार का जो अकबर को एहसास हुआ कि ब्राह्मण कितना महान है, तब जाके उसको हुआ।
1: तो राजेंद्र जी, इस पे जब देखा जाए कि सभी को अपना अपना और स्वाभाविक रूप से अपना अपना तरीका रहना चाहिए
0: जी,
1: तभी उसमें और तरक्की हो पाएगा।
0: हाँ,
1: और जो अपना तरीका से नहीं रहेंगे लोग, क्योंकि हर बार ये कार्यक्रम में रखते समय ये तो हमारे विशेषज्ञ लोग हम लोग के लिए सब खोज कर रख देते हैं, पर हर बार ऐसा होता है कि लोग इस पे ऊंच नीच बड़े छोटे करने लगते हैं, पर इसमें महत्व ये है कि सभी को अपना स्वाभाविक रूप में और रहना और अपना रहन सहन करना, तो कोई प्रकार से और इसमें तकलीफ नहीं होने वाला। इस पे भी एक राजेंद्र जी, कभी हम लोगों ऐसे होते कि हम लोगों अपना मातृभाषा जो हिंदी है उसे तो हम कोशिश करते रहते हैं सीखने के, पर देखा जाए कि ये एक देश है जहाँ पर हम लोग के सिखाने के लिए कितने लोग तैयार हैं, और तैयार है सिखाने के लिए, पर हम सब इतना भीड़ भाड़ में जी रहे हैं और जीते जीते बस समय विपरीत हो जाता है, अब बूढ़ा हो जाते हैं, सीख नहीं पाए कभी काल के। और ऐसा है कि हम लोग के लिए इतना सो फील मोखलक है इधर फॉर ऑन्स ऑम द लेरन, ऐसा है कि ना शांता जी?
2: एकदम से सहमत है।
1: इसमें एक है जैसे कि हमारे ICC होते हैं ना, तो हम लोग के लिए हिंदी का और संस्कृत का आदि सीखने के लिए जिसे इच्छा है तो सब चीज वहाँ मुफ्त में, और न सिर्फ वहाँ पर भी कितने और ब्यूर्थ हाउस और भी स्थान हैं जहाँ पर हम सब के लिए लोग तैयार रहते हैं सिखाने के लिए। तो इसमें जब देखा जाए कि जो आज का विशेष और विषय रखा गया है कि ब्राह्मण का महत्व, तो हमारे पुरुषोत्तर में एक मंत्र होता है ना कि कि वो मंत्र से हमें इस बात को ज्ञान होता है कि हमारे जो शरीर को अंग है ना, तो उसमें कहाँ और कहाँ कौन बसा हुआ है। जैसे कि ब्रह्मनश्य मुखमा सिद्ध बाहुराजन्य कृत उरुतदस्य यद्वस्य पाद्भ्यम सुद्रो अजायत। तो इसमें हमारे शरीर के अंग में, हमारे शरीर में सब कुछ बसा हुआ, सब कुछ बसा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ राजेंद्र जी, इस समय आप जोर तोर से गाना का तैयारी में भिड़े हुए हैं। शांता जी,
3: पर आपने राह से आप भटक गए, आप कुछ और कह रहे थे।
1: राह से भटकना तो लाइव प्रोग्राम में तो ऐसे हो ही जाता है। नहीं, बस वही वृतांत के बारे में रहा शांता जी, कि हम सब इसे कोशिश करें पढ़ने के लिखने के, और ताकि हम सब अपने जो कभी उल्टा और ऊंच नीच बना देते हैं इस पे ध्यान दे सकें। राजेंद्र जी, अगला गीत जो हमारे पिटारा से निकाला गया है, कौन सा गीत है?
0: और पिटारा से निकला हुआ गीत जो है, एक ज्योति बहुत सुहानी।
1: तो ज्योति बहुत सुहानी, और हमारे कार्यक्रम के नाम है
0: ज्योति का प्रकाश।
1: तो लक्ष्य यही रहता है कि हमारे जो जीवन के ज्योति जो जल रहा है, इसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके।
0: हाँ, यही लक्ष्य रहा है।
1: तो क्यों ना गीत को चला देते हैं।
0: जरूर।

0: सुहानी।
1: एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति बहुत मिल जाए। तो संजय जी, आप शक्ति के बारे में कुछ चाहे बोले?
2: नहीं, शक्ति के नहीं, पर कुछ और चाहता हूँ बोलने।
1: बोले, कह दे।
2: कह दूं कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सुख की ताला किसने लगाया है। तो राजेंद्र जी, यही बात हो जाता कि सुख को ताला किसने लगाया है। तो आज का विषय में तो हमारे विशेषज्ञों ने, मैंने सोचा था ये तो हो ही नहीं पाएगा आज, पर इसे तो हम लोग के तो पर रखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम थोड़ा से इसके बारे में कि कपूर और सुखियों में है, क्या इसके बारे में हम सुना सकते हैं अपने सुनने वालों को कि नहीं?
1: जरूर, हाँ, कपूर सुर्खियों में है, इसके बारे में हमें लोगों को सुनाना चाहिए।
2: सुनाना ही पड़ेगा क्योंकि हम जैसे कि हमारे खोजी सेना है ना, तो उन्होंने हम सब के लिए सब कुछ खोज करके रख दिए। मेरे ख्याल से इसी कारण ये वृतांत भी इसी में रख दिए गए हैं।
1: जरूर।
2: तो दोस्तों, आप सुनते रहना और राजेंद्र जी हम सबको और उस ओर ले जा रहे हैं, तो सुना दीजिए राजेंद्र जी।
1: डॉक्टर भी कपूर इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। कल तक जिस कपूर के धुएं को पर्यावरण विधि ने प्रदूषित कहकर खारिज कर दिया था, आज वही धुआं संकट में प्राणवायु बन गया है।
2: कपूर?
1: हाँ, कपूर कैसे प्राणवायु बन गया है? प्राण का संकट जिसमें रहा प्राणवायु, कहे कि जिस धुआं को लोग कल तक प्रदूषण कहते थे, उसी धुआं को प्राण की वायु मतलब अच्छा मानने लगे। तो कैसे मानने लगे, इस पे विचार विषय है। एक समय था जब प्रत्येक घरों में सुबह शाम कपूर की आरती गाई जाती थी। संपूर्ण घर में कोने कोने में कपूर का धुआं किया जाता था। तत्पश्चात घर के सभी सदस्यों को कपूर की आरती दी जाती थी, जिसमें जलती लौ का धुआं दोनों हाथों से लेकर चेहरे से लेकर सीने तक हथेलियां फेरी जाती थी।
2: ऐसा?
1: हाँ,
2: पहले
1: किंतु
2: राजेंद्र जी, ऐसा अब क्यों नहीं होता?
1: अब क्यों नहीं होता, वही तो विषय है। वही क्यों होने वो लगेगा, उसी की बात चल रही है।
2: वैज्ञानिक के माध्यम से अब
1: विज्ञान के माध्यम से लोग सब समझने अच्छे से समझ जाता है, तो वही विषय आगे का है। किंतु आधुनिकता मतलब अभी की जो बात है, अंधी दौड़ और चंद किताबें पढ़कर पाई डिग्रियां की आंखट घमंड में हम इतने चूर हो गए हैं कि इन्हें अंधविश्वास मान लिया। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम आरती हमें ढोंग और समय बर्बाद करने लगी। अब का जो किताब डिग्री डॉक्टर हो गए हैं, वो सोचते हैं कि ये सब बेकार की चीज़ें, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम को भी नहीं मानते हैं। तो इसी पे आगे का जो मेन विषय अब आने वाला है, वो इसी की बात कर रहे हैं। प्राणवायु कर्पूर आरती धुआं लगने लगी। खुद को वैज्ञानिक समझने वाले हमने ये नहीं जानते, को जानने की कोशिश भी न करी कि आखिर हवन कर्पूर रीति रिवाज हमारी जीवन शैली का हिस्सा क्यों थे।
2: राजेंद्र जी, ये लोग कहते थे कि कपूर से धुआं होता है वो घर काला होता है।
1: हाँ,
2: तो वो उसमें तो बात सही है।
1: हाँ,
2: कि थोड़ा काला होता था। वास्तव में ये उसमें कोई ऐसा चीज नहीं जो हमारे सेहत के लिए खराब है,
1: ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे पूर्वज विज्ञान से भली भांति परिचित थे। सनातन स्वयं एक विज्ञान है, लेकिन उस वक्त कोई वैज्ञानिक शब्दावली तो थी नहीं, अतः उन्होंने विज्ञान को धर्म से जोड़कर दिनचर्या का अहम हिस्सा बना दिया। आज वैज्ञानिक प्रयोग कर मान रहे हैं, आज के वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर माना है।
2: वैज्ञानिक माने तो
1: रिसर्चर।
2: हाँ, खलेरदन है।
1: खलेरदन कि जहाँ नित्य हवन होता है, वहाँ कोविड का खतरा सबसे कम है।
2: अरे राजेंद्र जी, थोड़ा से इस पे थोड़ा से ठहर जाओ, क्योंकि यहाँ से गीत चला देते हैं।
1: हाँ जरूर, एक पहले गीत,
2: क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ मन करता है कहने को।
1: हाँ जरूर।

0: या मार सके ना कोई, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है और अटल विश्वास है तो उसका कोई मार ना सके, कोई एक रोवा बिगाड़ ना सके।
1: ये तो बड़े बात कह दिया शांता जी,
0: बड़े बात नहीं है ये, सही बात,
1: बहुत बढ़िया, सही बात, सही बात, बहुत मोई, बहुत।
0: और कहते हैं कि मानना ना, जानना नहीं, मानना चाहिए भगवान को।
1: सही बात,
0: जाना तो चाहिए पर मानना चाहिए।
1: और ये जरूर कहना चाहूंगा राजेंद्र जी कि जल, जो जल होता है ना, शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। तो हम अभी कपूर के बारे में कुछ हमारे विशेषज्ञ लोग जो हमारी खोजी सेना हैं हम सबके लिए रखे हुए हैं, तो क्यों ना हम अपने सुनने वालों को उसके बारे में सुना देते हैं कि कपूर का महत्व जो आज हमारे पास है उसके बारे में और जानकारी रखते हैं।
2: हाँ, आज वैज्ञानिक प्रयोग कर मान गए हैं कि जहाँ नित्य हवन होता है वहाँ कोविड का खतरा सबसे कम है।
1: कोविड का खतरा,
2: यानी कि कोरोना,
1: कोरोना का।
2: मात्र 3-4 दशक पूर्व तक प्रत्येक घरों में हवन होते थे, किंतु आधुनिकता का सर्वश्रेष्ठ और सनातन का पिछड़ा मानने की मानसिकता के चलते हमने सब कुछ भुला दिया। आधुनिकता का मतलब होता है कि आजकल के जमाना नया, नवा नवा चले रहा सब जंगरा।
1: हाँ जी,
2: तो वो पिछले जैसे बूढ़ो लेकर वो न माने ले कोई
1: नहीं,
2: तो
1: जैसे कि आज पहला माने, जैसे आज पहला वृतांत में हम सब रखे गए थे। पहला वृतांत में रखे गए थे कि बूढ़ा बूढ़ा नाना वाला ना, कोई मानता ही नहीं आ जाओ नाना को, पर काम किसने निकाला,
2: नाना ने।
1: हाँ, क्योंकि ऐसा बात सुन के सभी पिछड़ जाएंगे, क्योंकि नदी में कैसे कहाँ दूध बह सकता है ना। और बस कहने वाला बात था, और उन्हें समझने के लिए बस हमारे जो पुरखों है उन्हें, उनके हम सब, उनसे हम सबको बहुत सीखना है।
0: और ये भी जो राजेंद्र जी ने पढ़ के और बताए ना कि पुराना के सभ्यता जो है तो आप आज के दौर में वो सब नहीं मानते हैं,
1: जैसे समय नहीं लोग देश में,
0: और जैसे ये कोरोना आ गए तो वही सभ्यता हमको आज प्रयोग करना पड़ेगा कि हाथ जोड़ के नमस्ते करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, हाथ न मिलाने के अब वो मिनहाई है ना
1: जी,
0: तो वो नमस्कार हाथ जोड़ के सभी को।
1: सही बात, सही बात,
0: तो वो भी सभ्यता पुराना के है और मानते नहीं थे लोग, और आज के दौर में वो भी, तो ऐसे भी राजेंद्र जी कह रहे कि कपूर के उसका
1: कपूर
0: वायु
1: प्रयोग करने से कौन कौन सा और जा करके उसमें हमारे लिए कितना प्रयोग करने से हमारे लिए कितना लाभदायक है। सही बात आप कह रहे हैं,
2: तो इसका दोष भी हमने अपने बड़े बुजुर्गों पर मर दिया, यानी उन पे कह गए भी दोष है, किंतु आपके बड़े बुजुर्ग तो पढ़े लिखे नहीं थे।
1: तो राजेंद्र जी, इस ये टुकड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसे कम से कम आपको हमारे सरनामी,
2: इसके जो दोष रहिला उस सब बूढ़ों लोगों पे मर दिया जाए उन्होंने सोचा, लेकिन आपके लिए आपके बड़े बुजुर्ग तो बड़े बूढ़े लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, परंतु आप तो थे, वो न पढ़े लिखे थे तो आप तो थे, आपने क्यों नहीं रीति रिवाजों के पीछे छुपे विज्ञान की जानने की कोशिश की, जो हमारे रीति रिवाज चले आ रहे थे,
1: पर रीति रिवाज को
2: उसका विज्ञान क्या था,
1: विज्ञान के कैसे पाछे चलेंगे, कैसे खोज पाएंगे, कैसे जांच कर पाएंगे, तो उसके लिए तो कम से कम कुछ पढ़ना लिखना जरूरी है।
2: पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो भी वो विज्ञान था
1: उसके पास, था
2: तो वो विज्ञान हमें चाहे कंटिन्यू करे और उसको खोजे कि ऐसा क्यों है, तो जो आज के पढ़े लिखे लोग हैं वो उसी को खोज के अभी भी अपना विज्ञान बना रहे हैं। तो कहने वाले हम ये भूल गए कि विज्ञान बिना प्रमाण के किसी को विश्वास अंधविश्वास नहीं मानता, फिर आपने कैसे बिना प्रमाण के मात्र दुष्प्रचार में बहकर सर्वश्रेष्ठ सनातन परंपराओं को अंधविश्वास ठहरा दिया। कहे कि आपने कैसे बगैर प्रमाण के हमारा जो सनातन का विश्वास है उसको, उनकी परंपराओं को अंधविश्वास, मतलब आंखी बंद करके विश्वास करे अंधविश्वास।
1: हाँ जी,
2: तो कैसे विश्वास करे, तो ये चाहे हमें ढूंढे कि इसके पीछे क्या विज्ञान रहा। आज दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के वक्त, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहा दुनिया का उसके वक्त, मानवता पर संकट के वक्त, आधुनिक दुनिया पुनः सनातन की शरण में है, सनातन हो गए सब दोबारा से,
1: सब हो गए,
2: सब हो गए।
1: जैसे शांता कह रहे थे कि हाथ जोड़ लो,
2: हाथ जोड़। तो हवन, कर्पूर, अजवाइन, हल्दी, हस्त प्रक्षालन, नमस्ते लड़ाई जीतने के मुख्य अस्त्र बन गए। हवन करे, कर्पूर से आरती करे, अजवाइन खाए पानी में उबाल के, हल्दी खाए, हाथ हस्त प्रक्षालन हाथ धोए और नमस्ते करे, ये चीज करे, नमस्ते करे, तो ये जो लड़ाई रहे कोरोना से जीतने की, इसी से जीत जा सके,
1: इसी से जीत जा सके। तो ये बात हो जाता है कि हमें कैसे उसे बच सकते हैं।
2: तो मजबूत, हाँ मजबूत
1: एक तरीका है।
2: तो मजबूत जड़ों वाला वृक्ष ही आंधी तूफान झंझावतों में टिक पाता है। जो कल तूफान आएगा, आंधी तूफान आएगी,
1: हाँ।
2: जिसके वृक्ष मजबूत रहे, जो वृक्ष मजबूत रहे, जिनका जड़ लंबा रहे, उनको कोई फर्क ना पड़े,
1: कोई फर्क।
2: लेकिन जो हल्का रहे उनको फर्क पड़े कल, देखना। अतः अपनी जड़ों सनातन से जुड़े रहिए, सनातन जो धर्म है उससे जुड़े रहिए। हम सबके लिए यही लड़ाई अवश्य जीतेंगे और इसी के बाद सब लोग जीत जा सके। तो क्यों ना हम आज अपना सूरीनाम, हमारा प्यारा देश।
1: राजेंद्र जी, बस यही प्रतीक्षा था कि सूरीनाम, हमारा प्यारा देश, कम से कम सुना दो।
2: सुना देते हैं जरूर।

0: सूर्य नाम हमारा प्यारा देश, इससे मिलने को कोई इनकार नहीं। तो संजय जी, आपका सूर्य नाम इतना प्यारा देश है, तो आप कुछ बोले?
1: नहीं राजेंद्र जी, बोलूं क्या, इच्छा कर रहा हूँ सूर्य नाम जाने को।
0: तो चलो,
1: और सूर्य नाम जाने को तो वहां पर आपको पता लिफोर्नो का है ना? राजेंद्र जी
0: जी,
1: लिफोर्नो आपको नहीं पता का?
0: लिफोर्नो हम ना जाने लमन।
1: ये कार्यक्रम को सुनने वाले एक हमारे हर सप्ताह वो कार्यक्रम को सुनते हैं भाई सुग्रीम जी, जो क्या एक अर्थ और सरमक्का के रहने वाले।
2: अर्थ क्या जी, क्या एक अर्थ। हाँ, वहाँ पे गाड़ी वो नदी में गिर गया था ना उस समय पे, तो इसलिए वहाँ पे प्लस वन क्या एक अर्थ, अर्थ क्या एक धरती
1: ऐसे रख दिया।
2: हाँ,
1: तो यानी कि राजेंद्र जी अर्थ क्या एक के मतलब आपको भी नहीं पता क्या? ना
0: ना, हमने जान लिया
1: उसका मतलब, ध्यान से देखना है। और ये कार्यक्रम जो हर सप्ताह वो श्रीमान जी ये कार्यक्रम को सुनते रहते हैं, और उसके लिए भी हम सब किस दिन एक गीत भी रखने वाले हैं कार्यक्रम में। पर जी, समय पे ध्यान देना है, और समय के माध्यम से हम सब अब वो सीमा पे पहुंच गए हैं जहां पर हमें
0: पहुंचना चाहिए,
1: कहीं वो गीत को और रखना है।
0: जरूर,
1: तो चला देते हैं और फिर उसके बाद में देखा जाए कि कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा।
0: जरूर।

0: पुकारे।
1: हाँ जी सुनने वालों, जैसे आपको पता है तो यहाँ पर समय भी हो गए हैं, तो समय से पहले तो मैं भी ये कहूँगी कि पापा के होने से बचपन खुशियों के साथ में होते हैं, कि पापा के होने से बचपन खुशियों साथ में होते हैं हर राह आसान, होते हैं हर राह आसान जब मेरे हाथ पापा के हाथ में होते हुए। सुनने वालों, आपको हम यहाँ से दिल से धन्यवाद कहती हूँ प्रोग्राम को सुनने के लिए। आपको शांता की प्यार भरे राम राम प्रणाम।

दूर है फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा, लागी छूटे ना अब तो सनम। जैसे ही ये गाना के बोल आते हैं सब सुनने वाले यही समझते होंगे और समझ रहे होंगे कि हमारा जो समय है 2 घंटे का वो यहाँ पे विराम लेने वाला होता है। और भावन हिंदुस्तान रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बार इसी समय कार्यक्रम को लेके ज्योति का प्रकाश। तब तक के लिए सबको

0: जिंदगी छोटे नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करती है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। मैं यहाँ से अपने विशेषज्ञों जैसे कि संजय शर्मा पहाड़गंज न्यू दिल्ली से, प्रवेश कालिया जो प्रधान बजरंगी सेना का है, और श्रीमती रत्ना जी जो दनहाक से है, हम सबके लिए कई मास खोज खोज कर रखते हैं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथी शांता खिमई, राजेंद्र सिंह और मैं हूँ आपका सेवक संजय। बस यही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे दोस्त ने कहा कि मिलते रहेंगे तो जिंदगी रहेगा। सभी को नमस्कार।
1: आपको यहाँ से बहुत प्यार के साथ एक बार फिर हर बार कहूँगी स्वागत है, क्योंकि हर बार कहने में बहुत अच्छा लगता है और हर बार एक नया बार होता है, हर पल एक नया पल होता है। तो यहाँ से आपको फिर से एक बार स्वागत है, स्वागत है। और इसी के साथ चलते हैं सुनने के लिए, बड़े अच्छे लगते हो।

साथियों के साथ कोरस के साथ अमित कुमार ने सुना दे कि ऊपर से देखो, नीचे से देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, बस देखो ही देखो, देखते ही रहना है, कहाँ चलना है, कहाँ गुजरना है, कैसे है। मेरी नजरों से खुद को देखो मेरे यारो, मेरी नजरों से खुद को देखो, फिर मेरे प्यार का एहसास तो होगा, फिर शायद ही तेरी जिंदगी में मुझसे ज्यादा कोई खास होगा, फिर शायद ही तेरी जिंदगी में मुझसे ज्यादा कोई खास होगा। तू छोड़ देगी ये जमाना, तू छोड़ देगी ये जमाना, और तेरा हर एक पल मेरा साथ होगा।

0: सचमुच डैडी डैडी अमित कुमार अपना पापा को बुला रहे किशोर कुमार जी के बाप बेटा का ये सुंदर सा गीत यहाँ से सुने हम। किसी से इतना भी ना जोड़ना, किसी से इतना भी ना जोड़ना मेरे दोस्त कि खुद की परछाई खो जाए। उसकी खुशी में जीते जी अपना सुकून ही सो जाए। किसी से इतना भी ना जोड़ना कि खुद की परछाई खो जाए, और उसकी खुशी में जीते जी अपना सुकून ही सो जाए। लोग मिलते हैं पल भर के लिए, लोग मिलते हैं पल भर के लिए, और यादें लंबी छोड़ जाता है। जो दिल के करीब होता है अक्सर, हाँ मेरे दोस्त, कि जो दिल के करीब होता है अक्सर वही सबसे ज्यादा तोड़ जाता है।
1: गाओ बच्चों, तुम भी मेरे साथ गाओ।

0: ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
1: नैना के बाद सुनिए जी की चोली के पीछे क्या है।
0: अपनी चोली टाइटली बांध ले ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

अब बता ही दो कि क्या है, मेरे को नहीं पता। मोहब्बत होना ना हो, मोहब्बत होना ना हो, ये अलग बात है मेरे दोस्त, ये अलग बात है। मोहब्बत हो या ना हो ये अलग बात है, पर तेरी चाहत ने हमें अपने दिल से मिला दिया है। जिंदगी का हर लम्हा, जिंदगी का हर लम्हा सुहाना लगता है। बहुत प्यारा लगता है जब तेरा हाथ मेरे हाथों में लगता है,

गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा और एक बहुत प्यारा सा मुस्कान की तरफ साथ में एक एहसास भी नहीं कि तुझे एहसास भी नहीं मेरे दोस्त कि तू मेरे लिए क्या हो। आप बहुत खास हो, पहले आदत फिर जरूरत, अब और अब जिंदगी बन गए हो। वो मेरे लिए इतनी खास है

चलिए अभी सुनिए मेरा मेरे दोस्तों भाई बहनों रेडियो फाउन के सुनने वालों कि तू मेरी बेबी मैं तेरा सोना, तू मेरी बेबी मैं तेरा सोना, धरती क्यों है पागल तुझको तो मेरे दिल में ही होना है। तू मेरे बेबी मैं तेरा सोना,

इस बात पे तो ये शायरी होना चाहिए कि तू आकर, तू आकर यूं ही रोज मुझे छू जाया कर, हर लम्हा में अपने, हर लम्हा में अपना होने का एहसास दिलाया कर तो ना। कभी आकर पास मेरे ठहर ठहर जाया कर, तो कभी तू मुझ में, तो कभी तू मुझ में ही उतर जाया कर। Je komt me elke dag aanraken. Je laat me elk moment voelen dat je van mij bent. Soms kom je dichtbij en soms kom je dicht bij me. En soms kom je in mij.

मेरे दोस्त, प्यारे प्यारे सुनने वालों, तू मेरे जिंदगी के वो खुशी है जो हर दिन रंग

को अब संवार जाने की ख्वाहिश से। कितनी ख्वाहिशें रहते न हम सभी को, डीप इन मेन हार्ट फलांग एक एरनार यौ तहबन एक वेल एक मोमेंट इन योर हार्ट सेन एक लेख मेन होफ ऑफ योर स्कोट एंड स्पेल मैच योर हार एक वेल फॉर माय लाइफ एंड इट्स मोइस मार्क सामा मैच योर।

लग गई, लत लग गई, यानी कि एक खवंत हो गया है, लत लग गई। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो उतर जाएगी, किसी की आंखों से पियो, किसी की आंखों से पियो, खुदा की कसम उम्र सारे नशे में गुजर जाएगी। तन्हाई में मुस्कुराना इश्क है, तन्हाई में मुस्कुराना इश्क है, एक बात को कब से छुपाना वो भी इश्क है, यूं तो नींद नहीं आती है रात को, यूं तो नींद नहीं आती है रात को, यूं तो नींद से जाग जाना इश्क है।

ये घड़ी ये पल ये घड़ी ये पल आपको बहुत खुशियां भरा रहे, बहुत खुशी भरे ये पल ये घड़ी आपका हो।

फिल्म धुरंधर से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं, आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में।

पीएस रावत, नहीं नहीं नहीं म्यूजिक दिया है पीएस रावत और संगीत का लिखने वाला है शैतान सिंह। शैतान सिंह ये गीत लायरिक्स जो लिखे हैं और गायक है प्रकाश रावत, प्रकाश रावत जो रावर, जी हाँ, दिल में

अच्छा लगता भी ऐसा नया संगीत सुनने के लिए, और ये सब सेलेक्ट किया है आपके लिए और पेश हो रहा है अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

0: very very nice, very very nice. सुनने को
1: सारेगामा कारवां, the perfect gift for
0: you. सुनने के लिए बहुत उकसत रही आप भी, आपने फोन करके और कहा, तो यहाँ से आपके लिए भी पेश हो रहा है।

धुरंधर फिल्म धुरंधर से रणवीर इसमें अपना कला दिखाए हैं। इस बार सुनेंगे सैयारा।

film सय्यारा से निकाला गया है। मिथुन लिखक है ये गीत का और सिंगर है अरिजीत सिंह। ये भी एक बहुत सुंदर फिल्म है, आप नहीं देखे होंगे तो जरूर से देखना। कभी काल के ये सब पिक्चर जो है बियोस्कोप में भी इसको रिलीज किया जाता है यहाँ हॉलैंड में, तो जरूर से वक्त बनाकर याद कर देखना। बड़े पर्दे पर फिल्म देखना, पिक्चर देखना कुछ अलग है, और घर पर बैठकर देखना ये भी एक खास है।

इस बार है ये आंखें गीत का बोल है।

ये आंखें ये आंखें गाकर सुना दी हमको शाहिद मालिया। शाहिद मालिया की आवाज़ में ये सुंदर गीत हमने श्रवण की है और गीत का लेखक जो है शिल्पा अग्रवाल, शिल्पा अग्रवाल ये लायरिक्स जो लिखे हैं भी सुंदर लगता है सुनने के लिए ये नए गाने जो हैं। इसमें अपना रंग है, अपना चमक है। समय रुकने वाला नहीं है, जो रुक जाओगे तो पिछड़ जाओगे, अंतविकलिंग में पीछे रह जाओगे, पर समय तो जाएगा, तो वक्त के साथ चलना है, यही समझदारी है।

होंगी हो माही रे, कलाकार इसमें है शाहरुख खान। ये आज के दौर के गीत और संगीत है। मेरे बन के रहना तू,

बन के रहना तू पेश किया गया। इस बार हम सुनेंगे अरिजीत सिंह जी की आवाज के, अरिजीत सिंह जी की आवाज में मुस्कुराने की वजह तुम ही हो।

सजनी तेरे बिन, सजना तेरे बिन, तेरी याद सतावे। अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में। अरिजीत सिंह जी भी कितने शानदार गीत गाए हैं, दिल छू जाने वाले गीत हैं।

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए। हम यार है तुम्हारा कि यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं यकीन के साथ। दोस्तों हम यार है तुम्हारे।

यार है तुम्हारे। यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहड़ी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में। तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था। लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों का बीबी जो गीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलीला, यहाँ देखिए उसे फंसे है ओके, मिथुन भगा ले गया रहा। तो इसी कारण ना मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीरा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

आ रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। बप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी, सभी के आवाज़ में आप सॉन्ग सुनेंगे।

0: जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रूबरू मिलने की इच्छा करता है लेकिन शब्दों से ही बयां करता हूँ। आज के मेरे फाउन हिंदुस्तानी के रेडियो के श्रोता गणों को यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार और अभिनंदन। आज का जो प्रोग्राम है उसके विषय में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में और पितृपक्ष के समय के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमारे रिसर्चर हैं, बहुत गहरे गहरे से खोज खोज के लाते हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो शांता जी आप कुछ कहना चाह रही है?
1: हाँ जी राजेंद्र जी, जाना था हमसे दूर, जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितने दूर ठिकाने बना लिए। मेरी आवाज़ के सुनने वालों, सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। और यहाँ से जैसे राजेंद्र जी कहा कि आज की ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम यहाँ से हम लेकर उपस्थित हो गई है,
0: तो क्यों ना शांता जी जिनका दिल उदास है उसके लिए, उनके लिए कोई एक भजन चलाया जाए।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से चला दे।
0: उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।

0: राजेंद्र जी, राम जी का और जो कृपा है तो जरूर हम सब पे है। सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए शांता जी ये बताइए कि क्या आज का विषय है।
1: जैसे हमने बताई शुरुआत में तो आज के विषय है पितर पक्ष के बारे में, तो उसी के विषय में हम आप सबको यहाँ तैयारी करी है और यहाँ से हम अपने सुनने वालों को पहुँचाएंगे, बताएंगे कि पितर पक्ष के बारे में और उसके क्या सब सुविधा कर सकते हैं।
0: राजेंद्र जी, अगर जब देखा जाए कि जब ये त्योहारों में एक त्योहार ये पितृ का त्योहार जब आ जाता है ना
2: जी,
0: लोग पंडितों को फोन करने लगते हैं और पूछने लगते हैं, खास करके जिनका परिवार में हाल ही में कोई गुजरे हुए है तो वो पूछने लगते हैं कि क्या मैं ये पार्व श्राद्ध जो है पितृपक्ष जो हम सूरीनामी में कहते हैं ना, तो उसे उसमें हम अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं, ये प्रश्न हर बार आता है और हर बार पंडितों जनों से ये बढ़िया से संदेश दिया जाता है, पर उसके अंतर्गत में आज हम लोग के कुछ और जानकारी मिल सके तो बड़ा बढ़िया होता।
2: आज बहुत सारी जानकारी इसी बारे में है, इसीलिए ये प्रोग्राम में आज ये चीज रखे हैं। पितरों के लिए इसी समय जो समय है वही समय कर सकते हैं।
0: पर राजेंद्र जी, बात ये हो जाता है लोग मांगते हैं करने को
2: जी,
0: यहाँ पर ये भी संदेश हो जाता है कि कभी काल के कोई ऐसे बात करते हैं कि मैं अपने पितरों के अंतर्गत कुछ करना चाहते, पितरों है जो इस समय जो दुनिया को छोड़ चले गए, जिनके कृपा से हम लोगन है यानी कि हमारे पितरों का नाम, तो ऐसा जब देखा जाए तो आजकल लोग से पूछा जाए कि भाई पिता का नाम, तो शायद पिता का नाम सभी जानते होंगे पर पिता का नाम, वृत पिता का नाम, ये तो बस मुश्किल होने लगता है। और यहाँ तलक तो हम यह नहीं कहने वाले हैं कि जो बीच भारत को छोड़ करके और सूरीनाम 150 साल पहले गए थे, उतना दूर तो दूर की बात है, लोग अपना खुद का गोत्र और अपना खुद का पितृ का नाम गमन यानी कि उस पर चिंता ही नहीं करते, और पितृ दोष जब लगते हैं तो औरों से जा जा करके कितना लूटे जाते हैं उसके बारे में तो आज कोई चर्चा नहीं होगा। चर्चा बस यही के बारे में होगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने पितरों के अंतर्गत।
2: जरूर, लेकिन जब आपने ये बोल ही लिया कि अपने पितरों के नाम याद होना चाहिए, तो जब आप भारत में जाते हैं तीर्थ यात्रा में, जैसे हरिद्वार है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ भी जो धाम है वहाँ पे जब भी आपके कोई पिछले पितर गए होंगे, लोग गए होंगे, आपके दादा परदादा कोई भी गए होंगे, तो वहाँ से वो खाता होता है एक पंडितों के पास, इतना बड़ा खाता,
0: पंडा के,
2: पंडा,
0: हाँ जी,
2: तो पंडा के पास सब लिखा रहता है कि आपके जितने लोग यात्रा गए वहाँ पे गए, वो पूरा रजिस्ट्रेशन रहता उनके पास, आपका दादा का नाम ये था, परदादा का नाम, इसका नाम, उसका नाम, उसके उसका नाम, मैंने खुद जाके देखा है। तो जब गए वो डेट लिखी रहती कब गए थे वो, उन्होंने क्या क्या कराया था वहाँ पे पितृ पक्ष के लिए और क्या कराया था, सब चीज लिखा रहता है
0: उसमें, मिल जाता है,
2: उसमें मिल जाता है खाता पंडित पंडा के पास।
0: इस बात पे ध्यान देना कि आप, हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं ज्योति का प्रकाश, और इसमें जरूर कुछ ना कुछ अपना जीवन के ज्योति के अंतर्गत में कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, उसमें और प्रकाश जरूर आएगा। और जब आप अपना पुरखों का अपना, और जैसे कि भाई राजेंद्र जी जो हम सबको संदेश दे रहा कि कहाँ पर आप जा करके उसका और अपना यानी कि पितरों तथा अपने पुरखों के बारे में, अपने गोत्र के बारे में पा सकते हैं। राजेंद्र जी, देखते हैं कि शांता जी पिटारा से क्या भर के लाए हैं।
2: जरूर शांता जी,
0: हम सब पर
2: अपना पिटारा, तो शांता जी का पिटारा तो हमने यहाँ सेट कर रखा है।
1: राजेंद्र जी सभी सेट करके रखिए, अभी आपको सुनाएगा
2: जी।

0: माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। तो जैसा कि अभी सुन रहे थे संजय जी का प्रोग्राम कि उन्होंने क्या खाया नहीं खाया, लेकिन वो नहीं पता चल पाया अभी तक। संजय जी बताइए कि आपने खाया क्या है।
1: राजेंद्र जी, बताने का दिल है पर खाने का दिल भी और है, तो अभी जरूर बताएंगे कि क्या। और आज का समय थोड़ा निकल गया था, अभी उसके बारे में और चर्चा किया जाएगा।
0: जरूर।
1: आज हमारा विषय है राजेंद्र जी, जो कि पर्व श्राद्ध अंतर्गत, और उसके बारे में हम सबको कुछ जानकारी को हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों, और देखेंगे कि क्या हम सबके लिए और हमारे विशेषज्ञ लोग तैयार करके रखे हुए हैं।
0: हाँ जरूर।
1: तो राजेंद्र जी, आपके पास क्या संदेश है?
0: सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि पितृ चरण में नमन करी, ध्यान धरी दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करी, सिर पर धरे दो हाथ।
1: सिर पर धरे दो हाथ। तो राजेंद्र जी, पितृ
0: दो हाथ नहीं, सिर पर धर दे हाथ।
1: हाँ,
0: धर दे
1: तो वो पितरों ऐसा अपने पुत्रों के कर सकते हैं।
0: हाँ, पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो पुत्रों पे बहुत लगता है, उसी आशीर्वाद से सब लोग बहुत फूलते फलते हैं।
1: पर राजेंद्र जी, ऐसा होता है लोग तो डरते हैं अपने पितरों के कार्य करने के लिए।
0: नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं है पितरों कार्य करने
1: वो
0: के लिए।
1: कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि भाई मैं अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हूँ, और जरूर करने का इच्छा भी रखते होंगे, पर उसमें ये प्रश्न करते हैं कि भाई अगर जब मैं ये करूँगा तो मेरे बच्चों को ये भी करना पड़ेंगे।
0: तो आगे बढ़ते हैं इसी में, ये कदम्ब है आपका, ये कुटुंब है आपका, आपका परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। तो पितरों के आशीर्वाद से तो हम लोग हैं, तो कैसे डरने का विषय है?
1: पर लोग तो डरते हैं।
0: किस बात से डरते हैं?
1: और खास करके राजेंद्र जी, मैं तो देखा हूँ कि कहीं पे गए थे, कहीं पे गए थे, किसी का मृत्यु हो गया था, तो वहाँ हम लोग सत्संग करते हैं ना, तो जाकर के रामायण पाठ कहीं और गरुड़ पुराण पाठ होता है, तो वहाँ गए तो वहाँ लाइट ऑफ हो गया।
0: हो,
1: अब लाइट ऑफ हो गया, कैसे लाइट ऑफ हुआ ये पता नहीं है, पर लोग डर गए। जैसे ये पितर के बात होता है इसमें, या लाइट के बात होता
0: नहीं,
1: है
0: नहीं इसमें, नहीं, इसमें पितर का बात है,
1: के बात होता है,
0: इलेक्ट्रिसिटी की बात है। हो सकता है उस समय लाइट चली गई हो, या कुछ ड्रिप हो गया हो, ट्रिप हो गया हो, तो उसका पितर का कोई बात नहीं।
1: और राजेंद्र जी, बात ये भी है कि ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं, आज का विषय रखा गया है, तो इसमें भी संदेह है कि पितर और प्रेत, इसका अंतर क्या है? तो अभी ये हम सबको भी सुनने को मिलने वाले हैं। तो और आ चुके हैं
0: सांड्रा जी
1: आ करके पहुंच गए हैं स्टूडियो में,
0: तो
1: देखा जाए कि क्या हम सबके लिए।
0: तो दो लाइन और पितरों के बारे में कह देते हैं। भूल चूक सब क्षमा करी, करी मेहर भरपूर, सुख संपत्ति से घर भरे, कष्ट करे सब दूर। तो क्यों ना एक छोटा सा हम भजन चला दें।

0: अवनित हित परिवार, तो पितरों के समान आज हमारे बीच सांड्रा जी भी उपस्थित हुई हैं। तो आप कुछ सुना है कि बहुत बढ़िया चीज लेके आई हैं। सांड्रा जी बताइए।
1: आप सबको मेरा भी नमस्कार। तो एक लाइन मैं भी बोलना चाहती हूँ।
0: जरूर।
1: पितरों के लिए, आप हमारे हृदय में, आपके हम संतान, आपके नाम से हैं जुड़े मेरे हर पहचान। आपके ऋण बढ़े सदा, नहीं चुके जाए, सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए। तो आप बताइए राजेंद्र जी, मैंने क्या कहा?
0: आपने वेद पुराण की बात कही, क्या और आपने क्या कहा?
1: मैंने कहा कि आप हमारे हृदय में हैं,
0: आप हृदय में हैं, पुराण में
1: संतान आपसे जुड़े हैं, आपकी पहचान है, पितरों से हमारा पहचान है। ये ऋण बढ़े सदा, नहीं चुकाए जाए, सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए।
0: हाँ, आपने बताया कि जो पितरों के जो हम पे ऋण है वो नहीं चुकाया जा सकता है, अगर सात जन्म भी लें तब भी नहीं चुकाया जा सकता है। बहुत अच्छा आपने जो बताया है। बढ़ते हैं आगे कि पितरों के समान और क्या क्या चीजें हैं। तो तीन वृक्ष, तीन पक्षी, तीन पशु और तीन जलचर। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का पितृलोक चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। धर्मलोक के अनुसार माना गया है। और दूसरी ओर अग्निहोत्र कर्म से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। तो जहाँ पे पक्षी उड़ते हैं वो लोग, उस लोक को पितृलोक कहते हैं। तीसरी ओर कुछ पितर हमारे वरुण देव का आश्रय लेते हैं।
2: राजेंद्र जी, जैसे कि आपने कह रहे हैं कि पक्षी, तो खास करके मैं कुछ फिल्मों में देखे हैं और व्हाट्सएप बरेख पे भी भेजा जाता है कि कोई प्रकार के पक्षी भी होता है जिसे, और ये पितृ पक्ष यानी कि पर्व श्राद्ध में उसे कुछ खाने पीने के दिया जाता है।
0: कौवा, कौवा,
2: वो कौवा होता है, तो उससे।
0: हाँ, कौवा की बात अभी हम आगे आने वाली है,
2: आने वाले।
0: अतः पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। वरुण देव जल के देवता हैं और पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। तीन वृक्ष की सबसे पहले बात करेंगे। पीपल का जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष बहुत पवित्र है। एक ओर इसमें जहाँ विष्णु का निवास है वहीं यह वृक्ष रूप में पितृदेव हैं। पितृपक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना विशेष शुभ होता है। और दूसरा नंबर है बरगद का वृक्ष। आगे का संदेश बरगद का वृक्ष है। बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव निवास करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। बेल आप जानते हैं?
1: बेल वृक्ष, बेल का पत्र
2: जो शिव जी पे चढ़ाया
1: जाता है, जो शिव जी पे चढ़ाया जाता है,
2: बेल पत्र
1: पे चढ़ाया जाए।
0: बेल पत्र होता है पत्ता, और बेल पत्थर होता है फल।
2: फल,
0: हाँ, उसको पत्थर, वो पत्थर जैसा मजबूत
2: बड़े बड़े।
1: राजेंद्र जी, हम लोग बात कर रहे हैं बेल ब्रादरे के।
0: बेल ब्रादरे, यदि पितृ पक्ष में शिव जी को अत्यंत प्रिय बेल का वृक्ष लगाया जाए तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। जिसकी आत्मा को शांति न मिले वो बेल के वृक्ष लगाने से मिल जाती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेल पत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है।
3: अगर सोने, अगर जैसे आपने कहा राजेंद्र जी कि अमावस्या के रोज अगर पितर पक्ष जो में अगर आपको मौका नहीं मिला करने के लिए कि कोई हालत जैसे हो, तो अमावस्या के रोज आप कर सकते हैं जी।
0: और इसके अलावा अशोक, तुलसी, समी और केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए।
1: हाँ जी, केले में तो साक्षात विष्णु भगवान निवास करते हैं।
0: हाँ, केले का वृक्ष भगवान विष्णु का ही है।
2: आगे चलते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि संदेश ज्योति का प्रकाश में यही लक्ष्य रखा जाता है कि कुछ ना कुछ संदेश हम सबको प्राप्त हुए। जैसे कि पता है कि शांता जी भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों को लेकर भी आए हैं, तो देखते हैं राजेंद्र जी क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर हाँ। आगे हम सब कार्यक्रम बढ़ाने वाले हैं।
0: जरूर, जरूर।

0: राजेंद्र जी, कहा जाता है कि ईश्वर दुनिया के सबसे बड़ा और डॉक्टर है। प्रार्थना दुनिया के सबसे बड़ी दवा है। तो आगे का कार्यक्रम में आप क्या सुनाने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर और दवा के बारे में तो हमें जानकारी मिल गया है, पर ये आज का विषय जो रखा गया है, ये श्राद्ध अंतर्गत कौन सा संदेश, क्योंकि शांता जी भी तैयार हो गया है नीदरलैंड्स में कुछ हम सबको सुनाने के लिए। और कार्यक्रम में जो अब हमारे कैसे कहा गया था,
1: मिस सेंड्रा
0: भी है, और मिस सेंड्रा से आग्रह करूंगा कि आप क्या लेकर आए हैं, आगे सुनाइए।
2: हाँ जी, मेरे पास भी दो लाइनें बची हुई है कविता के। हर दिन हर पल आपसे मांगे ये वरदान, वंश भले बताते रहे बढ़े मान सम्मान। ये पितरों से होता है। घर पिंडे में आप विराजे ये ही अरज करे, कहत भक्त हम शरण आपके निस दिन महर करे, ओम पितृ पितरायने नमो नमः।
0: तो राजेंद्र जी, सांद्रा जी काफी चतुर है और सामान लेकर आए हैं जिसे हम सबको, और काफी जानकारी छोड़ दिए हम सबके लिए।
1: हाँ, सांद्रा जी तो तैयारी करके सुरनाम जाती रहती है और पितृपक्ष के बारे में पढ़ती रहती है, तो उनको तो ज्ञान है ही है।
0: ऐसा बहुत बढ़िया बात है सांद्रा जी, जो आपने भी संदेश दिए। ये पर्व श्राद्ध अंतर्गत जो पितृपक्ष से हम सब जानते हैं, इसमें कौन सा जानकारी अभी और राजेंद्र जी रखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपसे अभी से कह देता हूँ कि शांता जी भी कुछ तैयारी करके लेकर आए हैं, और ना सिर्फ शांता जी के पिटारा में सुंदर सुंदर गीतों हम सब के लिए रहते हैं, पर शांता जी कुछ नई दलांस में लेकर के हम सब के लिए आए हैं। पर राजेंद्र जी, सब कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, पर क्यों ना आप आज कुछ संदेश और सुना देते हैं, तो फिर हम सब शांता जी की ओर बढ़ेंगे।
1: हाँ, जरूर। आगे के जो संदेश है कौवा के बारे में, कौवा को, कौवा यानी कागा,
3: कागा
2: कागा शनिदेव के वाहन।
1: कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवा को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थिर होकर विचरण कर सकती है।
0: तो राजेंद्र जी, कौवा के बारे में कुछ और हम सबको जरूर बताइए, पर हम लोग को, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है और फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के, हम सबके जरूर समय दिए है कार्यक्रम करने को, पर हम लोग के कुछ परप्लेक्सिंग होते हैं और हम सब न्यूज़ की ओर पहले बढ़ते हैं। और न्यूज़,
1: हाँ, न्यूज़ से जब कौवा की बात चली गई तो एक मिनट की बात और रह गई है। जब कोरोना का समय आया तो कौवों ने एक मीटिंग करी, कौवों ने एक मीटिंग करी सबने।
0: हाँ जी।
1: श्राद्ध पक्ष को देखते हुए कौवों की आपात मीटिंग बैठी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिस घर में बूढ़े माता पिता के साथ बुरा व्यवहार होता है, उस घर के अन्न जल का बहिष्कार किया जाएगा। जो जीते जी अपने माता पिता को पाल न सके, वे मरे हुए लोगों को पितृपक्ष पितृभोग लगाने की कोशिश के काबिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कौवों ने कैसी मीटिंग करी है, ये देखो। और लास्ट ईयर जब कोरोना के समय कौवों ने एक मीटिंग और करी थी कि भाई इस बार कौन कैसा रहेगा, क्योंकि कोरोना का समय है, इकट्ठे नहीं जाएंगे, अलग अलग सब लोग जाएंगे, तो उनकी ड्यूटी अलग अलग लगी थी कौवों की। तो संदेश हमने पिछली बार देखा था, बड़ा बढ़िया संदेश था वो भी। इस प्रकार से कौवों की बात चली थी, तो क्यों ना आगे अब न्यूज की ओर बढ़ा जाए और इसके बाद सारा जो वृतांत रखा जाए उसकी बात करेंगे।

0: आने तराम सूद वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht. Strafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet. Aan het Raamsoet.
3: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
7: Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pai kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onder staan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte, vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden. Het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
9: Vahon Hindustani Radio ki news sab logon ne suna, commercial bhi suna,
5: और हमारी बात चल रही थी कौवा पे, तो अब कौवा से बात खत्म करके हंस की ओर चलते हैं।
9: पर राजेंद्र जी,
5: जी
9: ऐसा कौवा तो हॉलैंड देश में है ना?
5: हाँ, हाँ खूब।
9: पर सांद्रा जी आपको तो पता होगा सूरीनाम में कौवा है कि या नहीं?
10: नहीं कौवा नहीं है, कोयल है। नहीं नहीं नहीं कोयल
9: नहीं, कोयल कोई और होता है, कौवा कुछ और होता है ना।
5: कौवा बड़ा होता है, कोयल छोटी होती है। कोयल की आवाज सुरीली होती है, कौवा की काऊ काऊ होती है।
10: कौवा बहुत काऊ काऊ करता है,
9: कौवा काऊ काऊ करता है,
5: काला कौवा काऊ काऊ करे।
9: दोस्तों ये बात है कि शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। आत्मा जब धर्म से पवित्र होता है तो राजेंद्र जी कार्यक्रम में आगे क्या संदेश है ये तो सुना दो।
5: आगे का संदेश हंस है।
9: हंस, हंस किसको कहते हैं?
5: डक,
9: डक
10: उसे स्वान कहते हैं, वेत स्वान जो सरस्वती माता।
5: हाँ हंस, हंस
9: उसको कहते हैं, हंस।
5: हंस की, हंस की जो विशेषता है वो ये है कि पानी और दूध को मिला के इकट्ठे करके रख दिया जाए और हंस के सामने रख लिया जाए तो हंस उसमें से दूध दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा,
10: पानी पानी ही रह जाएगा।
5: उसकी चोंच में ऐसी व्यवस्था है।
11: हाँ पर हंस में फर्श के लेना,
5: हंस सरस्वती का वाहन भी है।
11: हाँ हाँ, पर जो हंस हम यहाँ पे देखते हैं हॉलैंड में वो वाला नहीं
10: नहीं।
11: अगर उसका पहचान आप जानना चाहते हो तो उसका चोंच देखना।
5: हाँ, हंस, चोंच से पहचान
11: हंस का
5: होती।
11: चोंच जो है वो लाल होता है, जो यहाँ वाली हैगा वो सब ओराये हैं। तो असली हंस जो है उसका चोंच लाल होता है, वो हंस के बात हम कर रहे हैं।
5: हाँ वही हंस है। पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहाँ देव आत्माएं आश्रय लेती है। यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं और जिन्होंने यम नियम का पालन किया है। कुछ काल तक हंस योनि में रहकर आत्मा अच्छे समय का इंतजार कर पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है, या फिर वह देवलोक चली जाती है। हो सकता है कि आपके पितरों ने भी पुण्य कर्म किए हों।
11: और ये हंस जहाँ तक मेरी ख्याल है ये सिर्फ क्षीर सागर में होता है।
5: भगवान गरुड़ विष्णु के वाहन हैं और भगवान गरुड़ के नाम से ही गरुड़ पुराण है जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग, नरक, पितृलोक आदि का उल्लेख मिलता है। पक्षियों में गरुड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान राम को मेघनाद के नागपास से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ का आश्रय लेते हैं। और इसके अलावा कोंच या सारस नाम का भी लिया जाता है, जो पितृपक्ष में एक कौंच और सारस का नाम भी लिया जाता है, उनको भी वो अन्न देना चाहिए उस समय।
9: तो राजेंद्र जी कौंच ये पक्षी है या जानवर है क्या?
5: पक्षी है।
9: एक पक्षी?
5: हाँ, एक सारस होता है जो ऊपर लाइन से चलते हैं और एक क्रौंच, क्रौंच नहीं वो क्रौंच, वो तो शंख।
10: हाँ शंख,
5: शंख उसमें वो क्रौंच।
10: हाँ,
5: तो जो शंख जिससे निकलता है वो तो रहता है समुद्र में, मिलता है नदी में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार तीन पशुओं की भी बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा हम सांता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं नीदरलैंड में?
11: जरूर। तो यहाँ से हम आप लोगों को बता दे थोड़ा डच में, नीदरलैंड भाषा में, कि पितर पक्ष क्या होता है और किस लिए है और तो पता है। तो यहाँ से हम शुरू कर दे।
5: हाँ जरूर।
11: पितर पक्ष यार लक्ष दो दफर एरिंग तैदस द डोंकर हेल्फ ऑफ द मंथ सितंबर अक्टूबर वर्ड दो सोमख हिंदूस द दो दिन हरदाग देश हरदेंकिंग वर्ड पितर श्राद्ध कनुम्ब

0: तो पितृपक्ष की जैसे बात चल रही थी, आगे बढ़ते हैं, तीन पशुओं की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला है कुत्ता। कुत्ते को यम का दूत माना जाता है। कहते हैं कि इससे इधर माध्यम की वस्तुएं भी नजर आती है। कुत्ता जो है यम का दूत है, तो उसको पहले ही हो जाता है, आसार हो जाता है कि क्या होने वाला है। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को और ईथर माध्यम सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ते को
1: आगम हो जाता है।
0: हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से भी भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ते को रोटी देते रहने से पितरों की कृपा बनी रहती है, तो इसलिए कुत्ते को रोटी देना हर समय देना चाहिए, तो आपके पितरों की कृपा आपके बसी रहेगी। अगला है गाय। जिस तरह गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, उसी तरह गाय में सभी देवी और देवताओं का निवास बताया गया है। दरअसल मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। गाय जो गाय माता है, कुछ लोग जानवर बोलते हैं, पशु बोलते हैं, तो गाय को पशु नहीं बोलना चाहिए, गाय माता का दर्जा दिया गया है।
1: हाँ राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा था 84 लाख योनियों
0: मतलब
1: हाँ,
0: हम मनुष्य की एक योनि है, ऐसे कुछ कुत्ता जानवर जो अलग अलग 84 लाख योनियों में से जब सबसे आखिरी योनि गाय की होती है,
1: हाँ,
0: वहाँ वो आत्मा कुछ समय के लिए विश्राम करती है और हाँ, इसके बाद आगे की यात्रा पे बढ़ती है।
1: अच्छा,
0: हाथी। हाथी की बात चल रही है। हाथी को हिंदू धर्म में भगवान गणेश को साक्षात रूप में माना गया है। यह इंद्र का वाहन भी है। हाथी को पूर्वजों का प्रतीक भी माना गया है। जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता। हाथियों को अपना पूर्वजों की स्मृतियाँ रहती है। अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन गज पूजा विधिवत रखा जाता है। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले उस दिन हाथी की पूजा करते हैं।
1: गज किसको कहते हैं?
0: गज हाथी को कहते हैं।
1: अच्छा,
0: गज मत संस्कृत में बोलते हैं ना।
1: अच्छा, गज। अच्छा,
0: इसके अलावा बराहा, बैल और चींटियों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। जो चींटी को आटा देते हैं और छोटी छोटी सी चींटियों को चावल देते हैं, चिड़ियों को, वही बैकुंठ चले जाते हैं। तो इसलिए चींटी को आटा देना चाहिए, चिड़ियों को चावल देना चाहिए। तो आगे बात करते हैं। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: जरूर जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं शांता जी भी कुछ तैयार कर चुके हैं कहने के। मेरे ख्याल से कुछ पिटारा से कुछ सुनाने वाले हैं अपने ओर से। पर शांता जी, यहाँ पर किसी ने ये संदेश भी भेजा है राजेंद्र जी कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। तो सुख के ताला के और किसने लगाया है, इसके लिए कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है। और ज्योति का प्रकाश जिसमें आपको कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए खोज खोज करके रखा जाता है, और जिसे आपके जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके। दोस्तों, ये कार्यक्रम जो लगभग 188 देशों तक सुना जा सकता है, तो आशा यही है कि इस कार्यक्रम से कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर प्राप्त होए। चलो एक गीत सुन लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे।
0: जरूर।

0: वो घर कितना सुंदर है जिस घर में पितरों का हो सत्कार। बहुत अच्छा जो भजन था, बहुत ही अच्छा भजन था। शांता जी, आपने जो भजन ढूंढते हैं बड़े, उसका हम बहुत ही आभार करते हैं कि आप इतने ढूंढ ढूंढ के अच्छी चीज़ लाते हैं। हाँ, समय लगाते, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, जलचर जंतु। तीन जलचर जंतु की बात चलेगी। भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य का अवतार लेकर मनुष्य जाति के अस्तित्व को जल प्रलय से बचाना था। जब श्राद्ध पक्ष में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। कछुआ, आगे की बात चलेगी कछुआ की।
1: तो राजेंद्र जी, कछुआ है क्या? कछुआ,
0: कछुआ
1: किसको कहते हैं?
0: कछुआ एक ऐसा होता है, ऐसा स्केल पार, वो ऐसे चलता है।
1: कछुआ किसको कहते हैं शांता? अगर आप हो सके तो और बढ़िया से हम सबको बता सके।
2: स्केल पात।
1: हाँ, राजेंद्र जी स्केल पात को कहते हैं।
0: भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर ही देव और असुरों के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया था।
2: हाँ।
0: जब भगवान ने कछुआ का अवतार लिया था और मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पे लिया
2: जी,
3: तो समुद्र मंथन
0: और समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले
2: जी।
0: सबसे पहले हलाहल विष निकला था
2: जी।
0: जिस विष से एकदम सब लोग झुलस रहे थे, कुछ मर रहे थे, तो फिर भगवान शंकर ने अपने गले में उसको विष को रोका और वही नीलकंठ महादेव के नाम से जाने गए। हरिद्वार से थोड़ी दूरी पे एक जगह है नील का मंदिर, आपने कोई गया है?
2: हाँ,
0: तो वही।
1: तो सांद्रा जी, आपने भी गए हैं नीलकंठ मंदिर?
3: हाँ जी, मैं गई।
1: तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए, वहाँ का वातावरण कैसे है और वहाँ पर जाकर के क्या खूबियां है और कैसे वहाँ पहुँचते हैं?
0: हाँ, कछुआ की थोड़ा सा बात खत्म कर देते हैं, इसके बाद सांद्रा जी आप बताएंगे वहाँ के बारे में। कछुआ बहुत ही पवित्र उभयचर जंतु है जो जल की सभी गतिविधियों को जानता है।
1: अच्छा? जल की सभी गतिविधियों।
0: हाँ, कछुआ को बहुत सारे लोग अपने घर पे भी रखते हैं, कहते हैं कि कछुआ अगर घर पे रहता तो लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए रखते हैं।
1: ऐसा।
0: और तीसरा जो है नाग है। भारतीय संस्कृति में नाग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह एक रहस्यमय जंतु है। यह भी पितरों का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा मगरमच्छ भी माना जाता है। तो बताइए जी,
1: मगरमच्छ किसको कहते हैं राजेंद्र जी?
0: मगरमच्छ जो पानी में
1: कि हम जरूर समझ जाते हैं, जैसे कि राजेंद्र जी हम सबको एकदम सरनामी में जो हम सबको समझा देते हैं और सारा संदेश। राजेंद्र जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा वृतांत जब सांद्रा जी हम सबको सुना दे कि उन्होंने जा करके और कौन सा स्थान पे गए थे। सांद्रा जी
3: जी, हम गए थे नीलकंठ मंदिर, वो हरिद्वार में है। पहला बात तो ये है, आप भारत जाओ और मन में लेकर जाओ कि आप जा रहे हो हरिद्वार, तो सबसे पहले मन में आता है कि शिव बाबा के दर्शन होगी और गंगा की दर्शन होगी, गंगा स्नान करेंगे। तो हम लोग तो गए थे न्यू दिल्ली से, हम लोग तो बस से गए थे और वहाँ से पैदल गए थे। तो जो मन में हो गया कि गंगा जी की दर्शन होगी, शिव जी की दर्शन होगी, तो मन तो तृप्त हो जाती है। बस ये बात सुनकर, ये बात दिल में रखकर जाओ वहाँ पर। हम तो गए थे, समर रहा, ठंड नहीं थी,
1: गर्मी के समय था,
3: धूप बहुत था। तो हम लोग गर्मी के समय में गए थे और गंगा में पैर रखो, गंगा इतना ठंडा है, गंगा जी
2: शीतल
3: जल, थीफ जस्ट सो अनहेल खुद रिलैक्स फुल एंड हाँ जी, हम गए मंदिर में, शिवलिंग है, शिवलिंग पर अर्पण किए, जो भी अर्पण कर पाते थे वहाँ, थोड़े थोड़े पंडितों है वहाँ पे जो मदद करती है, चीज़ें बिकती है, जो भी चढ़ाना चाहो चढ़ा लो और मन अपना तृप्त कर लो। जैसे आपने कहा, मन शुद्ध करो तो धर्म के काम कीजिए ना, मन के पवित्र करना है तो धर्म के काम कीजिए, धर्म के काम करने से मन पवित्र होता है।
2: हाँ सर, सांद्रा जी अपना अपना बताए, अच्छा लगा सुनने के लिए। और मेरे ख्याल से
1: सुनते सुनते ये भी मन में हो गया कि मेरा भी इच्छा हो रहा है, कब चले
2: और हम चले, हम चलेंगे सच में
3: फिर से।
2: हाँ हाँ, ये सांद्रा जी जो गंगा जल के बात करी ना, तो जैसे हम, मैं भी एक बार भारत जो गई तो मेरे गोड़ में बहुत सारा दर्द था, ठीक से चल नहीं पाती थी और मेरी पैर बहुत से सूजन था उसमें, और ऐसा मौका आया कि हम सब गए काशी,
1: काशी
2: काशी विश्वनाथ। तो वहाँ पे हमारे गाइड जो है हम सबको बोट में बैठा कर अलीगढ़ एक्वा की
3: दूसरे किनारे
2: किनारे हाँ। तो वहाँ से हमको कहा, हम सभी को कहा कि आप अपना पूजा करना चाहते तो करो। तो मेरे मन में यही कभी मैं सुनी थी कि पान गंगा जी जो आप मांगोगे जो भी करोगे मन से करोगे तो वो पूरा करती
1: है, माँ गंगा है।
2: और वाकई में मैं गई, मैं तो स्नान की बार मैं उसमें गई गंगा में, और उससे
3: रखी आपने
2: उससे माता से मैंने प्रार्थना की मने मन में, और सच में उसी दिन मेरी पैर अच्छी हो गई और आज तक मेरी पैर में दर्द नहीं।
0: तो सुनने वालों आपने देखा कितना बढ़िया वृतांत शांता जी ने बताया गंगा का, कि गंगा में केवल जल के स्पर्श मात्र से ही समस्त दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि गंगा जल से ऐसा नहीं होता, तो सब पॉजिटिविटी अगर जो लोग उन तरफ रहते हैं तो उनका जरूर होता है, जो नहीं रखते हैं तो उनका मैं कह नहीं सकता
2: होता है।
0: बहुत
2: होता
0: ही अच्छा शांता जी आपने जो
2: उसमें स्नान के, और उसमें हम स्नान के कुंभ मेला में हम गए थे, जितने दिन हुआ थी दो हफ्ते हुआ थी, रोज हम जाते स्नान करें और उसका परिवर्तन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत नहीं होता है पर समय के अनुसार उसका परिवर्तन होता है अपने जीवन में।
1: दोस्तों ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश चल रहा है। तो राजेंद्र जी
0: जी
1: जरा ये तो बताइए कि कुछ और संदेश है हमारे ये पार्व श्राद्ध के अंतर्गत।
0: हाँ, जैसे कि आजकल पितृपक्ष की शुरुआत है, चल ही रहा है पितृपक्ष, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत जी।
1: क्यों ना एक सुंदर सा गीत, क्योंकि शांता ने
0: हाँ।
1: आज का गीतों जो इकट्ठा किए है ना, ये हम जानते हैं कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारे सोच, हमारे व्यवहार एवं हमारे कर्म है हमारा भाग्य लिखते हैं। तो राजेंद्र जी एक सुंदर सा गीत की ओर हम सब चलते हैं, फिर आगे कार्यक्रम बढ़ेंगे
0: जरूर।

0: भरोसा करना भारी है। तो क्यों ना आगे का जो आजकल पितृपक्ष के बारे में थोड़ा सा समझ जा जाए।
1: कहने के तात्पर्य यह है दोस्तों कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। राजेंद्र जी, जैसे कि आप हम सबके कार्यक्रम में पितृपक्ष अंतर्गत जो पर्वंश रहा थे उस अंतर्गत में और सुनाने वाले हैं, तो आगे का संदेश क्या
0: है? आगे का संदेश है कि पितरों का महत्व क्या है। संसार के समस्त धर्मों में कहा गया है कि मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वरन वह किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। जैसे मनुष्य कपड़ों को समय समय पर बदलते रहते हैं, उसी तरह जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। जिस प्रकार तमाम जीवन भर एक ही कपड़ा नहीं पहना जा सकता, उसी प्रकार आत्मा अनंत समय तक एक ही शरीर में नहीं ठहर सकती। न जाते मेयते वा कदाचिन्नमयी भूत्वा भवितो न भूभुवा, न जायते मित्रते वा कदाचिन्नाय भूता भवितो वा न भूपा, पूजो नित्वः शाश्वतं पुराणानां। हन्यते हन्यमाने शरीरः गीता। गीता के अध्याय 2 के अध्याय में कहा गया है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न मरती है। मरना जीवन शरीर का धर्म है। शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। विज्ञान के अनुसार कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, वरन उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति के संस्कार होने के बाद यही अक्षय आत्मा पितर रूप में क्रियाशील रहती है तथा अपनी अनोत्मनी के लिए प्रयास रहित रहने के साथ साथ पृथ्वी पर अपने स्वजनों एवं सुपात्रों की मदद के लिए सदैव तैयार रहती है। पितरों के प्रति श्राद्ध, उनका स्मरण एवं उचित संस्कार करने से हमें सदैव पितरों से लाभ ही लाभ मिलता है। पितर वह उच्च आत्माएँ होती है जो अपने स्वभाव एवं संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती है। हिंदू धर्मों के पितरों में संदेशवाहक भी कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, ओम अरयम माना तृप्तताम इदम त्रिलोकम तस्मै स्वाध्याय नमः मृत्योर्मा अमृतम गमया। अर्थात अरयम्मा पितरों के देव हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं। उन अरयम्मा देव को प्रणाम करता हूँ। हे पिता महा और प्रति महा, हे माता माता महा और परमात्मा महा, आपको भी बारंबार प्रणाम है। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। इसका अर्थ यह है कि वर्ष भर अपने देवों को समर्पित अनेकों पर्वों का आयोजन करते हैं, लेकिन हमने बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि हमारी प्रार्थना देवों तक नहीं पहुंच पा सक रही है। हमारे पूर्वज देवों और हमारे मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं, और जब हमारी पितृ हमारी श्रद्धा हमारे भाव हमारे कर्मों से तृप्त हो जाते हैं, हमसे संतुष्ट हो जाते हैं, तो उनके माध्यम से उनके आशीर्वाद से देवों तथा हमारी प्रार्थना बहुत ही आसानी से पहुँच जाती है और हमारे मनोवांछित फल की शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। पितरों का सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण वह अपने परिजनों स्वजनों को सतर्क करती रहती है तथा तमाम कठिनाइयों को दूर कराकर उन्हें सफलता भी दिलाती है। सामान्यतया सर्वसाधारण को अपनी उपस्थिति का आभास भी नहीं देते, परंतु उपयुक्त मनोवृत्ति एवं व्यक्तित्व को देखकर या उपस्थित होकर भी सहयोग एवं परामर्श देते हैं। पितरों का उद्देश्य ही अपने वंशजों को पितृवृत्त स्नेह दुलार सहयोग एवं खुशियाँ प्रदान करना है। संसार में तमाम उदाहरण उपलब्ध हैं जब इन्होंने दैवीय वरदान के रूप में मदद की है। पितरों का महत्व पितर अपने कुल से मात्र अपने प्रति श्रद्धा अपना स्मरण अपना आदर तथा अपने प्रति उच्च संस्कार ही अपेक्षा रखते हैं, और यह भी सत्य है कि उनका श्राद्ध करने के नाम उनके नाम से दान धर्म करने संस्कार करने स्मरण करने का पुण्य फल एवं यश करने वालों को ही प्राप्त होता है तथा उनका कुछ मात्र अंश ही हमारे पितरों के पास पहुंचता है। जो करता है वही भरता है, परंतु हमारे पितर जब यह देखते हैं कि मेरे कुल के लोग हमेशा प्रति कृतज्ञता का उपहार का भाव रखते हैं प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उन्हें असीम संतोष एवं सुख का अनुभव हो जाता है।
1: ऐसा होता है। तो राजेंद्र जी, आपने लगातार और हिंदी में और ऐसा संदेश सुंदर रूप से दिया चलो सांद्रा जी भी उसे कोशिश करेंगे, उसका पूरा नहीं हो पाएगा दोस्तों,
2: नहीं डांस भी करेगा।
3: हाँ जी, तो मैं भी यहाँ पर कुछ संदेश देना चाहती हूँ डच में, नीदरलैंड्स में। पितृ श्रद्धांजलि, व्हाट हाउ दैट इन दैट बिटेकन दैट वी गान फॉर एरन फ्रॉम द फोर ओल्डर्स एंड दैट इज अ हेल बेलंगरेक रिचुअल फॉर द हिंदूस। हियरमी टोनो रिस्पेक्ट voor de verering van de overledene. En het is vooral zo belangrijk omdat de ziel van de overledene na de dood beschermer wordt voor het hele gezin. De verplichting aan de voorouders heet Pitr Reen. Hindoes vervullen deze verplichting door een offerplechtigheid te houden genaamd de Shraad. Shraad wordt meestal gehouden in Pitrapaksha voor de ouders indien al overleden. Alleen voor de overledene ouders wordt deze shraad gedaan. Ouders, grootouders en overgrootouders of voor alle voorouders. Aan hun ouders hebben Hindoes een ereschuld zolang die nog in leven zijn, want die hebben hen verzorgd en opgevoed. Mana to je pitrereen kabhi khatam nahi hota hai, lekin hum log hinduo maan kar chalte hai ki shraad karne se kuch kam ho jata hai. Ze lossen de schuld voor het grootste deel af door hen te verzorgen als ze oud zijn geworden en niet kunnen werken. Er blijft nog een restschuld over die wordt ingelost met shraad door middel van jaldaan, water en melk, tildaan, maanzaad, diepdaan en het reciteren van pitra mantras om uw mata pita, parpita op een juiste vedische manier Sridhanjali uit. Aap pitra reen se mukt hona chahte, apne pitro ko mukti dilana chahte ho, to kuch bhi kijiye, lekin kijiye kuch.
1: जरूर, संद्रा जी ने भी संदेश दिए। राजेंद्र जी, जैसे कि संदेश में और हम सब सुनते आए हैं कि हमें तीन प्रकार के ऋण होता है, पहला जो पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा देव ऋण। इन तीनों पे हमें ध्यान देना है और हम सब क्या कर सकते हैं इसे अंतर्गत में, इसमें कुछ ना कुछ संदेश और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। तो संदेश क्या है, पहले हम सब संदेश सुना देते तो फिर हम सब अगले गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: संदेश थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। अपने प्रियजनों की साधना सहायता के लिए वह हर संभव प्रयत्न करते हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने, उन्हें सद्भावना भरी श्रद्धांजलि देने तथा उनके प्रति अनुकूल भाव रखकर उनकी सहायता लेने से पीछे नहीं रहना चाहिए। परिजनों का मृतक के लिए लगातार रोना पीटना तथा शोक प्रदर्शन करने से उन्हें दुख होता है, उनकी शांति में बाधा पड़ती है। इसलिए उनकी यादों, स्मृतियों, क्रियाकलापों को सदा के लिए संजो कर रखकर हमने उनसे प्रेरणा कर लेनी चाहिए, उनकी शांति की कामना करनी चाहिए। परंतु मृतक के साथ शारीरिक मोह बंधन शीघ्र ही तोड़ लेना चाहिए। यह मानना चाहिए कि उनका रूप अवश्य बदल गया, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। परावैज्ञानिकों को अपने अनुसंधानों के दौरान अनेक साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि तमाम पितरों ने समय समय पर अपने आत्मियों की कठिनाइयों की सहायता की है तथा उसका उचित मार्गदर्शन भी किया है। कहीं यह नज़र नहीं आई, कहीं उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी और कहीं यह स्पष्ट आभास हुआ है कि कोई परलौकिक शक्ति हमारी मददगार बनी। प्रसन्न हमारा उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं कठिनाइयों में उनका स्मरण करने का है। हमें अपने पितरों के प्रति वैसे ही श्रद्धा भावना रखनी चाहिए जैसे हम प्रभु के प्रति रखते हैं। संसार में सभी धर्मों एवं सभ्यताओं में पितरों के प्रति कर्तव्य पूरा करने को कहा गया है। अनेक धर्मों में अलग अलग रीतियों की पितृ पूजन एवं श्राद्ध पर्व धर्म की परंपरा प्रचलित है। पितरों को स्थूल सहायता नहीं परंतु सूक्ष्म भावात्मक सहयोग एवं श्रद्धा मात्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं तथा प्रसन्न होने पर यह पितर बदलने की प्रेरणा, शक्ति, सहयोग, मार्गदर्शन एवं सफलता प्रदान करते हैं। यही आज का जो संदेश था पितृपक्षों के समय का, यही संदेश रहा। अब हम चाहेंगे कि एक छोटा सा भजन चलाया जाए जिस प्रकार दूजे की बात मानी जाए, तो फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे।

माँ बाप की नज़र में सर को पकड़ के रोके, बहुत ही अच्छा जो भजन था वैदिक नित्य कर्म विधि का, बहुत अच्छा भजन रहा। अब हमारा समय बढ़ता है आगे की ओर, तो संजय जी अब हम लोगों को वही गाना याद आता कि लागे छूटे ना अब तो सनम। जैसे ही मोहम्मद रफ़ी का ये गाना और लता मंगेशकर जी का गाना आता है, सब लोगों को पता चलता है कि हम लोगों का समय अपनी सीमा पे पहुंच चुका है और हम विदा लेने वाले हैं। तो समय तो कभी किसी के लिए रुकता नहीं, विदा तो लेना ही पड़ेगा, क्यों ना वही गाना लागी छूटे ना सनम अब तो सनम चलाया जाए।

फाउन हिंदुस्तानी की रेडियो को सुनने वालों, जैसे कि ये गाना शुरू होता है और हम लोगों का विदा लेने का समय होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं को जिन्होंने हमें इतना प्यार से सुना। और आज के जो कार्यक्रम रहा पितृपक्ष के बारे में, सब लोगों ने सुना, मनन किया, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार इसी दिन इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, यानी सेवक राजेंद्र सिंह का नमस्कार, धन्यवाद।

एहसास मिटा, तलाश मिटा, मिट गया उम्मीदें भी, सब मिट गया, पर जो ना मिट सका वो है याद तेरी। सुने वालों, इसी वाणी के साथ आपको सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। आपको एक शुभ दिवस होवे।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्ति पे आकर पहुँचे है। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आपके लिए इसमें जरूर लाभदायक निकले, और हम सब अगले सप्ताह कार्यक्रम लेकर फिर उपस्थित रहेंगे। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले शांता खेमई जी और सांद्रा जी, और हमारे पैनल के पीछे राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। नमस्कार कहता हूँ।

इंसान उस कल की चिंता में डूबा रहता है जिस कल का कोई भरोसा ही नहीं है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आप सबकी सेविका बबली आसरा। आज फिर मैं एक नया प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है बॉलीवुड, हमारी फिल्म इंडस्ट्री। हमारी बॉलीवुड इतनी बड़ी है कि इसमें इतने महान कलाकार हुए हैं हमारे फिल्मी सितारे। और आज मैं जिस फिल्मी सितारे के बारे में बताऊंगी, उसने तो बहुत ऊंचाइयों को छुआ, और वो है हमारे सबके प्रिय मनोज कुमार जी।

सुनने वालों, आज मैं आपको मनोज कुमार जी की फिल्मों के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके निर्देशक के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगी।

मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के एक महान अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे, जिन्होंने उनकी देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए भरत कुमार के नाम से जाना जाता है। मनोज कुमार जी का जीवन। उनका पूरा नाम हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 इब्टाबाद, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ। विभाजन और स्थापन। भारत के विभाजन के समय उनका पूरा परिवार शरणार्थी के रूप में दिल्ली आ गया था। उनकी शिक्षा दिल्ली के हिंदू कॉलेज से बीए की डिग्री करके प्राप्त की।

सुनने वालों, अब हम मनोज कुमार जी की मशहूर फिल्म क्रांति का एक गीत सुनने जा रहे हैं, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।

सुनने वालों, ये जो आपने गीत सुना ये फिल्म क्रांति का था और ये मनोज कुमार जी की बहुत सफल फिल्म रही और इसमें दिग्गज अभिनेताओं ने काम किया जैसे दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, निरूपा राय, प्रवीण बॉबी और हेमा मालिनी और स्वयं मनोज कुमार जी ने भी इसमें अभिनय किया था।

सुनने वालों, मैं आप सबको मनोज कुमार जी के जीवन के बारे में बता रहे थे। अब उनके परिवार के बारे में सुनिए। उनके परिवार में उनकी पत्नी जिनका नाम शशि गोस्वामी है और उनके दो बेटे हैं कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। कुणाल गोस्वामी ने फिल्मों में अभिनय किया है और विशाल गोस्वामी ने निर्माण तथा संगीत विभाग में काम किया है। सुनने वालों,

और मनोज कुमार जी के एक भाई राजीव गोस्वामी थे। इसके अलावा भारत पाकिस्तान विभाजन के समय उनके एक छोटे भाई कुकू का दंगे और बीमारी के दौरान बचपन में ही निधन हो गया था। सुनने वालों,

मनोज कुमार जी ने निर्देशक भी किया, निर्माता निर्देशक भी रहे। उनकी फिल्मों में उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, पूर्व और पश्चिम थे। उपकार 1967 यह एक ब्लॉकबस्टर और देशभक्ति से भरपूर फिल्म थी जिसका निर्देशन खुद मनोज कुमार जी ने किया था। इसमें उन्होंने भारत नाम के किसान और सैनिक की भूमिका निभाई थी। क्रांति 1981 यह एक ऐतिहासिक और ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिखाया गया था, जिसमें उनके साथ दिलीप कुमार समेत कई बड़े कलाकारों ने काम किया था। रोटी कपड़ा और मकान 1974 यह फिल्म समाज की आर्थिक समस्याओं और बेरोजगारी पर आधारित थी। यह एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। पूरब और पश्चिम यह 1970 में आई। इस फिल्म में भारतीय संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता के फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। सुनने वालों, अब हम गाने की ओर बढ़ते हैं। अब गाना फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से लिया गया है।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से था, ये भी मनोज कुमार जी की एक बहुत अच्छी फिल्म थी। और इस फिल्म में अभिनय किया था शशि कपूर, जीनत अमान, खुद मनोज कुमार जी ने।

सुनने वालों, मनोज कुमार जी ने कुल 55 फिल्मों में काम किया और मनोज कुमार जी की पहली फिल्म 1967 में आई जिसका नाम था फैशन। इस फिल्म में उन्होंने महज 19 वर्ष की उम्र में एक बुजुर्ग भिखारी का छोटा सा किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता कई फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा में एक महान पहचान बनाई।

सुनने वालों, मनोज कुमार की बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म मैदानी जंग 1985 में आई थी, जबकि बतौर निर्देशक उनकी आखिरी फिल्म जय हिंद 1999 में आई थी। सुनने वालों।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना ये फिल्म पूरब और पश्चिम से था। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी सुनने वालों। इसमें भारतीय सांस्कृतिक और पश्चिम संस्कृति का मेल जोल था कि इसमें मनोज कुमार जी ने दिखाया कि भारतीय सभ्यता कैसी होती है और पश्चिम की सभ्यता कैसी होती है, पूरब और पश्चिम। और इसमें अभिनय किया था स्वयं मनोज कुमार जी ने, सायरा बानो जी ने और कामनी कौशल जी ने। हर फिल्म में उनकी प्रिय माँ होती थी कामनी कौशल जी, वो उनको इतना पसंद करते थे कि हर फिल्म में उन्होंने कामनी कौशल जी को अपनी माँ बनाया।

सुनने वालों, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना। ऐसे मनोज कुमार जी को भी बहुत चीज़ें पसंद थी, जैसे वो अपनी फिल्मों में आईने का इस्तेमाल करते थे। उनकी फिल्मों में शीशे बहुत रहते थे, शीशे रहते थे और वो अपने मुंह के ऊपर हाथ जरूर रखते थे, वो भी उनका एक स्टाइल था। एक उनकी हर फिल्म में मुंह के ऊपर हाथ रहता था।

और उन्होंने अपनी फिल्म में भारतीय सभ्यता को बहुत उजागर किया, दुनिया को दिखाया कि भारतीय कैसा देश है, उसकी सभ्यता कैसी है, उसके रहने वाले कैसे हैं। वहाँ पर जहाँ तक किसानों का देश है भारत, वहाँ पर किसान कैसे काम करते हैं, और ये चीज़ें उन्होंने अपनी फिल्मों में बहुत दिखाई और देशभक्ति का बहुत उपयोग किया, क्योंकि वो देश से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी देशभक्ति को बहुत दिखाया फिल्मों में सुनने वालों।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। मैं आप सबको बता रही थी मनोज कुमार की जीवनी के बारे में। मनोज कुमार जी के पास कुल कितनी संपत्ति थी? विकिपीडिया के अनुसार उनके पास करीब कुल संपत्ति $20 मिलियन, करीब 170 करोड़ रुपए नापी जाती है। सुनने वालों, संपत्ति से जुड़ी मुख्य बातें, कुल नेटवर्क उनकी संपत्ति 170 करोड़ है। कमाई का स्रोत, फिल्मों में 50 साल का लंबा और सफल कैरियर बतौर अभिनेता, निर्देशक और लेखक है। प्रमुख संपत्ति रिपोर्ट के अनुसार उनके नाम पर गोस्वामी टावर नामक एक बड़ी इमारत भी है। आधिकारिक डेटा, हालांकि उनकी संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक और पक्का सार्वजनिक डेटा मौजूद नहीं है और यह आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स व सेलिब्रिटी नेटवर्क वेबसाइट पर आधारित हैं। सुनने वालों,

सुनने वालों, ये भी मनोज कुमार जी की एक बेहतरीन फिल्म थी। उनकी हर फिल्म में देशभक्ति का गीत जरूर होता था और जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो टीवी पर उनकी फिल्में जरूर दिखाई जाती हैं सुनने वालों। और जब तक उनकी फिल्म ना दिखाई जाए तब तक समझो कि टीवी वालों का दिन अधूरा है सुनने वालों।

सुनने वालों, मनोज कुमार जी ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें प्रमुख हैं घर बसा के देखो, गृहस्थी, हरियाली और रास्ता, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, शहीद, पूर्व और पश्चिम, वो कौन थी, शोर, गुमनाम, हिमालय की गोद में, शहीद, उनकी प्रमुख फिल्में थी सुनने वालों।

पत्थर के सनम, पूर्व और पश्चिम, दो बदन, क्रांति, सन्यासी, ये भी उनकी प्रमुख फिल्में थी सुनने वालों।

0: सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: हेलो एचआर, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग,
1: मीट मिस्टर भारत।
2: हेलो,
1: इलाहाबाद से आए।
2: इलाहाबाद?
3: आप कहाँ के रहने वाले?
2: लंदन का। मैं इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता।
1: भारत, मैं तो भूल ही गया था, ऑफिस में तुम्हारे नाम का खत आया था।
4: गंगा भाभी का
3: गुरु जी का
4: क्या लिखा?
3: आप सबके लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।
1: ओम जब मैं सब बनारस से पढ़ता था, उसे भी इलाहाबाद से गुरु जी के खत आया करते।
3: आप गुरु जी से कभी नहीं मिले?
1: नहीं, जिंदगी में कभी इलाहाबाद जाने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे पिता ओम से संबंध था। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गोली का निशाना बना दिया। मेरे घर वाले लाहौर में थे, मुल्क के बंटवारे में सब के सब कत्ल कर दिए गए। उसके बाद कभी इंडिया जाने का ख्याल ही पैदा नहीं। खैर, ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा?
3: अच्छा है, मगर चाचा जी, आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है, अपनापन तो यहाँ दिखाई नहीं दिया।
2: माय फुट, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहाँ मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हो।
3: जी,
2: और नहीं तो क्या। यहाँ देखो, हर आदमी खुशहाल नजर आता है, ना रोटी की फिक्र, ना कपड़े का गम और ना घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, चार रोटी में से एक रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश।
3: वो देश आपका भी तो है।
2: काली मत दो
3: जी।
2: जो देश दूसरों के रहम और कर्म पर पल रहा हो, वो देश मेरा नहीं।
3: मेरा तो है।
2: होगा, तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, मैं उसे अपना कहता हूं जो मदद देता है। तुम लोग जमीन से पेट भर अनाज नहीं निकाल सके और लोग चांद तक पहुंच गए, है कोई मुकाबला?
3: जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है।
2: सर झुकाने पर फक्र करते हो, है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज जीरो जीरो एंड जीरो।

जीरो दिया मेरे भारत ने, मैं भारत की बात सुनाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ। सुनने वालों, मैं भी भारत की रहने वाली हूँ, इसलिए भारत की बात सुनाती हूँ। पहले लोग सोचते थे कि भारत में कुछ नहीं है, भारत एक गरीब देश है, लेकिन अब वही भारत ने कितनी उन्नति की है। सुनने वालों, भारत अपने मेडिकल क्षेत्र में और चांद पे भी पहुंच गया भारत। उनके डॉक्टर्स इतने बढ़िया हैं, दवाइयाँ इतनी बढ़िया हैं। अब भारत में अपने मोबाइल बनते हैं, उन्होंने चाइना से लेने छोड़ दिए मोबाइल। सुनने वालों, और मनोज कुमार की फिल्मों के गाने इतने अच्छे, इतने मधुर संगीत के होते थे सुनने वालों, कि उनको जितनी बार सुने मन करता है सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। और ना सिर्फ गाने, और जो गाने वाले भी थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सुनने वालों, इस गाने को गाया महेंद्र कपूर जी ने, और ये फिल्म थी पूरब और पश्चिम।

सुनने वालों, मैं आप सबको मनोज कुमार जी के बारे में बता रही थी। मनोज कुमार जी को भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म श्री जो 1992 में उनको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया और राजकीय सम्मान दिया गया। सुनने वालों,

मनोज कुमार जी को भारत सरकार ने 1992 में पद्मश्री और 2016 में श्री दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सुनने वालों,

सुनने वालों, मनोज कुमार जी की मृत्यु 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल मुंबई में हुई। तब वह 87 साल के थे। सुनने वालों, अभिनेता मनोज कुमार जी ने अंतिम सांस उसी हॉस्पिटल में ली। सुनने वालों,

आप सबसे आज्ञा लेती हूँ और अगली बार फिर किसी दूसरे फिल्म स्टार, एक्टर, हीरो या हीरोइन के बारे में आपको उनके जीवन के बारे में जरूर बताने की कोशिश करूँगी सुनने वालों।

शब्दों को संभाल कर बोले, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। कड़वे वचन तीर के समान घायल करते हैं, इसलिए हमारी वाणी में हमेशा प्रेम और मिठास होनी चाहिए। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

वाकई में आप ही प्यार हो। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से आप जुड़े हैं, चलते हैं आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए। फिल्म अपना खून से।

अजय सुन सजना, फरमा दी है आशा भोसले जी मोहम्मद रफ़ी जी के साथ फिल्म का नाम अपना खून नेहन तीन अख्तन सैफन तक के ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है सुनो सजना।

मुकेश जी और लता नहीं नहीं मुकेश जी और आशा भोसले जी की आवाज में कि एक बार मुस्कुरा तो दो फिल्म का नाम है मेरे दोस्तों। एल्का न्यू अवेक इस अनकाउंस ओम फ्रेश एनर्जी और द द्रोमन वार्तमाकन।

ख्यालों में किसी के नेखंती फैफ तक के ये पिक्चराइज किया फिल्म है मेरे प्यारे सुनने वालों। गीता दत्त और मुकेश जी के आवाज में यहाँ से मिलकर हमने श्रवण की है। आज के प्रोग्राम में उनको भी शामिल कर दिया गया है। विनार सैंखे मेंशन दी नोइट इट्स फाउट दून विनार सैंखे मेंशन दी नोइट इट्स फाउट दून मार दैट सेम मेंशन दी नोइट ऑफ हेवन सो आज यू

खूब फरमा दी और हमने सुन ली कि पायल की झनकार रस्ते रस्ते मेरे दोस्तों। अनमेंस अनमेंस सोमस्ता एक ऑप मेतनलाख सोमस्ता एक ऑप मेतनलाख सोम्स ओक एन अ नॉर्स बॉय सोम्स बार्स एक फान द एनर्जी मार सोम्स ओक बैनक लय सोम्स रियाहेर एक नोक फेल सोम्स लात एक आलस सोम्स लात आलस म काउत सोम्स फूल एक म खवोन वाट फ्रेम मार सोम्स ओक हेल फर्ट्राउत सोम्स ता एक ओवराल फॉर ओपन सोम्स स्लुइट एक आलस बुइटन सोम्स लोप एक खवोन ते नोरन मार सोम्स ook wel te fluiten. Soms gaat het helemaal niet goed. Soms gaat het wel naar wens. Het hoort er denk ik allemaal bij. Bij het zijn van mens.

फिल्म अप्रैल फूल है, ये सुंदर सा गीत और कितने ही प्यार से फरमाए हैं रफी जी अपने मशूका के लिए, अपने प्रेमिका के लिए इतनी सारी दुआएं हैं लफ्जों में आपने सुने होंगे। सिंगर सैन बतेक नित दैट मैन निट्स ओवर द लिफ्ट वेट हैट बतेक दैट मैन खनुख वेट ओम ऑफ द यूएस्ट पर्सन द वाख्तन।

अंबर सरिया सुने हम माइक जेट से। इस बारे गौर पूज गौरी।

वनिता वेली गौर पूजा गौर पूजा सुना दी है आपको, ले चलते हैं गौरी के पूजा अवश्य करना चाहिए अगर आप कार्यों को आरंभ करने चाह रहे हो। गौरी गणेश गणेश जी को जरूर से पूजे और अच्छा वर पाने के लिए इस पे आप भी जरा सा ध्यान धरें।

झूमो नाचो गाओ जब जब ऐसा कोई पर्व कोई त्योहार आ जाए तो अवश्य ही मगन होकर इसे मनाए। ये तो हर साल आते हैं, पर ये बात होता है कि हम हर साल रहेंगे या ना रहेंगे। इसलिए जो जिस पर्व को मना सके, जो जिस त्योहार को मना सके, दिल खोल कर प्रेम से प्यार से इसे जरूर से मनाए।

What a lovely song, a lovely songer. Mama Rafiji ki awaaz mein aur Asha Bhosle ji saath de rahe the. Raaton ka Raja. Haan, Raaton ka Raja. फिल्म का नाम है जी 1973 तक में ये पिक्चराइज किया गया है।

दुर्गा मैया तोरा अंगना सोहावन लगेला, वाकई में दुर्गा मैया हमारा इष्ट हमारा प्रभु हमारे साथ है, तो जहाँ आप रहोगे वहाँ सोहावन सुहागन सभी कुछ आनंद में ही लगेगा। प्यारे सुनने वालों, दुआ है प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहे जैसे भी रहे जरूर से खुशहाल में रहे, हंसते मुस्कुराते जीवन को बसर करें।

कुदरत के है करिश्मा एक दूसरे से मिलना, दुनिया के सरसमी पर किस्मत को आजमाना, ये प्रेम का जहां है हरगिज न भूल जाना, आपस से है मोहब्बत, आपस से है मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार, अदा बरसो। 4:03 बीत गया है, फा हो निश्चा रेडियो पर आप चुन है। शुक्रवार है अक्टूबर के 9 तारीख स्नेह अक्टूबर कैन भी है आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेश हो। परिवार घर में दुख है दुख में साथ देते हैं, और जहां पर खुशियां है बहुत से बधाई पेश हो। होता है प्रोग्राम गीतों का संगम, 6 बजे के प्रोग्राम जारी रहेगा, उसके बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना। से लेकर 4:30 तक मिले जुले गीतों के साथ में आपका दिल बहलाऊंगा। उसके बाद 4:30-5 के अंदर आइटम बयान जो है वो है जाने, हर एक गीत जो जाने स्रोत लगभग आधे घंटे तक आपके लिए मैं पेश करूंगा। आप सभी को मालूम है तो कल जब 8 तारीख था अक्टूबर के, तो मशहूर एक्टर, बॉलीवुड का मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का मृत्यु हो गया 75 साल की उम्र में। तो 6 और 7 के अंदर, माफ कीजिए 5-6 के अंदर नाना पाटेकर के बारे में कुछ बातचीत होगा। तरह का एक्टर था, कितना प्राइस हो पाया वगैरह वगैरह, आप सुनते रहना। प्रोग्राम में फिल्म बरिख्त, मौसम के समाचार, स्पोर्ट बरिख्त और छोटे छोटे खबरें आप सुनते रहना।

हर एक काम जो आपको रेडियो के शेयर कराना है, जैसे कि खास फरमाई, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 905-2828 फिर सीफ पर आपको तार करना है। अगर आपको बाहर निकलना है दोस्तों तो अपन छतरी पारपली मत भूलना, इसलिए कि बाहर बारिश हो रहा है। उम्र भी बीत गया है, हम हमेशा कहते हैं देखत देखत बीत गए और देखत देखत फिर हैरत सा, देखत देखत अभी साल बीत जाएगा, देखत देखत भी जिंदगी गुजर जाता है दोस्तों, और जिंदगी भी बीत जाता है। तो जो भी कल करना आज ही कीजिए, कल का वादा मत रखना, और जो भी करना भी सोच समझ के कीजिए। प्रोग्राम गीतों का संगम दोस्तों आप सुन रहे हैं और ये प्रोग्राम 6 बजे तक जारी रहेगा।

बस प्यार करके देखो ना, कभी नहीं किया दोस्तों, तो एक बार कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। प्यार क्या होता है आपको तुरंत मालूम हो जाएगा। मौसम के समाचार फॉर मेडक ट्रैकन बैन ओवर एटलांट एंड इस एट फॉर तय तो तय क्लेट्स नॉट फॉर ऑल इट हैज नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न दैट वे स्टार्ट फील विंड एंड वर्थ इट फन ओस नर्वस 13 tot 17 graden. Vanavond wordt de buien intenser en neemt de wind verder in kracht toe. Als je weekend hebt, dus dat kan het niet waar, hè? De maximum temperatuur 14, 14 graden rega. Zondag, rabiwar ko bhi 14 graden. Weekend ke baad, somwar ko 17, mangalwar ko 19 en budwar ko bhi 19 graden hone wala hai.

की बार दोस्तों अलका याग्निक मिस्टर सानू एंड उदित नारायण तीनों के मीठी आवाजों में आप सुनेंगे शाम खूब है।

मैं जान तो जरूर देऊंगा। दोस्तों घर उड़ देखता हूँ तो 2 मिनट बीत गया है, 4:30। आइटम को शुरुआत में करता हूँ। आज शाम का आइटम जो है वो है जाने हर गीत, जो जाने शुरू होता लगभग 8 घंटे तक जारी रहेगा। आपको सिर्फ न्यूल सी फो तक दिल से फाइव टू टू फिर सी फे या न्यूल सी फो तक दिल से डबल टू न्यूल डबल सी फो पर तार करना है। आपके लिए मैं एक गीत जरूर रख दूंगा। तो पहला सॉन्ग जो मैं सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जाने चमन शोला बदन बाहों में आ जाओ, हैंगलोक के रहने वाला श्रीमान चांदर रघुनंदन की तरफ से जीवन साथी नैली के लिए बड़े प्यार और दुलार के साथ ये सॉन्ग।

चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ हैंगलो करना श्रीमान चांदर रघुनंदन की तरफ से जीवन साथी नैली के लिए और नैली के ओर से पतिदेव चांदर के वास्ते बड़े प्यार और दुलार के साथ ये सॉन्ग पेश था। श्रीमान आंद्रे राजकुमार भी प्रोग्राम को सुन रहा है और आंद्रे आपके लिए ये सॉन्ग।

कहा मेरा जिगर गया जी, श्रीमान आंद्रेई राजकुमार के लिए ये सॉन्ग पेश था। 200 आइटम जारी है और आज शाम का आइटम है जाने, और जाने का आइटम अगर आप भागना चाहते तो आपको सिर्फ तार करना है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
अवतार कीजिए, आशा रेसवेक में रहती है और आशा की पसंद ये है।

फिल्म दोस्ती का सॉन्ग जाने वालों सरा मुड़ के देखो मुझे रईस वही के रहने वाली आशा के लिए स्पेशल ये सॉन्ग पेश था। छोटा सा स्पॉट ब्रेक था दोस्तों, हैमस्ट्रिंग ब्लेसियर जो ब्रायन रॉबी को हुआ तो नेशन लीग में जो डेविसलैंड से न्यूजीलैंड खेला था, तो इन दिनों में उसका जो ब्लेसियर है काफ़ी अच्छा हो गया है और ब्रॉबी सोचता है आने वाला दिनों में फिर से फुटबॉल फेल पर मुकाबला करने को। और स्पॉट ब्रेकर असद का मिडल फेल्डर 20 साल का मिडल फेल्डर श्रीमान के स्मिथ उन्हें भी ब्लेसियर हो गया। आप जानते हैं यंग और आई बॉस्टन से जो मुलाकात किया जो मुकाबला किया तो उसी मुकाबला में इन्हें ब्लेसियर हो गया, तो आने वाले दिनों में ये एट हकत है। आज जब शुक्रवार है तो एरेडिविजी में फुटबॉल का मुकाबला रहेगा, पीएसवी एससी हेरफेन से मुकाबला करेगा। उसके बाद कल शनिवार को गोहत ईगल्स स्पार्टा रोटरडम फेयनोर्ड आसेट फोर्टीन सीता एफ सी ट्वेंटे आयक्स एन ई सी और सोमवार रविवार को एफ सी इतरक वेलम दुई टेन स्टार आरू डेनहाग टेक्सवॉल एस सी कम्बीर और आखिरी में एक्सेल्सियर एफ सी ख्रोनिंग से मुकाबला करेगा। आप सभी को मालूम है दोस्तों किस नाम से नेशनल नाशो जो है नेशनल एल्फताल वो कॉन्काकाफ नेशन लीग में खुशकाकट हो गया है। ट्रेनर हैंक फ्रेजर जो है वो चार मुकाबला किया और चार में से दो जीता एक खले खेला और एक हार गया। तो फिर वेस्ट राइडर सीफ पिंत है और जमैका को भी फिर वेस्ट राइडर सीफ पिंत है लेकिन उसका दुल साधो और बढ़िया है तो जमैका तो इजे प्लास पे और फेर दर जाए मुकाबला में। तो ये खेल जो हुआ आपने सुने होंगे कि ये खेल जब शुरुआत हुआ तभी से जो तुस खॉवर्स था ग्वाटामाला का शुरुआत किया बंदर का आवाज़ निकाल के ब्लैक वगैरह वगैरह बोलने के लिए, तो अच्छा बात नहीं दोस्तों। ये देश की नासी है सुनामे एक खत लिखा है फीफा के पास और देखा जाए कि फीफा क्या करता है आगे चलकर। आइटम में एक और सॉन्ग है जाने मन तेरे दो नयन अनमोल पलेकार विजया सिन्हा आशा भोसले के आवाज़ में सुनेंगे और ये दोनों अनमोल पलेकार और विजया सिन्हा फिल्म में काम किया है। फिल्म का नाम है छोटी सी बात।

जाने मन आइटम यहाँ से मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। एक आखिरी सॉन्ग चलेगा, उसके बाद रिक्लाम न्यूज ब्रेक, और न्यूज ब्रेक के बाद सितारों का सफर आप सुनेंगे, जिसमें स्वर्गीय दादा पत्रकार के बारे में कुछ बातचीत होगा। मैं तुरंत चला जाता हूँ रोतरडाम की ओर, वहाँ पर रहता है श्रीमान श्याम गिरवर दोस्तों, हमारा समधी भाई है, घर पर बैठा हुआ शोक प्रोग्राम सुन रही है, और उनके साथ साथ उनका जीवन साथी रीता भी बैठी हुई है, तो प्रोग्राम से मजा आए, दोनों लुट रहे हैं। मैं एक सॉन्ग सेलेक्ट करके रखा हूँ, और आशा उम्मीद के साथ समधी भाई कि आप दोनों के ये सॉन्ग जरूर पसंद आएगा। फिल्म आरसू का सॉन्ग है, जो नीखन तक में रिलीज हुआ, श्याम और रीता के लिए स्पेशल, बड़े प्यार और दुलार के साथ।

5:05 में बीत गया है, आरंभ होता है सितारों का सफर। सितारों का सफर में आज स्वर्गीय मशहूर एक्टर नाना पत्रकार के बारे में कुछ बातचीत चलेगा।

ಶಿವನ ಪತಕಾರ जिन्हें हम नाना के जान से नाम से जानते पहचानते थे। उनका जन्म हुआ इन जंगिरिया बॉम्बे इंडिया में।

film actor, scenario schriver, film maker aur leaker officer zindagi mein tha. शादी हुए नीलकंठ पत्रकार के साथ नीलकंठी आख्तन सेफर तक में दो लड़के दो में से एक का मृत्यु हो गया. नीलकंठी नीलकंठ तक से लेकर ट्रेडिशन डैचिंग तलु इंडिया का लीखर में एयर लेफ्टिनेंट कर्नल था. बॉलीवुड ड्रामा गमन में निखिल आख्तन सेफटक में पहला बार काम किया. उसके बाद दो चार मराठी फिल्मों में भी नाना पाटेकर ने काम किया. जैसे आप सभी को मालूम है दोस्तों, कल जब 8 तारीख था अक्टूबर को, तो उनका मृत्यु हो गया है 75 साल के उम्र में. ऑफ द लेट स्टेफन फेफन सेफटक यार, और वो भी डोना पौला बॉम्बे में. नाना पाटेकर का कई फिल्मों में काम किया है. सभी फिल्म में एक फिल्म था, फिल्म क्रांतिवीर, जो नीलकंठी फिर नीलकंठ में रिलीज हुआ. उसी फिल्म का एक सॉन्ग हम सब मिलकर सुनेंगे.

0: दिन था, तो इन्हें इनको हमेशा साथ ले जाते थे जहाँ पर नाटक होते थे, तो नाना जी को हमेशा साथ लेके जाते थे। विजय मेहता ने रिकॉर्ड किया एक नाटक और पत्रकार उस नाटक में काम किया और वहीं से वो मशहूर हो गया। दोस्तों इनका माँ निर्मला पत्रकार, जो जिनका मृत्यु भी हो गया है, वो मृत्यु होने से पहले पिता के मृत्यु के बाद ये नाना के साथ घर पर रहता था। आगे चलकर पत्रकार आसन ताकतक में कैप्टन था, नेशनल वहाँ का नेशनल लीडर जो है, और कई ट्रेनिंग भी साथ साथ कई ट्रेनिंग में भी काम किया। वैसे भी बॉम्बे का सिपाही जो पुलिस है उसके साथ भी काम करते थे, ये तस्वीर बनाते थे दोस्तों, फरदातक लोग के तस्वीर ये टीकन करता था, तो ये काम भी वो करता था। फिल्म एक्टर था लेकिन ये तस्वीर सिपाही के साथ भी बहुत से काम किया। करगिल लड़ाई जो था नीघे तक में तो मयूर था, और सुजाती में भी साथ साथ ये भी लड़ाई पे चला गया। नाना पत्रकार और बीबी दोनों में एस्केडिंग हो गया, और लोग कहता है कि मुनीषा कोरेला के साथ नाना पत्रकार के संबंध था। पता नहीं, बहुत से लोग ये बात कहता हो सकता है कि सच।
1: ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए
0: आप जानते हैं, लोग जब थोड़ा से बातचीत देख लेते हैं किसी के साथ तो उनके साथ नाम बर्बाद हो जाता है। पत्रकार का एक छोटा सा झलक, एक दो सेकंड का झलक दोस्तों हम आपको जरूर सुनाएगा।
2: और मैं कल मरने वाला हूँ, इस पर अगर मैं भरोसा करूँगा तो आज अच्छा जी सकता हूँ।
3: मैं चाहता हूँ,
0: आपने सुना दोस्तों, कल मैं मरने वाला था आदमी जानता था, इन्हें हार्ट से शांत हुआ उसी कारण इनका मृत्यु हुआ है। मैंने देखा जब तेरी नजरों के क्रांति वीर का एक दूसरा सॉन्ग

0: हेलो
1: हेलो,
0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: नहीं।
0: ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब तुम वही करोगे जो

0: जनरेशन गैप हम मिलके करेंगे आज।
1: पतेकर का एक दो फिल्म के नाम है लूंगा दोस्तों, या तो ही जैसे ने फिल्म शक्ति, उसके बाद तुई डेसन ध्री में फिल्म आज, तुई डेसन फीर में फिल्म अपहरण, तुई डेसन फेस में फिल्म ब्लफ मास्टर, फिर हीरा फेरी, तुई डेसन सेस में टैक्सी नंबर 9211, तुई डेसन सी फिल्म फिल्म वेलकम, तुई डेसन आख में फिल्म एक, तुई डेसन तिंग का फिल्म तुम मिलो तो सही, और फिल्म शागीर, तुई डेसन एलफ में फिल्म दियोल, कमाल धमाल वो फिल्म तुई डेसन ट्वेल्व का फिल्म है, तुई डेसन फेरतिंग में फिल्म अब तक, तुई डेसन फेरतिंग का फिल्म जंगल, तुई डेसन सेस्तिंग में बनल फिल्म गोलमाल, ऐसे कई फिल्मों में जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई फिल्मों में ये आदमी जो आज दुनिया में नहीं है नाना पाटेकर काम किया। तो फिल्म गुलामे मुस्तफ़ा, गुलामे मुस्तफ़ा का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा।

Nana Palekar ka prijs, dus een national prijs, jo paya 1989 mein film Parinda mein, 1995 film Kranti Veer, 1997 mein film Agni Shakshi. Filmfare award unhe mila 1999 mein film Parinda mein. Uske baad 1992 mein film Angaar, 1995 mein film Kranti Veer. 2003 में मिला फिल्म अपहरण में उन्हें नेशनल प्राइज. आगे चलकर 2011 में फिल्म राजनीति में भी उन्हें प्राइज मिला और स्टेरन स्क्रीन अवार्ड मिला निकली फेफर निकल तक में फिल्म क्रांतिवीर में 2006 में अपहरण. महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड उन्हें मिला बेस्ट एक्टर का निकलती एड्रियन तक तक में फिल्म रघु मैना में, नहीं सेशन तक तक में फिल्म घर जरूरी में भी प्राइज पे या बेस्ट एक्टर का. फिल्म फेयर मराठी अवार्ड 2015 में मिला उन्हें बाबा फिल्म बाबा में और आगे चलकर 2017 में फिल्म नताशम, 2025 में फिल्म उले अला और इंटरनेशनल इंडिया से फिल्म अकेडमी अवार्ड भी उन्हें पाया मिला फिर अपहरण में. फिल्म जर्नलिस्टिक बंगाल का उन्हें भी प्राइज दिया वो फिल्म अंगार में, फिल्म अब तक चपा और सी साइन अवार्ड नाना पत्रकार को मिला 2003 में फिल्म शक्ति में और साथ ही साथ फिल्म राजनीति में. प्रोड्यूसर भी था दोस्तों, फिल्म प्रोड्यूस किया फिल्म अपहरण और फिल्म वेलकम. आगे चलकर बॉलीवुड का फिल्म प्राइज उन्हें मिला फिल्म अपहरण में और बेस्ट मानलक स्कर्क आप जानते चोर जो है तो उनका भी प्राइज उन्हें मिला फिल्म काला में. आगे चलकर फिल्म टैक्सी नंबर 9211 में उन्हें मिला बॉलीवुड का अवार्ड. तो इसे कई प्राइस नाना पत्रकार को मिला, साथ साथ भारत का फर्ज सरकार जो है उन्हें पद्मश्री का पद्मी भी दिया. नाना पत्रकार का एक दूसर फिल्म का सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ दोस्तों और वो है ये गीत.

Pro quê?

0: अरे गाड़ी रो।
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: क्या हो रहा है मुस्तफा?
1: कुछ नहीं, गाड़ी जरा खराब।
0: जीती रहो, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को क्या अपनी तरह लोहे का समझा है जो धक्का लगवा रहे हो?
1: मैंने कहा नहीं, वो खुद ब खुद।
0: जा बेटी, गाड़ी ले जा मेरी।
1: नहीं अब्बा, ठीक है, हम चले जाएंगे।
0: मुस्तफा, अब्बा का हर लफ्ज़
1: सराफ़ ऊपर अब्बा।
0: जा बेटी, जा। और सुन, इसकी नजर उतार लेना, इसको किसी की नजर ना लगे। जा जा।
1: ठीक कह रहे थे, तुम्हें किसी की नजर न लग जाए।

ठीक सही है भाई। तेरा गम मेरा गम ऐसा सनम नाना पत्रकार। दोस्तों दुख की बात यह है कि कल जब 8 तारीख था अक्टूबर को, तो नाना जी का मृत्यु हो गया दोना पौला में, वो भी बॉम्बे का हॉस्पिटल हार्ट अटैक के जरिए, हार्ट स्टेलस्टान के जरिए। नाना जी दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम गर्व से लिया जाएगा।

0: तारक सतम सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है दोस्तों। आपकी का हैप्पी स्टेशन फा हॉन हिंदुस्तानी रेडियो जॉनी नंबर वन आ गया सीडियो में 6 बजे के बाद उसका प्रोग्राम सुनते रहना। हलीमा तैयार हो गया है दोस्तों। ये कौन हलीमा है आप सोचते होंगे? ट्रिनिदाद एंड टोबैगो का हलीमा है।
1: रही ना रही
0: बिलोंग टू मी।

0: डेस्टिनी शो का प्रिंसेस हलीमा के आवाज में भी आपने सुना दोस्तों, नकाटिंग नकाटिंग नकाटिंग वीकेंड है। आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पे शो
1: ऑन आवर ट्रू चैंपियन।
2: Somebody said table master.

मिनट रह गया 6 बजने में, मिनिटन फोर्स है। वीकेंड है, आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पे। जॉनी नंबर वन आ गया स्टूडियो, के बाद उसका प्रोग्राम आप जरूर सुनते रहना, खास करके उनका न्यूज बुलेटिन जो है आप फॉलो करना। हर एक काम के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9 CFM पर आने वाला शुक्रवार शाम में 3 एक बार फिर मैं प्रोग्राम गीतों का संगम के साथ स्टूडियो में उपस्थित रहूंगा। खुशबू रहेगा, फूल खिलेगा, जिंदगी रहेगा, फिर मिलेगा आप सभी को एक सुहानी रात।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आजीर बांधे। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो दोस्तों आज है शुक्रवार, शुक्रवार 9 तारीख अक्टूबर हो चुका है। घड़ी को देखा जाए तो 15 मिनट बीत चुका है, 6 बजे में एक बार फुर्सत हो चुका है इन लोगों से चाहिए। और आज भी आप लोग को देश विदेश के समाचार को सुनाएंगे। अभी आप लोग हमारे कड़ी का साथी राजेंद्र द्वारका से एक मस्त भरी को प्रोग्राम को सुना है।

और आप सबको हम कहते हैं हमारा रेडियो है फाहुन जो निरहांग शहर से हम लाइव प्रस्तुत करते हैं। हाँ आप लोग सुन सकते हैं रेडियो फाहुन एफएम पिंट एनएल पर लाइव पूरा दुनिया पर देख सकते हैं। तो हमारे मौसी नानी हम तुरंत चलते हैं और कहाँ चलते हैं अपना मातृभूमि अपना सूरीनाम की ओर। घाम झूरा बहुत ज्यादा है भैया सूरीनाम देश में और अडमिलों ने कहा करे भैया घास में लगा दे है आग घास में लगा दे है आग और जब घास में आग लगा दियो भैया और झूरा है सब झुरान है तो ऊ ना जाहे देखे भैया कि अगिया जा है अगिया कोई लकड़ी जड़ावे की पाल जड़ावे जौनची ओकर रास्ता में रही सब भस्म कर दी। मौसी ऐसे चीजवा है ना तो ऐसे भैया आग लगल रहा और वही में भैया एगो घर रहा घास के साथ और वहाँ घर भी जर के भस्म हुई है और ये बात हो रहा है सूरीनाम के सरमक्का के मेरे ख्याल से दोस्तों। और ये माँ एक आदमी के सब पकड़ी से एक आदमी के पकड़ी से और बोले अरे मियाँ बोले हैगा मन वेखर ब्रांदन ख्रास एंड फेल्ट ब्लूसन एकन वोनिंग ब्रांड ऑफ एन हेज ब्यूरन राख स्वार बस खादक बोले मन वेखर ब्रांडन ख्रास एन फेल्ट ब्लूसन और बोले एकन वोने ब्रांड ऑफ और बोले अपन एक घर उकर जरे है और उ घसिया में न जाहे का बोले अगिया बुतावे और बोले कोपनाम वेख है एगो भैया 7 अक्टूबर के बाद थे मौसी एगो लकड़ी के घर है फोलीडक जर के भस्म हुई गया ओकर बगले में एगो पत्थर के घर है ईंटा के घर है जहाँ पे एगो द्रियन देर तक यार का एम का ये है दी एंड होते वो नहीं ब्ले सो हेवन का वही खत है फिर तो दोफन ओक ना द अकेंटन हम दार तू अब द्रा खादन खीफन दत मेल द पुलिसी और बताए गए हैगा निखरन तो बोले सा कोम आने तो रोलन की जब निखरन तो तक यार के एरका ओएनसेन ब्रूर देका हुन बीरमान आंस प्राकन ओम हेल ब्रांडन फॉर ख्रास एंड फेल और बोले हैगा एगो निखरन 20 यार के आदमी और ओकर भाई बीरमान के बोले है कि घास में आगी ना लगाओ फॉर ब्रांडन फॉर ख्रास एंड फेल तो ई एर का भैया फर और साग द रोक एरंस तक ओवर लास बोले है उतरे में वोर द विसलिंग भले भैया एंड मोंद एट अन हंद खमीन हाथ से भी झगड़ा भइल है और बोले वेखर करी से जोन अगिया बरे ओके बुतावे के ओक तुन द अखेंत सिपाही हुआ पहुंची से बोले ओके बोले तू अगिया बुताओ अपन बोले है फर लीड द प्लेक तरवेल तीखन पड़ते फॉर द फर्दर अफांडिंग में द पुलिस सीखिंग स्लुक हेड फिर ओवर न द होती होनी वारेन की ओकर एक जर के आगी से ओकर घर भसम हुई गए और वही घर फैल जलावत रहा वीर ओके बोले हैगा अगिया ना लगाओ अगिया बुताओ वीर से झगड़ा करी से और ना बुताई से सिपाही अब भी वोर दे विस्लिंग हुए हैं और वही के घर जर के भसम हुई गए और वीरमान की ईंटा के घर भी भैया ऊनी फोलीडक इम्ब्रांस तो हेड फीर फॉर स्प्रेड सिक्स नल एंड लेफ्ट देयर पन खहील इन द आस। तो ये बात है हमारे सूरीनाम की जनता। देखो भैया तो ही परानी में केकर घरे बोले खुटपुट ना हुए झगड़ा लड़ाई तो हुए है लेकिन ये बातचीत हो रहा है निकेरी के भैया ऋषि ओम फ्रो भाई हाँ बोले औरत के कारण झगड़ा भइल निकेरी में जहाँ पे भैया दगौल भइल है दगौल भइल है और ना खाली दगौल भइल है दुई आदमी मर गए भी ओ मा मौसी निकेरी में दुई आदमी मर गए ऋषि ओम फ्रो मोकल आन ले रे फोर्स की तरह पढ़ते हैं मैं तुई दौड़न औरत के कारण लड़ाई भइल है और ये बातचीत हुए को पार्के प्लास से गा तेले सूर के उस कनाल वेख न्यू निकेरी में मौसी और बताए गए हैं 8 अक्टूबर के एगो सेशन फिर तक यार के भैया के नाम अनिल बुधराम और एगो हिंदुस्तानी द्रिय फिर तक यार के रितेश मथुरा हैं और बोले है इंसिडेंट फोन थ्रोम 4:30 बजे बोले है प्लास नार द पुलिस ब्यूरो और बोले फर क्लार्क

diverse verklaring willen hebben. Ki Mathura Jora Baya die werkzaam is bij een Ulanti mee kam kreeg. Oh, hij gaat DNV Nationale Veiligheid ke. Bole Dagi se meerdere scooten met zijn diswapen om Boedraam ke opper Dagi se. Oh, bole Dana zichzelf hebben ne pahele Boedraam ke dag ke maadhaari se. Bas apre aap ke bhi DNV er. Dag ke mar gei Mathura Baya apro mar gei. और भैया बुधराम के भी मारदा इसे बोले है रिलेशनल स्पैनिंग रहा लेकिन मुखलक अख्तरों खरों फन द इंसिडेंट अब तो मर गए ले भैया बुधराम के भी मार ढलले बाटे अब तो औरतिया और फराई हुई गए भाई अब कौन बुधराम तब बारे में तब आएगा तो एकर बारे में बोले हैगा पुलिस अखन बुधराम के को अरेस्ट खसखत वो नहीं पाए से ओकर उज्जर देती उता पे और बोले हैगा ओकर बस्तीर जो कुर्सी है बोले ऊपर ओकर लाइक पाए से मथुरा लाख तुसन दे तेजे ऑटो एंड फन द वेट दैट यू द मार्क एक्स ऑफ द ग्राउंड मिड द स्कॉट वार्निंग ऑन सेन हु बेड मैन liefde nog maar waren niet aanspreekbaar direct naar Marallah maar bole hega later is heb gelegen ambulance Mungra medische centrum mee en bole pehle Mathura maral hai to kar baad mein Budharam bhi mar gaye bhaiya bole ego khatrauda aurat ke bare mein ja hai khatrauda vrouw die bij het incident aanwezig was verklaarde dat ze ongeveer 7 jaren geleden ego geheime relatie raha Mathura ke बोले मथुरा के संगे बोले हमें को खाई में रेलासी रहा 7 पहले के बात है और बोले ओ रेलसिया बोले शेर का 1 में दोन हो गए भैया और बोले हैगा परमारीबो में हम लोग चल गली बोले उनको फिर 1 बाद बोले सौ से रेलासी में बुधराम से इन बखोन तब मथुरा के रेलसिया छोड़ के भैया गल बुधराम के पकड़ ली से तब बोले व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट रहा मैं मथुरा बिलीव बस्तान बोले नाम सोचा है मथुरा के छोड़ दे रहा 7 के रिलेशन 1 में मैं बोले तब वो व्हाट्सएप करत रहा मथुरा से और बोले फॉल्क द फ्रॉ मथुरा ऑन कफेर मान खलीदन बोले उनकेरी गए लहा एंड फ्रू के हर हाल द कॉमन अंतमुटिंग और बोले हैगा बेर बेर मात्र मथुरा से जाए अंतमुट करे और बोले वो वेखर करत रहा से वेखर द फॉर वेखन कि ओके रिलेशन रा बुधराम से तो बोले वारफा मथुरा फॉल्क सा नीट of the hook the bus बोले गो संजा के 3:30 भैया ओकर बिटिया पुलिस बिरो में थ्योरी एग्जाम गैला करे रहे विवेश के पार्केर कर ले रहा अपन ओतो तेले सिर लगे हुआ पे बुधराम उफ गैले बसुक करे पुलिस ओ गैला इन्फॉर्मेर करे बिटिया सलाख भैल की ना हा सेनर एक सेकंड नीट मेट एट टाइम ऑफ कस ब्रोकन बुधराम को अमदार हर ऑटो एंड सो हर मेट फॉर ही फर्स्ट टाइम हेवर खफरा वारम से हम नीट विल ऑन तो बोले कहे ना तू हमसे मांगे भेंट करे तो बोले हम फॉर प्रॉब्लम ना मांगते हम प्रॉब्लम तो फोर को ने रेस है ना सुपर मारे फॉल्क हार फॉल्क द बुधराम हार एंड स्टॉप द है दैट इवनिंग बोले कोर्ट द ना फर्स्ट किंग ओंग मथुरा बेरे सो पर सुपर मारे मथुरा फिन गले सुपर मारे में तरवेल द फ्रो बेरे कासा स्टोन होर द से दैट बुधराम इज ऑप्शन मोबाइल टेलीफोन और मथुरा टोंड द फ्रो रे तरुक नारे पर के प्लाट फन टेलीसी वार बुधराम ना सर ऑटो पर के द मथुरा कोमला तर फन द देखते ही बड़ा फुटकड़िया में भैया बात एमा ये बहुत लंबा चौड़ा है कि दोनों अपने में दक के मर गए हैं इक्वा इक्वा दागी से को नीख मिलीमीटर अन स्वार्थ पिस्तौल से क्लॉक से अन पत्रोन होदर में नीखन पत्रोन से 4 गो दागी से 4 हिल्सन अन होस्टर एंड 2 मोबाइल टेलीफोन इन बसला गनोमन ook de camerabeelden van het beveiligingssysteem van Telesur werden veiliggesteld. Daarnaast nam de politie 3 voertuigen in beslag. Toen, bhaiya, aurat ke piche, dekho, kya hoi ge, 2 admi ke jaan chal ge hai. Mathura mar ge, nani. Mathura mar ge hai. Aur Mathura ke saath saath, Mathura ke saath saath, Anil Badram bhi mar ge, dosto. That is the Karan van de Sake. Aur further ka bhaile ka na भाई अब देखो भैया SLM रीजनल फ्लुक्टन SLM भैया घंटन फीनो फीनो
vertraag bij le cabine personeel ke karen bhaiya hum lon to gwinti bati sune ke au niswa batawe ke ki slm jun hi kon rakam vertraag hue hai maar mausi lon nani lon slm pe ja hai tari se khud koop hai maar dekho kon chakallas kare slm hi baatchit hoega shirinam airways ke jun vertraag phin hui gega omdat cabine personeel stacking kare se bhaiya bole da jab to cabine personeel na stack kare ta machine tutal hai ya machine na tutal hai ko kai na ghuseral hai ja o na ghuseral hai ta dakna na ure na ur bhaiya ek se ek cheez ma e ja hai bhaiya omdat the personeel cabine personeel was unstuck in that blijkt uit een angstpas vlucht schema door de luchtvaartmaatschappij is verspreid over de PY 431 kebaantje toe he jo na Nederland aur bhaiya Aruba Curaçao jaat later jai ke udal hai het toestel vertrekt 7 uur vanuit Paramaribo naar Aruba waar het om kwart voor een 7 18 5 uur aankomst to yahan bataye gaye hai dosto volgens vertrekt het om kwart voor 8 raat ke Curaçao aur udal hai met een geplande aankomst van 20:15 uur. Deze terugvlucht naar Paramaribo staat gepland voor 21 uur. Aankomst. Ik wil je raad geven. Na de stoot, die vertrekking wat de SLM ke hem doen. Gwinti hoi gelie na nie. Auro, ik maand heb. We weten ki kale mi vertraag hoi. Dheer vluchten vertraag hoi. Hem doen jani la. Maar de SLM me baithe ta na mien direct kaanpe lege op tijd uri ki na uri chahe ke pol pe o chahe sandrei pe dat is gewoon de vaste dat zijn de vaste dingetjes automobilis aangehouden met vals rijbewijs bij verkeerscontrole te reisdeek me bhaiya aur bhaiya oké si paai pakal li se verkeerscontrole bhaiya resort reisdeek me o bole hij overhandigde bij de controle een rijbewijs dat vals bleek te zijn rijbewijs wat vals kan lera bhaiya ha bole fraud oke pakal li se Suriname me bhaiya ye cheez bhail hai to hum boli bata di ab dekho bhaiya sarnam ke na neelalan ke dukaan duwane jun hai uto gwinti hai pinda kaasi me ko kai na paave ke nani machhari me पैचल में सांबल में केचप में का बोले है सिर खुद में मसाला में चाउर में ओतो के अंदर दिल में द्राखलाइन पकलाइन के मत भरे का बोली मौसी बकी पहला दाई हम सुनीला भैया पहला दाई सुनीला को के इन पैसे नीदरलैंड के और दुआन ताताई में सर नाम से भैया बोली जोनी ततैया में कैसे रहा तो हिया बतावे सबन ऑन डेक करी से बस कैरमिंग टावर में द फरदोफन द मिडलन वारन इन हेड मटेरियल फ्रॉम द टावर ग इंप्रेगमेंटेर भैया कोक इनवा ततैया में धल की ओई में जमा दे रहा है टोटल भाषा में बोले जाए इंप्रेगमेंटेर कर ले रहा और ये भैया द फोन्स वेर खलान टाइजेंस एंड फिजिकल कंट्रोल तो जाने सुरीनाम के कोक इन दुआन 100% कंट्रोल है ta isa purberi kare dadai me havda kare ke bed ondersoeken van de towen en zijn de douanes op de verdovende middelen us op ontdek kare se bole hega her ging dus niet om losse pakje die tussen de towen waren verstopt het materiaal zelf was een drugs doordrenkt Oma giet karala, een soort mensen, impregmenteer karala, jamawalla. De douane, ik erbare mee, bole deelde de ontdekking op Facebook met de woordspelling van gelukkig konden onze douanes hier wel een touw vast knopen. Bij het bericht plaatsen deze foto waren we verzamelen voornamelijk Ujjar Ujjar Tatai Bhaiya Gaanthi Devalla, ik impregmenteer karala. Konchi nani, konchi koka, cocaïne oma impregmenteer karala hamari pyari pyari janta holland ke auru hamari Suriname ke janta ab jahan bhi ho hamara pyara aapke saath hai aur bhul na jana 11 tarikh se navratri
Chalinga pura duniya me abhi se bolle aap sabko ek shubh navratram hue radio fahun ke pura pura team se to hamare museum jaila sarnam vil sam mein guyana rikyo fudan tejan se kari comfort se बोले कारी कौम के तू जाने हुआ पे काबुल लगे है कराइबिस की जैसे ही यूरोपा के है एयू है उसे सुरीनाम में है कारी को तक गायाना और सरनाम मांगे सबके खाई से फूदक करे भाई सुरीनाम वेल हेड कोमन द कारी कौम फोर सीटर्स का अन खरीप मांगे फोर सीटर बने और बोलेगा संघे सामन गायाना से मांगे हैं खाइक फुटसल फोर सीटिंग फन रिक्विट फॉर स्टर्कन ओग मेंदर अफंकल कहे फन एक्सटर्न एनर्जी ब्रोनन एंड बेहतर फरबेंडिंग तुसन द लंदन क्राइक इन प्रियुताई तक फरबेंडिंग है ऐसा लम बे आज की कोरो पन रो अने कने किरा किरा सो औरो काबले अरुबा में फरत्राक भैला ही मांगे बेहतर फरबेंडिंग प्रे प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन ने फन ऑफ इन जनवरी तो 30 जनवरी और voorzitter Skaf van de conferentie van de regeringsleider op zich. Toen betekent het 52 reguleerde vergadering van de conferentie van de regeringsleden. Mensen bijeenkomst zeggen die van 16 tot 19 februari. Chaliga Uberiske. Of bolega Biesgoed worden 20 tot 25 hoogwaardigheidsbekleders uit de regio en daarbuiten verwacht daarnaast regionale internationale pers aanwezig zijn mensen melden minister van de buitenlandse zaken internationale handel en samenwerking in het persbrief toen hier betekent je maar piare gentaan willen beter verbinding door de lucht over het water en over land moeten handel investering toerisme en vrij verkeer ondersteunen daarnaast wil Suriname kunstmatige intelligentie op de regionale agenda plaatsen mensen de technologie moet bijdragen aan beter gezondheid, onderwijs en dienstverlening. Dan hoop ik namelijk dat allemaal bij de Carillon goed moet gaan, mensen. Toen eerst hebben we aan het aanvloeken. Bataté, heke Suriname, Guyana, mange, he, regio, ke, export, kre. Toen voet kre, maar ja, zou daar panie zijn. हमारी जनता हम और आगे मांगल जाए हॉफ प्रेसिडेंट जोन हैगा हॉफ के मतलब के रेक्टर के हॉफ फाउंडेशन प्रेसिडेंट जोन है प्लेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वारबोर्गन बाय द डर्ड रेक्टलिक इंस्टेंसी के बारे में तो यहां बतावे हैगा प्रेसिडेंट जोन हॉफ के हैगा यूसीसी को हैगा इवान रूसाल बक्स हैगा बोले हैगा कॉन्स्टिट्यूशनल वारबोर्गन नोसाकलिक सेन ऑन द afhankelijkheid en deskundigheid van de voorgestelde derde rechtelijke instantie te garanderen. Toen je een beetje heel op de afloop komt te herinneren, kies er maar mange hega albina met wie ik woon, gerechtshof banawe, en ze zijn al bezig geweest mensen. Rechtelijke maak als waarborg voor de rechtsstaat, Roussal Bakska, bole president van de justitie. Bolle Hega stond ook stil bij de bredere betekenis van de rechtelijke macht voor de samenleving. Volgens hem vervulde rechtspraak een fundamentele rol binnen de rechtsstaat. Mensen, to i hem chota roep me aapko, bata dete he, hem lukke hof van president jun he, ou he Ivan Roussal Bakhsh ke baare me, hamari pyare, meetha janta. अब देखो भैया फैया पेई के ओर जाएला फैया पेई बोले दख देन मरोंस सामन हरदेंकन एंड सामन पवन बोले हे जुका के जो मरोंस के सबन बोले जुका बोले ऊ रोज और बोले हैगा फैया पेई बोले हे दख देन मरोंस मांगे सबन साम हरदेंक करे और वो बोले हैगा 10 तारीख अक्टूबर के सबन फीरी करेगा दख देन मरोंस यानी जुका के दा और देसे भी सुंदर दाग बोले फिया पे बोले हैगा मांगे हैगा खस्किदनेस द क्राफ्ट फेयर क्राफ्ट एंड वार्डफॉल बेड्रागन आन द मारों गमेंस्कप आन द ओंटविकलिंग फ़ॉन सुरीनाम हेट इस द दाग ओम ओंसे ओडर्स द हर्देंकन ओंसे खस्क
geschiedenis te erkennen en met respect en vertrouwen naar de toekomst te kijken. Op het AWVAP benadrukte collega samhorigheid, wederzijds worden respect, jahinkarike, nationale verbondenheid, mange, kracht van Suriname in de diversiteit van bevolking in ons verbogen. De geschiedenis van Maron is een geschiedenis van de moet mensen, maar ons kebare mange VHP samen jij je vierikere over je baan aanplukken. Hem betaalde de Marons dag aan je wale. हमारे जनता हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर और देश के समाचार आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे बैतलान के समाचार भी आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे नीदरलैंड के कुछ समाचार भी आप लोग को हम सुनाएंगे ट्रिम्बल इंटरनेशनल स्ट्राफ ऑफ इन देन हाग लम लेखन में न्यू सांसिस भैया ट्रिम यहां देखो भैया ट्रिम अपन हथौड़ी लेके जा है हथौड़ी लेके जा है आंस वियरल्ड लेडर अप मांगे देन हाग में जो हम लोग के देन हाग में जहां हम लोग बाटी समय पे जहां रेडियो फाहोन भी है हमारे जनता जहां रेडियो फाहोन भी है और वहां पे मांगे है ट्रिम नेशनल ट्रिपल इंटरनेशनल स्ट्राफोन इन देन हाग लम लेखन भैया Verenigde Staten zoek waar ik een sancties aankondig kreeg in Den Haag met internationale strafhof. Van hun ze behoed door na bhaiya thore der mein pahunch jaiye. Batawe gaye hain, bole hain, individuele rechters waren gericht. Is het nu bedoeling het strafhof zelf lam te leggen? Toen betaalde je de staf mankeerde een ongekende escalatie in de strijd die Washington onder Donald Trump tegen de ICC voert. Amerika bolle he, waren ook bij zijn komst geen fan van de strafhof, maar gedoogden het in zekere zin wel. Toen hij betaalde mange lam leggen kreeg, Trump mange hebben ja, VS bolle hega op ramkoers met Europese bondgenoten. Het strafhof spreekt in een verklaring van een aanval op de rechtsstaat van de internationale rechtsorde. Op het AW hoofdaanklager Joningen Nesat Samin Khan besloot dat de onderzoeken en strafrechtelijke vervolging van de ICC doorgaan. De sancties volgen elkaar uren na de toekenning van een Nobelprijs voor de vrede voor de voormalige rechter Navi Pillay. Toen Hamara Den Haag ke baat hai, John Bhaiya Trump mange hai. ट्रिम मांगे हैं हम लोग के इंटरनेशनल स्ट्राफों जो दिनाख में हैं ओके मांगे हैं सांसिस करे भैया आप देखो हम जाए तरी इताली की ओर इताली में भैया चोरी कौन की भैले ना सोना गहना भैया केती ना चोरी भैले गटाई में से जैसे सन्ना में जब देखो तो कोई के गटाई घींच ले जा तो कोई के घर चोरी कर ले जा तो का ले जा भैया यहाँ इताली में भैया अगर योग नंबर टॉस्कैन बोले है हुआ चोर लोन भैया देर तक दैसन बोतल वेन चोराई से इताली के और वो वारदे है उनका फिर 5 मिलियन यूरो के भाई देर तक दैसन फ्लेसन वेन चुरा लिए ना जेब ही में चल लेके चल गए मौसी कोनो बड़का चीज है ये चीज भैले सोंदा के रात के भैल है बहन वेन हाउस बतावे है जेकर नाम मार्शेसी एंटीनोरी इन कोर्टोना में चोरों 7 मिला से गईल है मिनिमल मेंशन सेफ मेंशन गईल है और बोले इसे का करी से अलार्म सिस्टम ओम सेल करी से फेलक है इस कैमरा आउट स्काकल करी से और बतावे गईले को हेफ्ट ट्रिक से वेन घरवा में और बोले वेन वन चोराई से दुई फराख वाहन लादी से भैया दुई फराख वाहन लादी से और बताए गएगा द डीप स्टॉल वेयर सो मार के सब ऑन डेक करी से जो कम करतन गए वेन हाउस में देखे वेन हाउस सब खाली है नानी बोले 120 तो 300 यूरो पर स्टक एक बोतल बिका है वेन वन तू जाने महंगा महंगा वेन है इटली के नली दल वाला भैया 500 रुपया में जोन पाए जइयो ऐसे चीज ना है और बताए दस स्टोलन फ्लेसन सेंट ट्यूशन 120 और 300 यूरो और बताए गए हैगा इटली बोले यालक्स वर्दन एसएस 100 तो 700 1000 फ्लेसन वेन खमा
Obolega Marchesi, Antinori directeur Renzo Cotarella. Bole soche ki churwan kumoy se for baraitra. O sab kuj om sail karke. O utra dher botal wein. O lo chori karke. O bhagge hai. Hamare pyare pyare janta. ये सब बहुत सोचने के बाद है कि चोरन कितना चालाक हुई है हमारे जनता तरी हम जाई भैया तरी हम जाई अपन यतन के ओर भैया रोप यतन हम लोग का प्रेमी ही है दनहाक के बोले है एट दिस क्रूशियल dat de voor de Amerika aangekondigde sanctie niet direct in werking treden, zegt premier Rob Jetten, dat heeft essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het en EC internationale gerechtshof gebaat met je en de sancties zijn zeer betreurswaardig, al dus premier van ons Nederland en dat is meneer Rob Jetten gebaantje. Hamare janta hoor रहा है तो नीदरलैंड के आप लोग को जरूर हम समाचार बताएंगे अब देखो भैया असील सुकर के बांची जो हुए हैं नीदरलैंड में तो तू जाने ही आके रखे रहे असील सुकर के सुर्गु करे के एस्टा प्लास धरी से मौसी लड़कन आजकल घर द्वार खोजे ना पावेल के असील दुकर के सब कुछ मिले हैं तो यहां बताए फनी नखी फनी लांस खमीन तन जो नहीं गा फियन खी बोले अप्रूव करे हैं बोले कोर्ट टर्मेन में Bolego opvang aan te bieden voor asielzoeker in de nacht van donderdag zoeken. Hebben tientallen mensen buiten het aanmeldencentrum ter Apel geslapen. Obole de vereniging noemt dat schrijndelen. Ohme het raad heer. Hamloke de suame. Kabole hega dakloze. Admi jon. Larkan jon he gharnakin pawe he. Narhe bab maike gare. Kamara koje ikoje. Okar bare me isep kuch kare na he bhaiya. और अब देखो ना बोलेला कि उसे पे हेल्प ना चाहिए करे के मर देंग ओक अमेज आन्य एक मेंद तुलों जानो भैया फिर वैरक तो इजाइसन 27 से ना माखे दागे के Dat weten wij in Nederland, mensen. Dat zijn nieuwe regels al. Op de koeien, ja, kia hoor, ah, landelijk. Bole hega inlevert actie bij de vuurwerken. Meer dan 7500 kilo. Bole armee lever kartukele. Or betaige je go campagnes van start. Kadis eerste landelijke campagne. John armee jaike. और फिर वैरक लीफर कर सके हैं इस समय पे ऑनगेवर 7650 किलो फिर वैरक सब हम लीफर कर दिसे यूसीसीएन पुलिस के फैलाखाई के मिनिस्टर बकेन करिसे बोले स्लाइटन फाने 35 स्टेन लास्ट इन लीफर्सपॉइंट इन फ्राइडेग इस इन होरन बताए गए हमारे जनता सोलह में 528 किलो लेवार्दम 609 किलो लीफर भैले तरनुसम 11 किलो फेनलो एमन तिलबुरग मास्टरिक देन हेल्दर देन बॉस आलमेर ब्लीफ ऑन हुफेल है ऑनगेवर 100 किलो हेड ग्रोस्ट डील इज 6500 किलो बस्टार्ड एट een consumentenvuurwerk dat mocht bij de vorige jaarwisseling nog worden afgestoken, maar is bij de komende oud en nieuw verboden. Verder leven de mensen bijna 1000 kilo vuurwerk met flitspoeder in, zoals strijkers. Ook kwam er 500 kilo noodsignalen. Totalon jano hai apki barisse hum log ke Nederland mein hi vuurwerk na maange dage ke karan ki bahut slachtoffer hue hai o to bhotom aage dher lage hai aur itra lefer mein maam jane labe bahut dher bahre hui bhaiya jab demonstration hue hai to tu apre jane hai ki kitra demonstration mein saban bahre dage hai sipahi ke upar sab bhi bige hai देखो भैया अब हम जाएला सूडान के ओ, ओ, ओ, ओ सूडान के ओर
सूडान में एक ड्रोन अनफाल भले हुए है जहां पे 26 सेशन 20 औरत और 4 गो लड़का मर गए भाई। एक बारे में हुआ के खुफन लोकाल के बकेन करी से और बतावे हैगा कि पैरामिलिटेर जोन बा RFS हैगा दी आल यारन अन ओरलोग उटफेक्टन में रखेरिंग्स लीडर हुआ एको पैरामिलिटेर हैगा और उस सब रखेरिंग के सुर जाती से लड़े हैं बोले अनफाल करी से गोरी यू के हुआ नाम बा वात अलमाही और बोले वो खरें से इथियोपिया के बोले इन दत लैंड वर सिंस कोर्ट गफक्तन भैया जैसे यमन के हुतूस लोन जो हुआ पे दागे है यॉर्डानिया में तो ऐसे यहाँ पे सबन इथियोपिया में सबन रखेरिंग से दागे और बोले स्लाख्तोफर भैले दो दो ड्रोन अनफाल जहाँ पे जवान जवान औरत मले ने यंग फ्राउन दी वेरकन अन सैफरन फान खोड कोलंपियस फ्लग बैटन है फ्लग काम वार से वोंदन और बताई गई है 2023 में 200,000 आदमी मर गए रहा बेना 20 मिलियन आदमी सेन ऑफ द फ्लुख खसलाखन तो ई सब चीज भइल है सूडान में भैया नीदरलैंड में सूरीनाम के आदमी बहुत सुने हमारा न्यूज हम जानते हैं तो आप लोग को बताएं कि सूडान में ये चीज भइल है और जॉनी आप लोग को पूरा दुनिया के समाचार को सुनाते हैं बताते हैं सो दैट इधर ही तो beetje op de hoogte zijn en van de wereld die koontje hoe we dunia me hamare janta देखो भैया अब हम जाई है तरी जेलेंस्की के और उक्रेन के बड़का स्कादे भैया स्ट्रोम ने दुन अनफल रुसलान करी से उक्रेनी ना इन्नम अनहार हो गए भाई डामों पे स्ट्रोम ना है रूसी अनफल कैसे उक्रेन पे ओकर इलेक्ट्रिसिटी नेट के uitgebreide schade भइलेगा toegebracht. Ik er bare mee president Zelensky John heen. U betawe he bole herstelwerk gaat de klok rondoor. Ze ben banawe maan bena leuk bijle hier betawe he. Bole Rusland kiet voorziening als die van stroom, water en verwarming al langer als doel weet voor de aanvallen met drones en raketten. Het land is erop uit om die plat te leggen en Oekraïne komende winter in het donker en koud te zetten, staat in de Russische plannen waaronder Kiev volgens de New York Times de hand zou hebben gelegd. Toen we een beetje aan haar mee heen en Rusland en Poetin doen heen, hij blijft maar die drones schieten en schieten aanval doen op Zelensky's land ook in een kebaantje heen. हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे जनता आपको ये सब समाचार हम सुनाते हैं तो हम सोचे आप लोग को एक गीत हम सुना दी तो गीत के बाद में तो हम अभी चले आएंगे और जब चले आएंगे तो हम आप लोग को और आगे को सुनाएंगे कि क्या क्या और कौन से समाचार आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों।

और न जाने क्या न जाने दोस्तों कि दिल कहाँ खो गया है, लेकिन हमें तो मालूम है कि आपके दिल जो है रेडियो फाहोन पे आकर लग गया है।

तो हमारी जनता हम जा रहे हैं फिर से सूरीनाम देश, और सूरीनाम देश के समाचार आपको हम सुनाएंगे भैया। आज काल जोन है चोरी चपाटी रूफर्स लोन बैसिगिरी ब्रोमफीस पे भी चले सरना में भाई। अब देखो दुई को क्रिमिनल भैया दोंदर दाख के रात के दिन ढूफरे नानी दिनवे के क्ला कालक ब्रांस ट्रांसर नाम में दिन दोपहरे भैया ओवर फॉल करी से हाँ सेशन फाइव तक यार के एगो से बे के कौन हमने फांद कौन तक ते स्लेटर्स फंक्शन विद ट्यूटा ओकर ओटो के बस का बोले चाबी ले ली से एक ट्यूटा हैरियर भैया दरनास ओके सोना के आला कुंद्रे हाउस केटिंग रहा एन अ रिंग वेखन उमन हमने नहीं कही सन केती भैया आला कुंद्रे हाउस केटिंग सुना में सबन मोटा मोटा केती पहिर के चले भाई हम तो दरफ ना करीला घड़ी पहिर के चले के तो हुआ पे एकर केती अंगूठी सब ले गए हमने नूरिया काट के ले गए निकार के ले गए भाई मैं तू जाने सबन मोटा मोटा पहिर के चलावे है पहिर के घूमे हैं तो तू तो भैया जहाँ सुकरू है वहाँ पे चूटी बहुत ढेर सर नाम में घूमे जो चूटियन रोके लपेटी तो नहीं अगो सेसो फिर तक यार रख दे एन फियर वैसला ऊपर से दे एन फियर अब देखो चक्कल भैया अपरे दे एन फियर भाई और बोलेगा फैल खैद के आदमी बा ओ ही के चौराई से गहिया बतावे हैगा फन हैम व्यर्थ स्वार्थ मोबाइल टेलीफोन सेलफोक में इखनू में ते ही पिस्टोल वा दियन फही वा अपन कहां धल ले रहा द फरदाख्तन वारन खवापन में पिस्टोल और बोले हैगा बरों फीस पे रहा और शपीर एटमोस्ट्रात में सब चलावे जात रहा एक बारे में अनका बोले सिपाही हरमान गुदिंग वेर कोरना कोरदार ना खमेल मेलने खमाक और बोले सिर नाम से पुलिस में ऑनर शुक्र माना लिखले की इदियन फेरवा भैया अपन पिस्तौल वा काहे ना निकार के चोरवन के तू फैला खै के आदमी बाटे दिन फैला खै के अपने आप के तू फैला ना कर पहले दियन फेर एन बुरखर है तो ये बात है ना बताई से कर बारे में कैसे तो रिया है हमारे प्यारे प्यारे पुलिस नीम आन खपास्ट ब्रॉन्फिक्सर एन ऑन देलन बसला इन रिहो वेस्ट में भाई तो एक बारे में अबे मौका मिली तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे कि चिचुआ कैसे है हमारे नानी। अब देखो यहाँ सबन बोले है वेरल बांग बोले है सर नाम के एक नोमी जो है त्वी दैसन अख्तन त्विन तक में बोले स्नेलर खुरियर हुई दाना गयाना से एक होब दात में से वेरल बांग में कर्जा लेवा है तो वेरल बांग की बतिया बोले है वार है कि ना भाई अल्लाह तो वे ये सिन वन विवेत अलमाल हु द सुरिनाम जैन दी द इकोनॉमी दान द्राया सर नाम के इकोनॉमी बोले फरवाख करे तो इधर इसन अख्तन तुंते में गयाना से ज्यादा बोले कि खुरुए हुईगा और बोले हैगा अने अने लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन से खबर फन अक्टूबर 26 में द वेर बैंक नाम द रियल इकोनॉमी से ग्रोय फन सुरिनाम इन 28 ऑफ 21 एंड हाफ तेगा 15.3% फन गयाना तो अब इच वार है कि ना वार है लेकिन बताना हमारा काम है ना तो वार होप में से दत एक नो पी फन सुरिनाम नो हार्डर खात हुई है मार दार बैन के एम बीच बांग इरफान ओम दत वे हैव गेन फॉरट्राउ मेयर डोर ऑल द सिचुएशन सो फील लीनिंग एंड सो फील मा वेर बांग दी होत ऑल इन द खात बेस्ट मेन से और बता दी सुरिनाम के कोर्स 41.25 एसआरडी 1 यूरो पे और जे यकीन है तो 42.15 एसआरडी है और जो यो अनकीने तब जो यो बेचे तब 41.25 है अमेरिकन डॉलर है 37.50 में से जो यो तो बेचे तो और जो यो कीने तो 37.80 हैगा $1 के बांचित हुए है हमारी जनता मीठा मीठा जनता प्यारे प्यारे जनता स्वीटी स्वीटी जनता। तो हम चलते हैं और आगे भैया समाचार को लेकर यहाँ बताए गए हैं हमारे नानी सरनाम के परमारी बहु नॉर्थ के आदमी भैया बहुत जबर कलाख करी से
क्लाख्त करी से बोले उसे मांगे है का जितना प्रतोष्टवी है जो औरत या मरत हुआ धंधा करे। आज का मर्दाना भी सरना में धंधा करे भैया, हिया नहीं दलनांत में भी भैया धंधा करे मर्दाना जो समझा बोल सके। खाली औरत प्रतोष्टवी है सर ओक मानंद गेश दिदुन ओक अलमाल अन ओ फरल नाम लग अन अन अन प्रतोष्टवी वेरक अपन शरीर बेच के पैसा कमा है। तो यहाँ बातचीत हो रहा है गा परमारी बो नॉर्थ विलन आन पाक प्रतोष्टवी दृष्टि मिनालिटी एन ओ फरलास परमारी बो नॉर्थ में बोले है वहाँ पे बोले बड़ी ढेर प्रतोष्टवी है और वहाँ पे रोफ हो वे सब एक नाम बोले है गा बहुनर्स जो परमारी बो नॉर्थ के है उनका नाम है सो करना बेर अने बीरती क्रुतु बीरती क्रुतु नेंगने में बोले हिंदुस्तानी में बोले है कैसे बोलिए भैया जैसे कि पंचायत हिंदी में सब बोले है इसे बिरती क्रुतु होवे है और सब आंदाख मानी से लीव वान है फेलक है इन हिन वोनिंग ओमखीवन आंतस्तास्तन बोले एक इलिखाल बहु हुए हैं डाम पे बोले स्त्रात प्रतोष्टवी हुए है दृक्ष बिका है क्रिमिनालिटी थे बाजा बहुत जोर बजे खलत उफला से एंड अनवीचक है फन खोत आपको बदरेफन बहुन तो द मलंग रेस तो अंडरवेयर पर तेज से बहिन कोम्स ऑन द और द कोमन जो सोना की ने भैया ओ सब ये आइला और एक बारे में जो जो मतलब कि इनिशिएटिव नहीं मरेगा आ रिस्टो केली बोले हैगा साकन इंटरव्यू प्लाट फिन द ड्रिंगन आंदक फरदीनन तो हमारा भैया यूसीसी के मिनिस्टर और का नाम है भैया मनोरथ हनीश मनोरथ के चाहिए कि आंदक करे कि जनता अब बोले है हम लोग के भीड़ की बहुत ऊपर लास हो गए है एंड हियर मुतत वेल ऑल इस खदान वर्द और ट्विटर भी फरकादिंग में बोले है बीरती क्रुतु परमारी वो में बोले इस बेन कोर्ट फॉरदन के इवैल्यूएट और बताई गई ऑथोरिटेट अनुवीक्षक में ओवरलेक वहाँ के डीसी मार्लोन बुदिका आयला ब्यूट मैनेजर आयला टीम वेक अखेंट आयला एर एर लीडर आयला हुकवार्ड बकलीडर्स आयला और बोले फॉल्कस केली इस बलांगरेक दर बोनर्स इन ऑथोरिटेट का सामलक बस्प्रीकन वेलक प्रॉब्लम में मुतर वादन आंखपाक ऑन द फेलिकेट एंड लीवरहेट इन द वेक फरबेटरन। तो ये बात हो रहा है भैया कि अप्रेस अब जनता अपन फेलिकेट खोजे है हमारा देश के जो ने वहाँ की अनुसूची है या रखेरिंग है उस सब के ना देखा है कि कौन भीड़ कहाँ उन फेलक है कहाँ इस सब चीज हुए है एंड दैन मुद्दे बीरती बीरती क्रुतु बीर हीर ओफल gaan praten is niet slecht mensen, we moeten dat allemaal kunnen doen, maar er zijn ook heel veel problemen in het land die niet aangepakt wordt op door bepaalde instanties. Als je namelijk verantwoord bent van jouw eigen dingetjes, dan moet je wel de verantwoordelijkheid nemen om dat goed te laten doen. Als je aap namelijk ke koi dharm ke baato aur to haar dharm mein koi misbruik kare hai to sabke recht hai wo apan dharm ke raksha kare ke awaaz uthave ke ki hamara dharm mein kuch gadbadi na chahi hove ke ya christian ho ya hindu ho ya sanatan ho ya arya ho ya je bhi ho tumhara apan dharm ke bare mein sabke apne khuye manier awaaz chahi uthave ke aur agar aur khani सासिक अदमी बाटे ना मुझे जीकर ओग में दून ओम दात नेचस एंड खुद तलांत aflopen, niet persoonlijk voor één persoon of twee persoon, maar in algemene belang moet iedereen deze aardje buurtcrew toe gaan pe op een aanwaas uitreizen ke hamara gauw me hamara jaghaan pe protestwee hoewe drugsdeal hoewe he geluids overlaas hoewe hega aur kakana hoewe he en daar hebben ze aandacht gevraagd eise chahinga sab koi ke kareke chahe Suriname he ya Nederland he aur India he sagro to hoewe भैया कहे हमारे सुरीनाम में ना हो इसके बदलों भैया खेतियर की ओर अखरा अने अराख अने का बोले खेतियर हाँ अनुर सालीम बोले है
बोले खेतियर भैया फ्रांतोरलक फॉर फैलक फुचल खेतियर के चाही खेती बारी फैलक कर ओकर ओकर फ्रांतोरलक दवाई ढकले रे भैया और भाटा में कोरो में महिया बोले अरहार का बोले अने अने अने लंग बॉर्ड्स पीले मलांगरे का रोल बेड बस्केरिंग फन ऑफ फ्लोक्सनाइड ऑन यूज इट ऑन को कंट्रोलिर गebruik van een pesticiden kan leiden tot schadelijke residuen in landbouwproducten. Waarmee minister John LVP ke ohe de heer Noor Salim ekar bare mein boli si ki khetiyar ke chahi apre dekhe ke ki kaise hai kaise na hai hapa sauda mein hum kitna कितना दवाई मारब और कितना दवाई इन्ना मारब ये बातचीत हुए है हमारी जनता हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जनता। अब देखो भैया यहाँ पे बतावे सुरीनाम से नीदरलैंडर भैया सरनाम के नीदरलैंडर यहाँ आम्स्टरडाम में भैया खलीख देर भैल है हाँ एक फिर देर तख्त यारख ओकर नाम बा किशन कुमार आज केस बाबूराम नीदरलैंडर फॉर सुरीनाम से और शीन इस इन नाख शुक्रवार शनिवार के रात के सभन ओके काफी साउथ पाउलो में जो आम्स्टरडाम से फीन वेक में आम्स्टरडाम में ओके सबन डाक के माढ़ारी से कोर्ट टाइड लाटर वेट एन 32 यारखे फरदाखते इन एन वोनिंग आनखाउदन द पुलिस खात आउट एन दुलखरेक लिक्विडेशन Obole Baburam werd rond 2:30 in de hoofd geschoten toen hij op de stoep voor de bar zat te praten met anderen. Toegesnelde hulpverlener probeerde hem te reanimeren, maar te vergeef mensen. Omerge he, toen hij betaalde Holendrecht mee. Baburam heeft volgens diverse Nederlandse media zijn jeugd doorgebracht in Den Helder. Hij verhuisde later naar Amsterdam, waar hij eerst een tijd in Amsterdam-Noord woonde, voordat hij zich vestigde in de wijk van Holendrecht in Amsterdam-Noordoost. Deze wijk stond bekend als de vele criminelen die er wonen, met name van Surinaamse Antilliaanse afkomst. Te betalen hega skurkte tegen de harde hooliganten kern van Ajax. Bolle stond hij bij bekend, niet bekend als een zware crimineel, werd door de mensen uit de omgeving gezegd, maar toch ze van oké, legendeer kan dit van jouw dakje maar daar is hij. Maar de dader is wel gepakt mensen. Dat is een beetje de hele situatie. Aap lukke go chutney hem sunai dee. To abhi hem aan jayenge.

बहुत शुभ्रू जो मशहूर है आदमी जो कूद कूद मरे है और हमारा हंसू के लोग जो है बहुत खबर माँ करे यहाँ से आदमी जहाँ घूमे तो उससे ही कर जाए यानी कि बोशब्रुक पे एगो रिचराई करे बाकी भैया बेशब्रोक पे भैया पेड़ जमे लगल है ई देखो कौन चकल्लस भाई है तो सोचो सिरिनाम के बोशब्रुक पे भैया पेड़ जमे लगल है ना मोई मोई कोई खाद बोई से भैया अंदर हो ना होवे है बोले है इतरा फरकेश दृक्ते कर बारे में एनडीपी के पार्लियामेंटेरियन जोन है और वह इंग्रिड कार्ता बिंग बोले है मंगलवार के आंदाक मांगे हैं कि इतना जबर फील है बड़का बड़का ट्रांसपोर्ट ब्रेक हुआ ट्रक लोन पास हुए सिपाही लोन हुआ फिर के रिकल करे तरी से लोप हुए मैं फिर भी बोले बहुत ज्यादा बोले है गफील है 5 किलोमीटर ऑन खफीर बतावे और बोले से मेरे इन मिडल्स के बुड़किया के नीचे भैया पेड़ जमे है पलवन पे ओ वे के बोली से ओ पंबार वेर के बोले ओके जाओ तुलन तरी जंगलियो तो सफा करो पेड़ के नीचे जंगल हुए पेड़ जमे लगल बुड़की के नीचे रेला रही खलमा तक वोट ख इंस्पेक्टर एंड ऑफ स्कोन मार्क बोर्ड कान वार्डन एट खफूर gaat het over de Oost-West-verbinding, 5 kilometer lang, vele mensen. En dat is wel, geef ik deze mevrouw, natuurlijk voorkeur. दोस्तों हमारा समय आ गया है जाने को और 1 घंटा का समाचार आपको हम सुना दिया है सुनने के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद हमारा नाम है जॉनी लास्ट बोले भैया मदुरा एंड अखनोतर रिस्केरन में सर 5 बरिस के जाल ना न्यू अनखलाक वेसर मार्टलिंग के बारे में ये आखिरी समाचार हमारे थे आज के हमारी जनता सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम राम नमस्कार और प्यार भरी अदाब सत श्री अकाल जॉनी नंबर 1 है और सलाम।

दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ गर्मा गर्म हॉट डांस नंबर भी सुनाएंगे और एक घंटा हम पूरा सुनाएंगे कुछ रीमेक सॉन्ग इंडियन डीप हाउस 20

De hot one only bij radio. Van honderd stoel, ik giet kobi manker sikte aam kobi. Jarurat hai to jarur mangi. Aur yahan par fida ne manker chuka hai. Apni judai ke liye jineng se keh raha hai. Sajan, meri sajan, tumko hum paakar. Aur sab kuch pa gaya hai. Pura duniya hum pa gaye hai. कानून की आवाज मूवी का नाम है और ये गीत आपको सुनना पड़ेगा अतिरफान विदा एंड जू नहीं

और सांजन मेरी सांजन तुमको पाकर सब कुछ पाया, तो ये गीत मांग किया है और वो है इनख विदा अपने जुनै के लिए। आशा उम्मीद करती है कि आपको ये गीत जरूर पसंद आया होगा और बहुत गरम गरम बैठ के और अपन जुनै के पास फिदा ने सुन रहा है। साथ ही साथ मरे का छोटू भी तार किया है, उसका गीत भी हम आप लोग को जरूर सुनाएंगे। और उसने कहा है भी हम अपने मशीन के पीछे बैठा है, कहते छूकर मेरे मन को क्या तूने क्या इशारा दिया है। तो एक रिमिक्स हॉट सॉन्ग फॉर मां।

पियां तूने क्या इशारा, इस गीत को हमने चला दिया माँ रेक छोटू के लिए। आप भी तार करके गीत को मांग कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3620 07 07 पर। हम चलते हैं इंडियन डांस पार्टी मिक्स की ओर है।

और हुस्न है सुहाना, हुस्न है सुहाना कि बाद में हम और एक और हॉट सॉन्ग लेकर और यहां पर तैयार हो चुके हैं।

और बिजली के रांड के बांट में गीता ने तार किया है और गीत को मांग किया है ओनली हॉट वन कुछ ओल्ड ओल्ड ओल्ड और ओल्ड रेमिक सॉन्ग आपको हम चलाएंगे। यही आशा उम्मीद करते कि आपको भी वीकेंड है दोस्तों, शुक्रवार के रात है और वो आपके करीब रेडियो फोन और जॉनी भी है तो जरूर कुछ झूमना चाहिए। Only by Radio Vondery Mix Old Zone.

अरे दोस्तों, ये सब नाचने का हॉट सॉन्ग आपको हम सुनाते हैं, सुनाते ही रहेंगे। आप भी झूमिए, आप भी नाचिए, आप भी गुनगुनाइए। आलस मा, आलस मा। एक हो जाए।

और ये गीत था, उसके बाद ही क्या खूब लगती बात में हम और एक सॉन्ग आपको सुनाते हैं, वो भी है हिंदी रोमिक सॉन्ग लवर बॉयज एंड लवर गर्ल्स।

बस दोस्तों जॉनी है हमारा नाम, आप लोग को हम श्री भगवान और कुछ डांस नंबर सुनाएंगे, बस झूमते रहो। एक और आ रहा है

जरूर चलो चलो चलो, कहाँ चले गए हम सब, चले गए और चले गए हम सब चने के खेत में। और बहुत प्यार से सुन रहा है रोई देवराज उस्ताद के उस्ताद महा उस्ताद, और वो भी एक गीत को मांग के स्पेशल फॉर रोई देवराज जी। तो ये भी एक हॉट सॉन्ग है दोस्तों।

दोस्तों घड़ी की ओर देखा जाए तो 20:25 हो चुका है। 9 तारीख अक्टूबर के बाद है, आज शुक्रवार का शिवरात्रि का प्रोग्राम है और आपको अभी हमने हॉट सॉन्ग सुनाए हैं, अभी आधा घंटा आपको ओल्ड एंड गोल्ड भी सुनाएंगे और जानते हैं फाहुन के पास आई हैव एन ऑलिसन हैस और हमारा प्रोग्राम कितने लोग सुन रहे तान करने के लिए ऐप करने के बहुत बहुत धन्यवाद। रोई रोई रोई हमारा उस्ताद भी सुन रहे दोस्तों। मोर्ख मोर्ख ओवरदाग ओम ट्वे यूर हैव ओवर हियर एन अनब्राइड इंटरव्यू प्रोग्राम मैथ सूरे मैथ सुंदर हीरा रोई देवराज पंडित राधे मैथ मई Gaat over al die londagnaansje, wat mogen we wel en wat mogen we niet?

और दोस्तों हम प्रोग्राम हुआ तेरी चिंची कर खाए फोन निकाओ मेचो रिस्ट है

और मेरा मन क्यों तुहे चाहे, वो मन के बात है तो जरूर आपको हम बता देते हैं। और अगर जी ये लो कागज और कलम लिख लो जॉनी का नाम।

ये लो कांगेज और ये लो कलम, उसके बाद तू लिख लो अपने दिल पे जॉनी का नाम। दीवाना हुआ बादल, मौफी का नाम है कश्मीर की कली, परमा श्री मोहम्मद रफी का ये गाना है जिसमें शर्मिला टैगोर शमी कपूर ने काम किया है।

की और क्या हुआ मन झुमा कश्मीर का कली पदमा श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है जिसमें शर्मिला टैगोर शमी कपूर ने काम किया है। अब आपको ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम लेकर चलते हैं। इतना है तुमसे प्यार मुझे मूवी के नाम है सूरज जिसमें रजेंद्र कुमार विजयन दीमाला ने काम किया है।

और मेरे रंजदार इतना तुम मुझसे तो जरूर प्यार करना, और अगर खुल्लम खुल्ला न कर सको तो छुप कर जरूर करना।

फन हंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दीवाना हुआ पागल नॉक्सेज द लवली सॉन्ग मेंशन। तो हम जानते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ जाते हैं, किसी के चुनरिया उड़ जाते हैं, तो चुनरिया पे भी गीत बन चुका है यारों।

सलमान ए रानी मुखर्जी। इनके गनोफ

और सर से वो सर की तो कभी धीरे धीरे के सांझ में हम चलते गोविंदा और नीलम की ओर, वो है खुद गर्ज, मूवी का नाम है खुद गर्ज, पर हिट सॉन्ग मैं से मीना से नशा की डरियल कैनेडी शबाब है।

और आप किया जाने से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूँ तेरा नाम।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753 तक सेफ नफेटा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

तो कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

लवली सॉन्ग थे और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

बदल न जाना मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं मूवी के नाम है राजा निकंदीन हंड्रेड एंड फाइव निकट का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और चरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आलका याग्निक का ये जोंग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जो तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा शरबानू राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी का नाम है यहाँ पर बताई गई है इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत आओ सुना जाए।

पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरवानू अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ ही साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नहीं खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी। इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही नार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मोफी के नाम था हीरो नंबर 1 फन एन सी फन नहीं खता।

रे अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और सोनू निगम अलकायंगनी का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग के बाद हम चलते हैं उदित नारायण जिससे बहुत खूबी से इस गीत को गाया है। आओ सुना जाए ये क्या है।

को भी तुझको रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रिय से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और 1959 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

तो कर के देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर, ऑल इज गोल्ड, फोर

और हट जाओ और दीवाने आए और कौन सा दीवाना आएंगे हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं और सुना जाए मैथिली मुकेश का ये सॉन्ग है।

ऐसा ठुमक के मच्छलो, ऐसा ठुमक के मच्छलो कि आम को ठुमका लग जाए, तो ये गीत बहुत यानी कि मशहूर है दोस्तों। और है दिल तेरा दीवाना।

नजर बचाकरी चली गई वो, और क्या क्या गाया है, मशहूर सॉन्ग था हमारी दोस्तों। दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जाजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी का नाम है साजन और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

करने को ये सॉन्ग दे और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार नेक तक का सोन और वो कुछ और थे और इन गोल तो और कुछ है दोस्तों, और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार निघन तक का जोंग और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। मोफिक राम है जाजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़ से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और है मैं की मुकेश का ये सॉन्ग है।

बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है मैथिली मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 डेज का ये मूवी सॉन्ग है जो आम सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको सुनाएंगे, मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

और दिल भी हम आपको दिया है और आप भी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बाद जो करते हैं तो हम चलते हैं मौफी के नाम है भरोसा निकटी हो द्रियन जस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

ऐ दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

इसमें फिल्में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौजात के साथ में हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग के जैसे दूर कोई गाए धुनिए।

0: और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मन और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है।
1: तो आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो ये है माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, लता जी के साथ फिल्म ससुराल में से निकाल कर। जब ये फिल्म पहली बार चला सूरीनाम में, बहुत दिन की बात है, तो लोगों डर गए थे कि क्या ससुराल में ऐसा भी होता है, तो कैसा होता है सुन लीजिए।

अपनी उल्फत के जमाने का न पहरा होता। शंकर जय किशन के साथ पर ये गीत पेश हुआ ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी तत्पर है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं कि प्रेम प्यार मोहब्बत में कितने बार रोका जा रहा है, लेकिन पता नहीं कि महबूब नहीं सुनता या महबूबा नहीं सुनती है। बहरहाल आपको सुनाते हैं ये गीत। क्या हुआ पता नहीं, मेरा सीडी को क्या हुआ। अच्छा चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो ये है, इस तरह से है।

वाह क्या बात है, ये गीत हमने चलाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, ये सुदास और लता जी आपको सुनाए। चलिए जो गीत हम चलाने वाले थे इससे पहले वही गीत हम फिर ढूंढ के और निकाले हैं और आपको अभी अब सुना रहे हैं। रफ़ी साहब आशा जी की आवाज़ में, रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, वह क्या बात है। मेरा सनम नेक दिन फाइव इन सस्त ओपन नैयर के सास पर

रफ़ी साहब और आयशा जी मिल के आपको सुनाएं ये गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी चून हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करें इस तरह से, तो पेश करें मदन मोहन, मदन मोहन के साज पर निगति एन सैफन तक का ये गीत एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुन लीजिएगा इस तरह से। सोचिए मदन मोहन और ऐसा गीत, जी हाँ ये भी हो सकता है।

सिमटी सी शर्माए सी आपको सुनाया गया। हमने ये गीत पेश की मदन मोहन के साज पर, निकिति एन सीफ का ये गीत। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है आशा जी की। आशा जी की ये गीत आप सुनिए। उस जमाने में जब ये गीत बना तो उस जमाने में लोग कहते थे मुजरा है, मुजरा, मुजरा से बदलकर बार का गाना हो गया, बार का गाना कैबड़े हो गया, कैबड़े के बाद आजकल आइटम सॉन्ग हो गया, नाम बदल गया, गाना वही रहा, लय वही रही और हाँ थोड़ी बहुत साज बदल गया और शब्दें बदल गई, लेकिन आजकल क्या कहा जा रहा है, आइटम सॉन्ग। उस जमाने में मुजरा कहा जाता था। चलो सुनते हैं।

आशा जी, वाह क्या बात है आशा जी, आपको सुनाए हैं ये उन दिनों के गाने जो हम आप सुन रहे थे और इस पर डांस भी किए होंगे, लुत्फ उठाए होंगे हमने पेश की आशा जी की आवाज़ में। तो चलिए, पक्का मुजरा ये है जो मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ, तो ये पक्का मुजरा है।

वाह क्या बात है, हमार कहाँ मानो राजा जी फिल्म है का नाम है दुल्हन एक रात की, ये भी है लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये फिल्म हमने नहीं देखे है। आपने देखे होंगे तो बता सकते हैं, हमने फिल्म नहीं देखे। अगर गाना तो सुने हैं और भी गाने हैं जहाँ तक मेरा ख्याल में, एक दिन ये फिल्म लेकर देखेंगे। उषा मंगेशकर और आशा भोसले दो बहनें मिलके आपको सुनाई है ये मुजरा वाला गीत। तो वही मुजरा और वही कैबरे डांस और वही वगैरह वगैरह नाम बदलते बदलते बदलते बदलते अब हो गया है आइटम सॉन्ग।

0: रावण से उसकी लंका ही मांग ली।
1: वो भी होता है रावण से लंका मांगना। बहरहाल ये आइटम सॉन्ग हम आपको सुनाए हैं। चलिए इसी समय का आइटम सॉन्ग हम आपको एक और सुनाते हैं, और वो ये है।

घर में अरे परदेसिया आओ पधारो, पेश परदेसिया फिल्म कलंक में से निकाल कर ये गीत हमने पेश किए। ये था भी एक आइटम सॉन्ग। जहाँ तक मेरा ख्याल है थोड़ी सी देर, थोड़ी सी समय और है, तो हम आपको एक और आइटम सॉन्ग सुनाते हैं। जी नहीं, आइटम सॉन्ग से पहले सुन लीजिए मुजरा। चलिए हम आपको मुजरा सुनाते हैं। उससे पहले आइटम सॉन्ग था ये और अगला गीत है एक मुजरा। चलो सुनते हैं।

वह आशा जी की आवाज में आपको सुनाया गया ये मुजरा उन दिनों का। चलिए घड़ी पर देखूं तो जी हाँ हाँ जी वी पिंसफाउन एफ एम पिंतनल पर आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए वो जी हाँ चलिए वो सिलसिला हम थोड़ी सा और जारी कर रहे हैं, आपको एक आइटम सॉन्ग सुना रहे हैं। तो लीजिए ये आइटम सॉन्ग इस तरह से हुआ, क्या बात है। मचाले धूम

धूम मचा ले धूम, सुनिधि चौहान और साथी मिलके आपको सुनाए हैं ये गीत हमने चलाए। ये भी एक आइटम सॉन्ग है। चलिए एक आखिरी आइटम सॉन्ग आपको और सुनाएंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम थोड़ा बदलेंगे। लीजिए ये आइटम सॉन्ग, क्या ख्याल है?

अहर गैर नत्तो खैर, ये गीत हम आपको सुनाए हैं और फिल्म कलंक में से निकाल कर हमने पेश की प्रीतम के साज पर। जी हाँ, www.fawnfm.nl पर आप चून हैं, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए, आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, बस सुनिए। नारायण और अलका याग्निक जी फिल्म धड़कन से निकाल रहे, जी नहीं सॉरी फिल्म

कितना प्यारा है ये चेहरा, उरित नारायण जी और अलका याग्निक जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। गीत हम तो रख दिए हैं प्लेयर में, लेकिन इसमें कितना आधा झूठ आधा सच, ये गीत के बारे में इस वक्त मुझे पता नहीं है, शायद भूल गए होंगे, लेकिन कितना सच कितने झूठ पता नहीं। लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए।

वाह क्या बात है, रविंद्र जैन के साज पर लता जी और रवि साहब की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म फकीरा में से निकाल कर 1976 निकली थी का ये गीत आधी सच्ची आधी झूठी। इसमें आधी सच्ची भी थी आधी झूठी, और दूध में पानी में जना कोई मलिक मान ने लिखा, लेकिन बहरहाल ये शानदार गीत हमने पेश किए ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुनिए इसे। जी हाँ अवश्य सुनना, ध्यान दीजिए।

क्यों तुम पे दिल है दीवाना, एवरग्रीन किशोर के किशोर कुमार जी की आवाज़ में हम पेश किए हैं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं लेकिन हमने भी चून नहीं किए हैं। चलो सुनते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं कि मार गए मुझे तेरी जुदाई। चलो सुनते हैं। लेकिन तख्त का ये गीत है।

अच्छा, जुदाई के बाद यही थी, हमें तो पता नहीं था। बहरहाल हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले सोनू निगम जी। सोनू निगम जी नीखन तीन सस का ये गीत है, चलो सुनते हैं।